आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 666।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
5: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
3: और 90971602।

श्री राम और उनके तीनों अनुजों का विवाह संस्कार संपन्न हो चुका है और अब वधुओं की विदाई की वेला निकट आ चली है। प्रतिदिन अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, किंतु जनक जी के स्नेह भरे आग्रह पर उन्हें रुक जाना पड़ता है। बारातियों का आदर सत्कार पूर्ववत जारी है। कई दिन बीत जाने के बाद विदा की घड़ी आ ही पहुंची। महर्षि विश्वामित्र तथा वधुकुल के पुरोहित शतानंद ने राजा जनक को समझाया, आप स्नेहवश उन्हें विदा नहीं करना चाहते, परंतु विदा तो देनी ही है। जब रनिवास में यह समाचार पहुंचा तो सभी लोग इस प्रकार उदास हो गए जैसे संध्या होने पर कमल मुरझा जाते हैं। अनगिनत बैलों पर लादकर बारातियों के लिए मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री भेजी गई। साथ ही 1,00,000 घोड़े, 25,000 सजे सजाए रथ, 10,000 हाथी तथा गाड़ियों में भर भर कर उपहार स्वरूप वस्त्र आभूषण। उधर रनिवास में सीता समेत अन्य वधुओं की विदाई का करुण, अत्यंत मार्मिक तथा हृदय विदारक दृश्य उपस्थित है।

बेटी की विदाई का दृश्य जितने आनंद और संतोष का अवसर होता है उतना ही करुण और मार्मिक भी। विवाह के हर्षोल्लास, उत्साह और उमंग के मांगलिक समापन के बाद विदाई की घड़ी आ ही पहुंचती है। श्री राम भाइयों सहित वधुओं की विदाई के लिए राजा जनक के महल में पधारे हैं। उन्हें देखने के लिए नगर के अगणित नर नारी दौड़ पड़े हैं। सखियां इन प्रिय पाहुनों के रूप को आंखों में बसा लेना चाहती हैं। रूप के समुद्र सरीखे सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं न्योछावर हुई जाती हैं। जामाताओं को स्नान भोजन कराया गया, किंतु सारा उल्लास महाराज के अयोध्या लौट जाने का समाचार सुन जैसे उदासी में परिवर्तित हो गया। स्नेह से शिथिल हो गईं माताएं, पुत्रियों को बुलाकर बार बार उन्हें गले लगाने लगीं। सखियों ने पुत्रियों से बार बार भेंटती माताओं को जब अलग किया तो ऐसा लगा जैसे अभी अभी जन्मे बछड़े से गाय को अलग कर दिया हो।

राजा जनक के महल में बेटियों की विदा का करुण हृदय विदारक दृश्य उपस्थित है। लगता है जैसे करुणा और विरह ने वहां डेरा डाल दिया है। सीता ने जिन पक्षियों को सोने के पिंजरों में पाल पोस कर सिखाया पढ़ाया था, वे मानो पूछ रहे हैं कि वैदेही कहां हैं। और यदि पशु पक्षी इस प्रकार विकल हैं, तो मनुष्यों की दशा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। राजा जनक परम वैराग्यवान पुरुष थे, किंतु इस अवसर पर सीता को देख उनका धैर्य भी साथ छोड़ गया। जानकी को हृदय से लगाकर वो फूट पड़े। भावना ने ज्ञान और वैराग्य के बांध तोड़ दिए। मंत्रीगण उन्हें धीरज बंधा रहे हैं। मुहूर्त देखकर सुंदर सजीव ही पालकियों में कन्याओं को बिठाया गया। पिता ने उन्हें स्त्री धर्म और कुल की रीति की सीख दी। ब्राह्मणों की चरण धूलि माथे पर लेकर राजा दशरथ ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और दल बल समेत अयोध्या के लिए चल पड़े। विदा के क्षणों में अधिक से अधिक समय तक उनके साथ रहने को आतुर राजा जनक उनके साथ हो लिए। विचित्र दृश्य है, देवता हर्षित हो पुष्प वर्षा कर रहे हैं।

अप्सराएं मंगल गीत गा रही हैं। कुशल पति दशरथ बार बार जनक जी से लौट जाने का आग्रह करते हैं, किंतु प्रेमवश वो लौटना नहीं चाहते।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
8: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: मैं बनूंगा।
8: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
10: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
8: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
11: ठक ठक।
12: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
13: अच्छा मिला ही नहीं,
12: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
10: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
12: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
10: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
14: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

हकीकत तुझको नहीं पता है, फिर उनकी हकीकत।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करे 87-894-18-744।
7: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
6: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
6: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
6: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
8: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल कहे सुनो दिल से।

0: तब भौजी आज सुबेरही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क 99-393-65-930।
6: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
0: क्यों, क्या हुआ है?
6: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
0: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
6: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
0: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
7: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
0: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
0: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
0: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करे 6052-62112 पे।
10: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिद्म 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
6: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
9: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
10: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434 03 62042434 03।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
6: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। भीषण गर्मी को लेकर सदर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड हो गया है फुल। जिला प्रशासन ने की आम जनता से अपील। करंट लगने से एक व्यक्ति की हो गई मौत, लोगों ने किया सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन। चोरी की दो मोटरसाइकिल के साथ दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और सभी थानों पर गुंडा परेड तथा चौकीदारी परेड का हुआ आयोजन। एक एम्बुलेंस चालक संदिग्ध स्थिति में हो गया है लापता, परिजन बताए जा रहे हैं परेशान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। लगातार बढ़ रही गर्मी को लेकर जहां लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है, तो वहीं लोगों में बीमारी का असर भी दिख रहा है। गर्मी के वजह से बहुत सारे बच्चे और लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसके वजह से गोपालगंज के सदर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड लगभग फुल हो चुका है। बताया जा रहा है कि इमरजेंसी वार्ड में तेजी से बढ़ रही संख्या, खासकर बुजुर्गों और छोटे बच्चों को लेकर डॉक्टर भी परेशान है। लोग बीमार पड़कर सीधे अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। अस्पताल प्रशासन के अनुसार पिछले कुछ दिनों में लू, डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त और चक्कर आने की शिकायत लगातार लोगों में मिल रही है, और ऐसे मरीजों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अधिकतर इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीज लंबे समय तक धूप में रहने या पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीने की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि गर्मी के कारण शरीर में पानी और नमक की कमी तेजी से हो रही है, जिसके वजह से कमजोरी और बेहोशी जैसी समस्याएं आ रही हैं। अस्पताल में अब अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य कर्मी लगातार मरीजों की निगरानी में जुटे हुए हैं, तो वहीं जिला प्रशासन के पदाधिकारी जनता से अपील कर रहे हैं कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। छोटे बच्चों के विद्यालय को भी बंद किया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि लोग सुबह और शाम को अपने आवश्यक कार्यों को करें। 10 बजे के बाद और 4 बजे के पहले, ज्यादातर बहुत अति आवश्यक ना हो तो अपने घरों में सुरक्षित रूप से रहें। पानी ज्यादा से ज्यादा पिए ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो, बल्कि पानी के साथ नमक और नींबू पानी चीनी मिक्स करके दिन में लगातार पीते रहें, बच्चों को भी पिलाएं, और धूप से बचने की सलाह स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के लोग भी दे रहे हैं। इधर नगर थाना की पुलिस ने चोरी की दो मोटरसाइकिल के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने लंगड़ा मोड़ मानिकपुर के पास चोरी की मोटरसाइकिल की खरीद बिक्री करते समय छापेमारी कर दी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस वहां पहुंची तो दो मोटरसाइकिल पे सवार आधा दर्जन लोग भागने का प्रयास करने लगे। इसमें दो व्यक्तियों को पुलिस ने बल के प्रयोग से पकड़ लिया। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान में एक आरोपी मनीष कुमार, पिता बबलू तिवारी, जो पार नवादा थाना जिला गोपालगंज का रहने वाला है। यह आरोपी थावे के पिठौरी गांव का निवासी है, परंतु वर्तमान में पार नवादा गोपालगंज में रहता है। दूसरा आरोपी धनेश प्रसाद, यह हजियापुर के करण प्रसाद का पुत्र है, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है इन आरोपियों ने मोटरसाइकिल से संबंध में कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए, जिस पर पुलिस ने दोनों को चोरी की मोटरसाइकिल होने के मामले में गिरफ्तार किया है। गाड़ियों की खरीद बिक्री करने की बात आरोपियों ने स्वीकार की है और दो चोरी की मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है और इस मामले में अब पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई और जांच पड़ताल कर रही है। इधर कटिया थाना क्षेत्र के बरवा सेमरिया गांव में हाई टेंशन 11,000 वोल्ट तार के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक 30 वर्षीय धर्मदेव सिंह बताए जा रहे हैं। इसके बाद उनके परिजनों में कोहराम मच गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने बैसिया बाजार के पास सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन भी किया और मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे थे। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया। प्रशासन ने सहयोग करने का आश्वासन दिया है। बताया जा रहा है कि बरवा सेमरिया निवासी पारस कुशवाहा के पुत्र धर्मदेव सिंह बाजार से सामान खरीदकर वापस लौट रहे थे, तभी वह हाई टेंशन तार के नीचे से गुजर रहे थे। इसी बीच तार के चपेट में आ गए जिससे उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। लोगों ने बिजली विभाग पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। फिलहाल स्थिति को प्रशासन ने नियंत्रित किया है और मृतक के परिजनों को विधि सम्मत सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर जिले के सभी थानों पर आज चौकीदारी परेड और गुंडा परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान चौकीदारों को अपने अपने क्षेत्र में सतर्क एवं सक्रिय रहकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए, तो वहीं स्थानीय सूचना तंत्र को सुदृढ़ करने, पुलिस एवं आम जन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, असामाजिक तत्वों के गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखने और जेल से छूटे पेशेवर अपराधियों पर विशेष नजर बनाए रखने के लिए और उनकी गतिविधियों से संबंधित सूचनाओं का भी नियमित संकलन करने के आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही शराब तस्करी एवं अवैध शराब निर्माण पर भी प्रभावी रोक लगाने तथा क्षेत्र में आसूचना संकलन को और अधिक मजबूत करने और विधि व्यवस्था के प्रभावी संधारण को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए ताकि क्षेत्र में शांति सुरक्षा और कानून व्यवस्था कायम रहे। इधर सभी थानों पर गुंडा परेड में भी जेल से निकले हुए कुख्यात अपराधियों को थाने पर नोटिस देकर बुलाया गया था। लाल नोटिस देकर प्रत्येक सप्ताह ऐसे अपराधियों को पुलिस थाने पर बुलाकर उन्हें कड़ी चेतावनी दे रही है कि अगर ऐसे आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने वाले लोग अगर भविष्य में कोई भी असामाजिक गतिविधियों में शामिल होते हैं तो पुलिस उन पर सख्त कार्रवाई करेगी। सभी आरोपियों को गुंडा परेड में बुलाकर पुलिस उन्हें कड़ी चेतावनी दे रही है और प्रत्येक सप्ताह ऐसे लोगों को गुंडा परेड में बुलाया जा रहा है। इधर कुचायकोट थाना क्षेत्र में एक एम्बुलेंस चालक संदिग्ध स्थिति में लापता हो गया है। इसको लेकर अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि उचका गांव थाना क्षेत्र के दही भत्ता गांव निवासी रेहाना खातून ने कुचायकोट थाने में आवेदन देकर अपने पति सोनाफ अली के लापता होने की सूचना दी है। पुलिस ने अब महिला के आवेदन पर एम्बुलेंस चालक सोनाफ अली की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इधर उत्पाद विभाग की पुलिस ने गोपालपुर थाना क्षेत्र के कोट नरहवा में नितेश कुमार नाम के एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस आरोपी के पास से 18 लीटर से अधिक शराब और इसकी मोटरसाइकिल को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी लक्ष्मीपुर चैलवा थाना गोपालपुर का निवासी है। पुलिस ने इसे पूछताछ के बाद आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विजयपुर थाना क्षेत्र के शीतलपुर गांव में पिछले लगभग 3 सप्ताह के अंदर 11 चोरी की घटना हो गई जिसको लेकर ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीण परेशान हैं। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी में ग्रामीण घर की छतों पर सोने चले जाते हैं और ऐसे में चोर उनके घरों में घुसकर कीमती सामान की चोरी कर रहे हैं। 11वीं चोरी की घटना के बाद लोग परेशान हैं, पुलिस से लगातार रात्रि गश्ती करने की मांग कर रहे हैं और इस भीषण गर्मी में हो रही इस चोरी की घटना से आसपास के लोगों की भी परेशानी बढ़ी हुई है। वहीं उत्पाद विभाग की पुलिस ने कुचायकोट के पकड़ी गांव के पास भी छापेमारी की और यहां भी एक शराब तस्कर को पकड़ा गया। इसके पास से भी 51 लीटर से अधिक देशी शराब मिली है। पकड़ा गया आरोपी का नाम सूरज कुमार बताया जा रहा है जो कुचायकोट के चौचक्का गांव का रहने वाला है। पुलिस ने इसके भी मोटरसाइकिल और शराब को जब्त कर इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तरफ से कुचायकोट प्रखंड के पंचायत भवन परिसर कुचायकोट में बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं इत्यादि के विषय पर लोगों को जानकारी दी गई। इस दौरान बाल अनुकूल कानूनी सेवा योजना के बारे में भी बताया गया। सर्वोच्च न्यायालय और विशेष लोक अदालत समाधान समारोह कार्यक्रम को लेकर भी लोगों को जानकारी दी गई। साथ ही अस्थायी लोक अदालत के गठन, पर भी लोगों को जानकारी दी गई। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता संजय कुमार द्विवेदी और पीएलवी पंकज कुमार की टीम ने कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों को बच्चों के साथ कैसे मैत्रीपूर्ण संबंध में रहना है, बच्चों के सुरक्षात्मक तरीके क्या हैं, बाल श्रम, बाल विवाह, बाल तस्करी और बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यौन उत्पीड़न और विद्यालयों में गरीब, अक्षम एवं कमजोर बच्चों को मिलने वाली सहायता योजना के बारे में जानकारी दी गई। इधर बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर न्यायालय से निर्गत इश्तेहारों का विधिवत तामिला किया। इस दौरान कई अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस ने पहुंचकर फरार आरोपियों के घर इश्तेहार का तामिला किया, जिसमें आरोपी अंकित कुमार जो थाना बैकुंठपुर के सबली का निवासी है, इसके विरुद्ध भी इश्तेहार का तामिला किया गया। तो वही आरोपी जगू राय, अनिल राय तथा बहारन के घरों पर भी इश्तेहार का तामिला किया गया। ये लोग बैकुंठपुर के मुंजा जगदीशपुर गांव के निवासी हैं और अलग अलग मामलों में फरार चल रहे हैं। इधर कटिया थाना की पुलिस ने 33 लीटर देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसकी मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। बताया जा रहा है कि पुलिस लगातार वाहन जांच अभियान चला रही है। ऐसे में पुलिस ने सिद्धवनिया बाजार के आगे गुप्त सूचना के आधार पर एक मोटरसाइकिल सवार से 33 लीटर देशी शराब बरामद किया और इसमें आरोपी नंद किशोर सिंह को गिरफ्तार किया गया, जो थाना चौरा खास जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश के उस्मानपुर गाँव का निवासी बताया जा रहा है। उचका गांव थाना की पुलिस ने शराब कांड के एक प्राथमिकी आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस आरोपी पर पहले से मामला दर्ज था और पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने आरोपी शंभु पासी के घर छापेमारी कर इसे गिरफ्तार कर लिया। यह माझा के शेख टोली गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। इसके अलावा माझा पुलिस ने हत्या के प्रयास में भी फरार चल रहे अप्राथमिकी अभियुक्त नितेश कुमार सहनी को गिरफ्तार किया है। यह माझा थाना क्षेत्र के मधुसरिया गाँव का रहने वाला बताया जा रहा है। इन दोनों आरोपियों को आज पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कुचायकोट थाना क्षेत्र के मठिया हरदो गांव में मठिया दयाराम मोहल्ले में लोगों ने सड़क निर्माण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों में काफी आक्रोश है। लोग यहां कह रहे हैं कि सड़क की समस्या के वजह से यहां के लोगों को भारी परेशानी हो रही है और लोग स्थानीय प्रशासन और जन प्रतिनिधियों से मठिया हरदो गांव में खराब सड़क को निर्माण करने की मांग कर रहे हैं। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप प्ले स्टोर से रेडियो रिमझिम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे अपने मोबाइल फोन में भी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। भीषण गर्मी को लेकर सदर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड हो गया है फुल। जिला प्रशासन ने की आम जनता से अपील। करंट लगने से एक व्यक्ति की हो गई मौत। लोगों ने किया सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन। चोरी की दो मोटरसाइकिल के साथ दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और सभी थानों पर गुंडा परेड तथा चौकीदारी परेड का हुआ आयोजन। एक एम्बुलेंस चालक संदिग्ध स्थिति में हो गया है लापता। परिजन बताए जा रहे हैं परेशान। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
8: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा? आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
9: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
10: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
11: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
10: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
11: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
10: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
12: ठक ठक।
13: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
14: अच्छा मिला ही नहीं।
13: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
15: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
13: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
15: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
16: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
17: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
18: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
19: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
18: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704 34468 पे।

0: रेडियो रिमझिम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा यानी रेडियो दोस्त सोनू के तरफ से नमस्कार प्रणाम। समय हो चुका है आपका संदेश मिला कार्यक्रम का, तो ठीक सही समय पे आप सभी के द्वारा संचार के विभिन्न माध्यमों से भेजे गए संदेशों को लेकर हाजिर हो चुका हूँ आप सभी के बीच। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके द्वारा भेजे गए संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया देते हैं रेडियो रिमझिम के प्रबंध निदेशक श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव जी। तो सर, सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: यदि आप भी इस कार्यक्रम में शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपना विचार भेजना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28। व्हाट्सएप नंबर है 98527 88291 और ईमेल आईडी है radiorimjhim@gmail.com। आप संचार के जिस माध्यम से चाहें उस माध्यम से अपना शिकायत, सुझाव या प्रशंसा, अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल अपनी बातों को रोकते हैं और इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं।
1: नमस्कार आदरणीय श्रोता बंधु, रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से आप सभी को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपके प्रेरणा, सुझाव और बेहतर सहयोग से ही रेडियो रिमझिम लगातार निरंतर बेहतर प्रसारण कर रहा है। आपको पता ही है कि भारत सरकार की टीम जो है 3 महीने तक रेडियो रिमझिम जहां स्थापित है उसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम एक सर्वे कर रहा है कि कितने लोग रेडियो रिमझिम को सुनते हैं, उनसे मिल रहा है। उन लोगों ने बताया कि हमने बहुत सारे गांवों का भ्रमण किया, लोगों का काफी सकारात्मक सहयोग रेडियो रिमझिम के प्रति मिल रहा है। यह जानकर हमें भी आनंद की अनुभूति हुई। आप जैसे आदरणीय श्रोताओं के बदौलत ही रेडियो रिमझिम पूरे भारत वर्ष में नए नए कीर्तिमान स्थापित करता है। हमें उम्मीद है कि जो श्रोता आपका संदेश मिला कार्यक्रम सुन रहे हैं, वे जरूर भारत सरकार के सर्वेयर को, सर्वेकर्ता को सहयोग देंगे और आपके मन में जो भी नेगेटिव, पॉजिटिव, अफर्मेटिव जो भी बातें हैं उनको बताएंगे। रेडियो रिमझिम सेहत सही लाभ कई स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रसारित करता है। इसके अलावा बीच बीच में सेहत से संबंधित विज्ञापन भी देते रहता है। इसके अलावा गोपालगंज सदर हॉस्पिटल में स्थापित जो भी चिकित्सक हैं वे भी रेडियो रिमझिम को अपना आवाज, अपना ऑडियो देते हैं जिसका प्रसारण हम करते रहते हैं। और रेडियो रिमझिम में काम करने वाले जो आरजे हैं वे भी समय समय पर एपिसोड बनाते हैं और उसका प्रसारण कभी दोपहर में, कभी सुबह में, कभी शाम में हम करते हैं।

अपने मोबाइल पर सुनिए, इंटरनेट पर सुनिए, और जो चार चक्का दो चक्का गाड़ी है यदि उसमें भी इंटरनेट की व्यवस्था है तो उस पर भी आप सुन सकते हैं। हम कोई बहुत काबिल योग्य व्यक्ति नहीं है, आप लोगों से निकला हुआ एक व्यक्ति है जो सामाजिक पारिवारिक अनुभव को आपके साथ साझा करते हैं। यह जो गर्मी है इसके पूर्व 50 साल पहले 40 साल पहले देखा जाए तो इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी। आज की गर्मी जो है हाथ पैर जो है जला दे रहा है। 11 बजे 10 बजे के बाद घर से निकलना बच्चों और बुजुर्गों के लिए बड़ा तकलीफ देह हो रहा है। इससे हम लोग कैसे बचे? लगातार सूरज का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पड़ रहा है और पृथ्वी की नमी जो है धीरे धीरे घट रही है। कई तालाब पोखरा जो है सूख गए हैं। तो इस गर्मी में हम लोग तो बेहाल हैं ही, साथ में जो पशु पक्षी हैं वे भी बेहाल हैं, जो रोगी हैं वे भी बेहाल हैं। लेकिन हम अपने स्तर से पशु पक्षियों के लिए अपने छत पर घर के सामने नाद में किसी मिट्टी के पात्र में यदि थोड़ा सा जल रख देते हैं तो हमारा जो समिष्टि है पर्यावरण है उसमें जीव जंतु को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि संसार में सभी वृक्ष खत्म हो जाएं तो मानव जाति भी खत्म हो जाएगा, पशु पक्षी खत्म हो जाएं तो मनुष्य के लिए कई तरह की महामारी जो है आ जाएगी। इसलिए अपने समष्टि को अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हमें मानवतापूर्ण सेवा पशु पक्षी की भी करनी चाहिए। रेडियो रिमझिम अपना प्रसारण सुबह 5 बजे से शुरू करता है और रात को 11:10 पर हिंदी और अंग्रेजी का समाचार सुनाने के बाद केवल रेडियो पर स्थगित करता है। ऐप पर 24 घंटे हमारा प्रसारण चलता है। रेडियो रिमझिम में काम करने वाले जो ऑपरेटर हैं वह हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि रात के समय हम विज्ञापन नहीं दे, केवल गीत संगीत और अच्छे अच्छे कार्यक्रमों का प्रसारण करें। कई लोग जो है नाइट ड्यूटी काम करते हैं विदेशों में दूसरे शहरों में, वे भी रेडियो रिमझिम को सुनते हैं। हमारे असंख्य श्रोता ऐसे हैं जो हमें सुनते हैं, मिलने पर बताते हैं, लेकिन आपका संदेश मिला में बहुत कम संख्या में आपका संदेश आता है। वैसे रेडियो रिमझिम के आरजे द्वारा बार बार संकेत दिया जाता है कि आप जो है किसी भी माध्यम से हम तक संदेश दें। हमें लगता है कि हम यदि बहुत अच्छा करते हैं उसकी भी सूचना दें, कोई कार्यक्रम आपको अच्छा नहीं लगता है उसके बारे में भी बताएं, और कोई नया कार्यक्रम यदि आप सुनना चाहते हैं तो उसके बारे में भी बताएं। चूंकि हम जो है पूरे जनमानस की भावना को ध्यान में रखते हुए अपने विवेक से अच्छे अच्छे कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं, लेकिन मानव हैं, हमसे भी चूक हो सकती है, और जब आप लोगों का सुझाव आता है तो हम और बेहतर से बेहतर कार्यक्रम का प्रसारण करते हैं। अभी कुछ समय पहले कुछ बहनों का पत्र आया था, उन्होंने कहा कि भाई सोठी बिरजाभार को फिर से चालू किया जाए, तो हमने उस कार्यक्रम को चालू किया। कुछ युवा साथी हमारे हैं, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ भारत की कहानी एक कार्यक्रम है जो बड़ा ही अच्छा लगता है, थोड़ा उसे भी चालू करें। उसे भी चालू किया गया। कई लोग हंसते हुए कहे कि आत्मा परमात्मा रूह की कहानी भी हमें सुनाइए, हमने उसे भी चालू किया। बड़ा ही आनंद मिलता है जब आप लोग आदेश देते हैं और हम उसका अनुपालन करते हैं। गोपालगंज हालचाल प्रत्येक दिन रात्रि 9 बजे और अगले दिन सुबह 7 बजे इसका प्रसारण हम नियमित रूप से करते हैं। और बहुत सारे श्रोता हैं जो रेडियो पर नहीं सुन पाते हैं, उनके लिए रेडियो रिमझिम के नाम से YouTube है।

0: जिस पर हाल चाल गोपालगंज लिखा हुआ है और ऑडियो के माध्यम से वे हमें सुनते हैं। रेडियो रिमझिम हमेशा प्रयास करता है कि नवाचारी कार्यक्रमों का हम प्रसारण करें और बेहतर करें। समय के साथ जो बदलता है वह बेहतर होता है। जिस तरह मनुष्य का जीवन शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, समय के साथ हर अवस्था में व्यक्ति प्रवेश करता है, उसकी जानकारी जो है परिपक्व होने लगती है और उस अनुभव को समाज में बांटने लगता है। आज के युवा वर्ग के पास समय नहीं है किसी का बात सुनने के लिए, क्योंकि उनका सबसे अच्छा साथी जो है मोबाइल है, और मोबाइल को वे खोल लेते हैं तो किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं, वह मोबाइल में घुसे रहते हैं। मैं ऐसे युवा साथियों से बोलूंगा कि यदि आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके साथ भी कुछ समय दीजिए, उनके जीवन का अनुभव लीजिए, बड़ा ही काम करेगा। आजकल तो जो नेशनल हाईवे है उस पर हम देखे हैं कई बच्चे जो है मोटरसाइकिल चलाते समय मोबाइल को हाथ में लेकर यूट्यूब देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कितनी खतरनाक स्थिति बन गई है। जीवन का मूल्य जो है माँ बाप ही समझते हैं, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना है। परिवहन विभाग द्वारा इसके संदर्भ में बड़ा ही कड़ा नियम लागू किया गया है कि बाइक चलाते समय, चार चक्का चलाते समय आप मोबाइल का उपयोग करते हैं तो उसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसके बाद भी कुछ लोग गलती कर रहे हैं जिसकी भुगतान जो है निर्दोष लोग ही करते हैं। आदरणीय श्रोता बंधु, बातों का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मिस्टर सोनू जी बैठे हैं जो प्रत्येक रविवार को बैठते हैं और आपके द्वारा जो संदेश आया है उसे वे पढ़ेंगे और हम पूरी ईमानदारी से उसका जवाब देंगे।
1: जी सर, हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी संचार के विभिन्न माध्यमों से बहुत सारे संदेश पहुँचे हुए हैं। सबसे पहला संदेश पहुँचा हुआ है मदन चौहान जी का इमिलिया से। रेडियो रिमझिम को ऐप के माध्यम से सुनता हूँ। बिरहा चलते समय बीच में आप लोग रोक देते हैं, अच्छा नहीं लगता है। छोटा और अच्छा वाला बिरहा सुनाए और बाकी सभी कार्यक्रम अच्छा है। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे।
0: आदरणीय चौहान जी, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सबसे पहले मैं उन तमाम श्रोताओं को एक बार पुनः नमन करूंगा कि आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप लोग अपने बातों को हम तक पहुंचाते हैं। जहां लोगों के पास चाय पीने का समय नहीं है, बात करने का समय नहीं है, कई युवा साथी को देखते हैं कि अपने घर में बाबा से या पिताजी से बात करने का समय नहीं है, इतनी व्यस्तता है, और उस दौर में भी रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम आपका संदेश मिला में कोई दो चार लाइन लिख कर भेज देता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। हमें यह प्रतीत होता है कि आप हमें सुनते हैं, अपने बातों को हमारे साथ साझा करते हैं। आपने कहा कि जब बिरहा शुरू होता है तो बीच में हम लोग रोक देते हैं, तो सच्चाई यह है कि पटना का प्रादेशिक समाचार रात्रि में 7:30 पर है और सुबह में 8:48 पर प्रादेशिक समाचार लाइव देता है, यानी डायरेक्ट बोलता है, और उस समाचार को हम रिकॉर्डेड करके प्रसारित नहीं कर पाते हैं। इस वजह से रात्रि में 7:30 पर जो बिरहा 7 शुरू होता है उसे हमें रोकना पड़ता है, क्योंकि वह समाचार जब निकल जाएगा तो फिर जो है हमें अगले दिन मिलेगा। इसलिए जो रेडियो रिमझिम के ऑपरेटर हैं, सजग रहते हैं, सतर्क रहते हैं कि ठीक समय पर रात्रि का प्रादेशिक समाचार का हम प्रसारण करें। इसलिए बिरहा को 14 मिनट हमें या 15 मिनट रोकना पड़ता है। वह समाचार जब पूरा हो जाता है तो जहाँ तक हम बिरहा को रोके हैं फिर उसके आगे का प्रसारण कर देते हैं। हमारी मजबूरी है, हमारी कमजोरी है। चूंकि जो ऑनलाइन समाचार होता है वह राष्ट्रीय या प्रादेशिक, वह डायरेक्ट हम उसका प्रसारण करते हैं और हमारे साथ भारत सरकार का नियमावली है, बंदिश है कि उस समाचार को हमें सीधे जिस तरह आ रहा है उसी रूप में हमें प्रसारित करना है। तो इस जगह पर रेडियो रिमझिम परिवार विवश है, लाचार है। हो सकता है आपके पास बिरहा का थोड़ा सा आनंद का कमी होता हो, लेकिन हमारे बहुत सारे जागरूक श्रोता हैं जो रेडियो रिमझिम से प्रसारित होने वाले राष्ट्रीय समाचार, प्रादेशिक समाचार और गोपालगंज का हालचाल सुनने के लिए बेताब रहते हैं। तो उनके भावना का कद्र करते हुए रेडियो रिमझिम नियत समय पर समाचार का प्रसारण करता है। आदरणीय चौहान जी, अन्य कार्यक्रम जो आपको अच्छे लगते हैं उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले आपका संदेश मिला कार्यक्रम में कुछ नए कार्यक्रमों पर आप चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है रघुवर शाह जी का, नेचुआ जलालपुर से। सर नमस्कार, रेडियो रिमझिम को लंबे समय से सुनता हूँ। पिछले एक सप्ताह से समय से रेडियो चालू हो रहा है। सुबह का भजन काफी अच्छा है, बाजार भाव भी रविवार को बोला जाए हाल चाल में। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
0: आदरणीय शाह जी, रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम आपके पूरे परिवार को, नेचुआ जलालपुर ग्राम और बाजार वासियों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। काफी अच्छा लगता है जब आप लोग रेडियो रिमझिम को लगातार और नियमित सुनते हैं। रेडियो रिमझिम भी यही चाहता है कि कम से कम गोपालगंज जिले के सभी निवासी हमें सुने, अपनी प्रतिक्रिया दें और रेडियो रिमझिम को बेहतर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। साक्षर निरक्षर व्यक्ति कोई हो सकता है, लेकिन जो उसका विचार होता है, जो उसका अनुभव होता है, वह मेरे समझ से बिजोड़ होता है। हमारे जीवन काल में एक ऐसे व्यक्ति थे कि जमीन का मिट्टी उठाकर बता देते थे कि यह जमीन कैसा है, घर बनाने लायक है, पोखरा खुनवाने लायक है, रास्ता बनाने लायक है। वह जो है इस तरह मिट्टी का अध्ययन करते थे और उनकी शिक्षा जो थी बहुत कम थी। वे न बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़े, न कोई ज्योतिषी का विधवत उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन जो मिट्टी को वह उठाते थे और बताते थे वह जो है आज भी अकाट्य सत्य है। हम बचपन अवस्था में अपने बाबूजी के साथ कभी कभार उस पंडित जी के घर जाया करते थे और वह इतनी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें और समाज की बातें मेरे बाबूजी के साथ एक परिचर्चा करते थे। वे हमारे बाबूजी के मित्र थे, लेकिन बचपन अवस्था में उनके संसर्ग में जाने से हमें भी बहुत सारा ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो मेरे समझ से जो साक्षर व्यक्ति है उसे ज्ञान का भरपूर अनुभव हो जाता है, लेकिन जो निरक्षर है उसके पास अक्षर ज्ञान की कमी रहती है, बाकी वह जीवन का लंबा अनुभव रखता है। इसलिए जो हमारे युवा साथी हमें सुन रहे हैं, मैं उन्हें अपने अनुभव के बारे में यही बताऊंगा कि व्यक्ति साक्षर रहे या निरक्षर, यदि वह पिता के उम्र का है तो उसका सम्मान कीजिए। माता के उम्र का है, उन्हें भी सम्मान कीजिए, क्योंकि सम्मान एक ऐसी चीज है जो आप दीजिएगा आपके जीवन काल में वही आपको पास लौट कर आएगा। और वही सही और सच्चा व्यक्ति होता है जो जाति धर्म और लिंग के ऊपर उठकर इन सब बातों पर ध्यान देता है। तो वह जो बातें शाह जी आपको हमने बताई, वह अपने अनुभव के आधार पर बताया। रेडियो रिमझिम हमेशा बेहतर चीजों का प्रसारण करता है और कोई भी कार्यक्रम प्रसारण करते समय हमेशा एक श्रोता बनकर पहले हम लोग विचार करते हैं कि यदि हमें इस तरह का कार्यक्रम सुनाया जाए तो हमें क्या अनुभूति होगी। ठीक उसी तरह का कार्यक्रम का हम प्रसारण करते हैं। आपने जो भजन के बारे में हमारी प्रशंसा की, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि रेडियो रिमझिम परिवार कभी आपको निराश होने नहीं देगा। और आपने जो रविवार को बताया कि हालचाल में बाजार भाव बताया जाए, तो हम अपने टीम के साथ इस पर चर्चा करेंगे। यदि संभव हुआ तो हमें प्रसारण करने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। आपने जो संदेश दिया, इसके लिए हम एक बार पुनः आपके पूरे परिवार को नेचुआ जलालपुर गांव के और बाजार के सभी निवासियों को धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं।
1: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है। सुगंधी पांडे सर नमस्कार, मैं गोपालपुर थाना के अंतर्गत गोपालपुर के रहने वाली हूँ। रेडियो और ऐप दोनों से हम लोग सुनते हैं। आपके यहाँ से ऑफलाइन काफी प्यारे प्यारे गाने बज रहे हैं, ऑनलाइन शो भी चालू किया जाए, तो सर इनके संदेशों पर अपना विचार दें।
0: आदरणीय सुगंधी जी, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। दूर दराज क्षेत्र से आपने जो संदेश दिया, काफी अच्छा लगा। रेडियो रिमझिम परिवार हमेशा यही चाहता है कि हम बेहतर से बेहतर गीतों का, कार्यक्रमों का, विज्ञापन का प्रसारण करें और ऐसा प्रसारण करें जो हमारे अति प्रिय श्रोताओं को अच्छा लगे। यदि हम इस काम में सफल हैं तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं। यदि इस काम में हम असफल हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए। रेडियो रिमझिम सुबह 5 बजे से और लगातार रात को 11-10 तक अपना प्रसारण रेडियो पर करता है और ऐप के माध्यम से आप 24 घंटे सुन सकते हैं और आप दोनों सेवाओं का लाभ ले रही हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। रिकॉर्डेड प्रोग्राम भी हम बेहतर चयन करते हैं और तब हम उसका प्रसारण करते हैं। ऑनलाइन कार्यक्रम कुछ तकनीकी व्यवधान और कुछ कारण से हम प्रसारित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसका भी प्रसारण हम बहुत जल्द शुरू कर देंगे। और आपने जो सकारात्मक बातें लिखी हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो आपके परिवार के द्वारा संदेश भेजा गया है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
1: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है अमित कुमार सिंह जी का। ऊंचका गांव से सर नमस्कार, पिछले 2 सप्ताह से हेलो क्यूज कंटेस्ट का रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है और मेरे सभी मित्र इस कार्यक्रम को सुनते हैं, इसका रिकॉर्डिंग किया जाए। और मेरा सुझाव है कि रिकॉर्डिंग का समय शाम को रखा जाए, तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
0: आदरणीय अमित कुमार जी, आपके माता पिता को और ऊंचका गांव के सभी निवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट जो है रेडियो रिमझिम का 18 वर्ष पुराना कार्यक्रम है। जब रेडियो रिमझिम स्थापित हुआ था उसी समय से यह कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है और बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट जो है इतना लोकप्रिय हुआ कि कई निजी विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में प्रत्येक शनिवार के दिन इस कार्यक्रम को सुनाया जाता था। और आज जो है कई अध्यापक ऐसे हैं, सरकारी गैर सरकारी, जो अपने विद्यालय में हमेशा कोई न कोई क्विज कराते रहते हैं। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में सबसे अच्छी बात यह है कि हमें पता चल जाता है कि हमारा ज्ञान कितना तक पहुंचा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सी नई बातें जो है जानकारी होती है, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। इसमें आयु वर्ग का कोई बाधा नहीं है। कई लोग जो है सरकारी गैर सरकारी सेवा में रहते हुए कभी कभी ट्राई करते हैं कि हम जो है कितना जो है जानते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वे भी इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। यह बात सही है, पिछले दो सप्ताह से हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगले सप्ताह से इसका रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा और आप जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। विशेषकर जो विद्यार्थी वर्ग है वह हमेशा चाहता है कुछ नया सीखना, कुछ नया करना, क्योंकि युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर और दिमाग दोनों जो है तेज तर्रार होते हैं। यदि सही दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम सफल होंगे। अगर दिशा थोड़ा सा भी गलत हो जाए तो पूरा जीवन जो है असहाय की स्थिति हो जाती है। सही और सच्चे मार्ग पर चलने में बहुत कठिनाई है। कभी खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, कभी कोई पुस्तक मिलेगा नहीं मिलेगा, कई परीक्षा में हम भाग लेंगे और सफल हो जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति लगातार अपने लक्ष्य के तरफ बढ़ता है उसे सफलता जरूर मिलता है। यह बातें सत्य है और इतिहास भी इसका गवाह है। लेकिन व्यक्ति जो है समय के साथ अपने लक्ष्य के प्रति विचलित हो जाता है, इसलिए उसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती है। मान लिया जाए कोई बच्चा सिपाही की तैयारी कर रहा है, एक बार गया, दो बार गया, सफल नहीं हुआ तो तीसरा बार बोला कि अब चलते हैं स्टाफ सिलेक्शन का तैयारी करने, उसमें भी असफल। अब चलते हैं शिक्षक का बीएड कर ले और जो है शिक्षक वाला तैयारी शुरू कर दे। तो बार बार जब ट्रैक आदमी बदलता है तो उसके सफलता में संदेह हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति स्पष्ट लक्ष्य के साथ जीवन में आगे बढ़ता है वह सदैव सफल होता है। यदि हमें खेती करना है तो जम के करना है, सब्जी का खेती हो, बागवानी हो, बिना मन का जो है कार्य जो है हमेशा असंतोष पैदा करता है और खुशी पूर्वक किया गया कार्य जो है व्यक्ति को सफल बनाता है। मान लिया जाए कोई व्यक्ति आरजे है, रेडियो पर बोल रहा है, बगल में मोबाइल रखा है, कभी घर पर बात कर रहा है, फिर कार्यक्रम कर रहा है, धीरे धीरे उसके श्रोताओं की संख्या कम हो जाएगी। आज जो व्यक्ति लगातार श्रोता से जुड़ा हुआ है, आंखों में आंख डालकर बात कर रहा है, उसका कॉन्टेक्ट जो है रहेगा और वह कार्यक्रम भी सफल होगा। जीवन के हर क्षेत्र में यही बातें जो है लागू होती है। लेकिन जो युवा अवस्था है जहाँ पर शक्ति होता है, जोश होता है, कुछ करने का जुनून होता है, यदि दिशा और लक्ष्य स्पष्ट है तो व्यक्ति जो है सफल हो जाता है। आज जो है कई गांवों में आप देखेंगे कि कई व्यक्ति जो है अधिकारी बन गए, कई व्यक्ति जो है इंजीनियर बन गए, कई लोग जो है डॉक्टर बन गए, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि जब वे लोग अच्छे बन जाते हैं तो धीरे धीरे गांव जो है छूट जाता है। मात्र 10% लोग ही हैं जो उसमें से गांव से जुड़े रहते हैं, बाकी लोग जो है सुख सुविधा मिलते ही गांव की स्थितियों को भूल जाते हैं, यह भी एक विडंबना है। इसलिए हमें अपना लक्ष्य और सोच स्पष्ट रखना चाहिए और जीवन में जहां कहीं भी हम रहे लेकिन अपने जड़ से जुड़े रहे, तभी व्यक्ति तो सफल होता ही है, उसके परिवार के बच्चे को भी लगता है कि वे अपने जड़ से जुड़े हुए हैं। और जिस तरह आकाश में पतंग उड़ता है और वह जब तक डोर में है तब तक सही है, और जहां वह पतंग कट गया तो कहीं नाला में कहीं कूड़ा में वह गिर जाता है। इसलिए पतंग के तरह डोर के तरह व्यक्ति को अपने जड़ से जुड़ा होना चाहिए, और जो व्यक्ति जड़ से जुड़ा रहता है उसका वर्तमान तो अच्छा ही होता है, आने वाले बच्चे जो है भविष्य में वह भी सफल होते हैं क्योंकि वह अपने जड़ से जुड़े रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है मौलादीन अंसारी चाड़ी दुर्ग में एक निजी विद्यालय में शिक्षक का कार्य करता था। अभी मैं दुबई में रहता हूं, यहां ऐप के माध्यम से रेडियो रिमझिम को सुनता हूं। आपका संदेश मिला कार्यक्रम हमें काफी अच्छा लगता है। मैं विदेश से आने के बाद आपसे मिलना चाहूंगा। तो सर, इनके संदेशों पर अपना विचार दें।
0: आदरणीय मौलादीन जी, आपके पूरे परिवार को, दुबई में जो भी आपके साथी हैं उन सभी को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं। आप एक निजी विद्यालय के शिक्षक के रूप में कार्य करने के बाद दुबई में गए हैं, यह जानकर काफी अच्छा लगा। विद्यालय निजी हो या सरकारी, जब व्यक्ति शिक्षक का चोला पहन लेता है तो अपने आप ही वह शिष्ट आचरण में आ जाता है, और बच्चों को शिष्टाचार सिखाने से पहले व्यक्ति खुद शिष्ट बनकर उनके सामने एक मिसाल पेश करता है। हो सकता है आर्थिक कमी से आप दुबई गए होंगे, लेकिन जब तक आप शिक्षक थे एक बेहतर शिक्षक के रूप में कार्य किए होंगे, और दुबई में भी आप लोगों को जागरूक कर रहे होंगे। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को अंधेरे से रोशनी के तरफ ले जाती है, व्यक्ति के दिमाग के बॉल को जला देती है, व्यक्ति गलत और सही का निर्णय करने लगता है, और व्यक्ति जो है स्वार्थ से ऊपर उठ जाता है। और आप दुबई में रहते हुए रेडियो रिमझिम को सुनते हैं, प्यार करते हैं, यह जानकर हमें भी अच्छा लगा। आप जैसे सैकड़ों हमारे श्रोता हैं जो संदेश तो नहीं भेज पाते हैं, कभी कभार भेजते हैं, लेकिन वह हमें सुनते हैं, पसंद करते हैं, और हम भी चाहते हैं, ईश्वर से दुआ करते हैं कि आप लोग जहां भी हैं खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, रेडियो रिमझिम को सुनते रहें और अपनी मन की बातें हमको बताते रहें। हमारे पास आवाज है और आपके पास विचार है, और जब दोनों का तालमेल होता है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। रेडियो रिमझिम अपने स्थापना काल से ही प्रवासी भारतीयों के विषय में हमेशा चिंतित रहा है, उनके बेहतरी के लिए कामना करता है और उम्मीद करता है कि वे सदैव आर्थिक रूप से मजबूत रहें। और आपने एक अलग से प्रस्ताव रखा कि हमसे मिलना चाहते हैं, तो रेडियो रिमझिम का मोबाइल नंबर रेडियो रिमझिम के नाम से फेसबुक है, वहाँ पर लिखा हुआ है। जब भी आप मिलना चाहें उस नंबर पर फोन करें, एक बार बात करें और फिर हम लोग मिलते हैं, क्योंकि हम एक सेवक हैं और श्रोताओं के प्रति सदैव आदर और सम्मान रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि यदि हमारे श्रोता हमसे मिलना चाहें तो निसंकोच होकर मिलें, अपने बातों को कहें, हमें भी काफ़ी खुशी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है आमठा लाइन बाजार से देवेश मौर्य जी का। रेडियो रिमझिम परिवार को मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं ऑनलाइन शो में हमेशा जुड़ता था, बाकी रिकॉर्डेड कार्यक्रम बहुत अच्छा है। संस्कार और सभ्यता की बातें हमें काफ़ी अच्छी लगती है, इसके लिए हम रेडियो रिमझिम परिवार को धन्यवाद देते हैं। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे। साथ ही देखे तो आगे कई संदेश है मेरे पास, लेकिन समय का इशारा है कि कार्यक्रम को समापन करना चाहिए। तो प्रतिक्रिया देते हुए कार्यक्रम को समापन करें और विदा ले।
0: आदरणीय मौर्या जी, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपने जो प्रश्न रखा वह उचित है और सही है। रेडियो रिमझिम हमेशा से चाहता है कि हम अपना ऑफलाइन ऑनलाइन कार्यक्रम रेगुलर रखें। कभी कभी हमें भी तकनीकी परेशानी, मानव बल की परेशानी हो जाती है, जिसके वजह से हम जो है कई कार्यक्रम से विचलित हो जाते हैं, बाधित हो जाते हैं। फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि सफल होने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए, और जो प्रयास करता है वही सफल होता है। आपने संस्कार और सभ्यता की बातें की, तो सफल व्यक्ति मेरे समझ से वही है जो संस्कार के साथ अपने कार्यों को करे। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, लोग कहते है इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो, मैं कहता हूँ खुद पर विश्वास करो, क्योंकि सारी शक्तियाँ तुम्हारे भीतर है। कभी कमजोर नहीं पड़े, आप अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। आपके भीतर अनंत शक्ति है। जब इंसान गंदे और मैले कपड़ों में पहनने में शर्माती है, तो गंदे और मैले विचार भी अपने मन में नहीं लाना चाहिए। जिंदगी एक ऐसी पहेली है कि इसे अच्छाई के साथ आप देखेंगे तो जीवन में केवल अच्छा ही अच्छा करेंगे, और यदि आप बुराई के साथ देखेंगे तो हमेशा आपसे गलती हो जाएगी। आजकल मोबाइल है, आप उसमें जो चीज देखना चाहें वही चीज आपको दिखाते रहेगा, और जब अच्छा देखना चाहें तो आपको अच्छा भी दिखाई देने लगेगा। ठीक उसी तरह यह जीवन है। जीवन में अपना लक्ष्य, अपनी बातें स्पष्ट रखनी चाहिए और व्यक्ति को भटकावे में नहीं आनी चाहिए। कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, किस तरह से धन कमा रहा है, किस तरह से कोठा बना रहा है, उस पर ध्यान मत दीजिए। आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर कितनी शक्तियां हैं, आप कितने समर्थवान हैं, उसी के अनुसार अपना कदम बढ़ाएं। मेरे समझ से कि हमें जानने वाला हमसे बेहतर कोई नहीं है, और नकल करने वाले व्यक्ति के पास अकल होनी चाहिए। जीवन में सफल होने के लिए दो तीन मंत्र है। जिस काम के प्रति आपको लगाव हो उस काम को बेहतर ढंग से करें। पटीदारी में सरकारी नौकरी हो गया, उसके लिए आप जो है अपने माथा को दीवार पर नहीं पटके। आप यदि लगता है कि हम भी सफल हो सकते हैं, तब प्रयास कीजिए, क्योंकि यह जीवन जो है एक निश्चित समय के लिए है, और उसी निश्चित समय में हमें सभी कामों को करना है और फिर प्रस्थान कर जाना है। ज्यादा सोचिएगा, आजकल कई तरह की बीमारी आ गई है, शुगर हो जा रहा है, हाई ब्लड प्रेशर हो जा रहा है, कई तरह की व्याधियां शरीर के अंदर समा जाती है। तो अपने सामर्थ्य और समय को देखते हुए जो व्यक्ति निर्णय लेता है वह व्यक्ति सफल होता है। हम अपने लंबे जीवन काल में इस बात को महसूस किए हैं, इस बात को ओबलाइज किए हैं कि व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार अपना निर्णय लेना चाहिए। यदि हमारे पटीदारी में कोई यूपीएससी निकाल लिया और उसको देखकर हम भी तैयारी शुरू किए तो एक लंबा समय परिश्रम और धन की जरूरत पड़ती है और हमारे अंदर कितनी शक्तियां हैं यह हम जानते हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति को निर्णय लेना चाहिए और वही व्यक्ति सफल होता है जो छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए लंबे लक्ष्य तक पहुंचता है। लंबे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लंबी छलांग जरूरी नहीं है, छोटा सा कदम जो है प्रतिदिन परिवर्तन का संकेत देता है। आदरणीय श्रोता बंधु, आप लोगों से बात करते करते समय कब निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है, लेकिन रेडियो रिमझिम आपके प्रति हमेशा समर्पण भाव से अपने कार्यों को करता है। अपने पूरे जिले की सूचना प्रतिदिन रात को 9:05 में और सुबह 7 बजे देता है और प्रत्येक दिन नए नए कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। यह आप लोगों के तरफ से सकारात्मक सहयोग है कि रेडियो रिमझिम बेहतर करने का प्रयास करता है और जो हमें सुन रहे हैं उनके जीवन में भी गुणात्मक परिवर्तन आए। वे जो जिस परिवार से हैं, जहां से भी हैं, जीवन में बेहतर करें, यही कामना हम लोग करते हैं। और रेडियो रिमझिम आपको कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से जागरूक करने का प्रयास करता है। जो भी सूचनाएं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हमें प्राप्त होता है उसका हम त्वरित गति से प्रसारण करते हैं, यह हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। तो चलते चलते इस भीषण गर्मी में अपने को, अपने परिवार को, अपने परिवार के बुजुर्ग और बच्चों पर विशेष ध्यान रखें और अपने अगल बगल किसी न किसी पात्र में थोड़ा सा जल रखें ताकि जीव जंतु पशु पक्षी भी उस जल को ग्रहण कर सके, यह मानव धर्म है। इसी के साथ आज का दिन आपका बेहतर हो, इसी के साथ अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: तो श्रोताओं, ये रहा आज का संदेश मिला कार्यक्रम। यदि आप भी इस कार्यक्रम में अपना शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं तो आप भी भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28 तथा व्हाट्सएप नंबर है 98527 88 291 और ईमेल आईडी है radiorimjim@gmail.com। आप जिस माध्यम से अपने शिकायत, सुझाव या प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं उस माध्यम का उपयोग करके हम तक पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें भी दीजिए जाने की इजाजत। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम, जो हमेशा से कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
5: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 309 45 651 या 97 097 06 575।
6: अरे
5: स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
5: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
6: सुनिए सुनिए सुनिए,
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
7: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
8: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
9: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
8: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
9: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
10: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
11: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
10: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
12: रही है कि हमें अपने श्रोताओं को कहना होगा अलविदा।
13: Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 AM. Thanks for tuning in. Have a superb day.
12: Namaskar.

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली सीईयूटी स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमरीका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
3: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
4: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
2: गृहमंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजाति समुदाय का स्वामित्व तो होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
4: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
2: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1 लाख से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रूपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रूपये प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
7: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
7: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
2: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
8: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हॉर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौताओं को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले, हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ते ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, फालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल, प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन बीएलए ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नौतपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 46.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली सीयूईटी स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमरीका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
10: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
9: कहाँ पर?
10: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल छवही खास गोपालगंज,
9: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
10: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
9: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
10: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
11: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
12: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
13: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
12: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
14: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
15: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
16: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां भी मिलती हैं।
17: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
18: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
19: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
18: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
19: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
18: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
20: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
21: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
20: तो देर मत कीजिए,
21: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार

0: तो है फ्री ओपीडी, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता: कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता: जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: था।
1: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
2: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
3: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
3: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
7: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
6: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
8: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
6: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
6: और 9097160602।
9: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
10: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
11: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
12: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
13: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
11: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
10: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
11: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
13: कॉल करें 87 8 94 18 744।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
7: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
7: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
8: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
9: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
8: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
9: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
9: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
9: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: राधा तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
9: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94-704-34-468 पे।
11: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी। पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में दूध और मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिकारियों को कार्य योजना बनाने का दिया निर्देश। सीबीएसई ने कक्षा 1 से लेकर माध्यमिक स्तर तक मैथिली भाषा को मातृभाषा विषय के रूप में मान्यता प्रदान की। और मौसम विभाग ने आज बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गया जिले में लू चलने की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की है। पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। पिछले 2 सप्ताह में तेल के मूल्यों में चौथी बार वृद्धि हुई है। पटना में पेट्रोल 113.35 रुपये और डीजल 99.36 रुपये प्रति लीटर हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। आज जिन विभूतियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे उनमें बिहार की 3 हस्तियां शामिल हैं। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के पूर्व कुलपति डॉक्टर गोपालजी त्रिवेदी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। वहीं टोमकच नृत्य को मुख्य धारा में लाने वाले विश्व बंधु और भोजपुरी लोक गायक भरत सिंह भारती को कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री दिया जाएगा। डॉक्टर त्रिवेदी और विश्व बंधु को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में दूध और मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिकारियों को कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया है। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन कॉम्फेड के माध्यम से दूध का उत्पादन 40 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 1.25 करोड़ लीटर करने का निर्देश दिया। श्री चौधरी ने कॉम्फेड के माध्यम से राज्य के पशुपालकों को उन्नत नस्ल के पशु उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने पशुपालन में महिलाओं को प्राथमिकता देने को कहा। बैठक में मुख्यमंत्री ने मछली का उत्पादन 9 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 25 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने नेपाल और सीमावर्ती राज्यों के मछली बाजार में बिहार के मत्स्य पालकों की मछली की पहुंच सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश में 41 लाख से अधिक परिवारों का पक्का मकान बनाया जा चुका है। इस पर 5,57,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने बताया कि योजना का पहला चरण पूरा हो चुका है और दूसरे चरण में भी अच्छी प्रगति है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि सरकारी विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाएं लेने वाले शिक्षकों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभाग जल्द ही नई नीति लागू करने जा रहा है। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से आयोजित अभिनंदन सह सम्मान समारोह के दौरान श्री तिवारी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में शिक्षकों की समस्याओं का अस्थायी समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के पाठ्यक्रम में कक्षा 1 से लेकर माध्यमिक स्तर तक मैथिली भाषा को मातृभाषा विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपालजी ठाकुर ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने उन्हें इस संबंध में पत्र भेजा है। सांसद ने बताया कि सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2026-27
से पाठ्यक्रम में मैथिली को सम्मिलित कर लिया है। नया पाठ्यक्रम सीबीएसई की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। पत्र के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के आलोक में कक्षा 1 से माध्यमिक कक्षा तक मातृभाषा मैथिली को शिक्षण का माध्यम बनाया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत युवा संगम के छठे चरण में पंजाब से आए प्रतिनिधियों ने कल बोधगया का भ्रमण किया। इस दौरान युवाओं ने विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर समेत अन्य ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का भ्रमण किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने बकरीद को लेकर 28 मई को होने वाली सीयूईटी यूजी परीक्षा स्थगित कर दी है। एजेंसी ने कहा है कि परीक्षा की नई तिथियों की घोषणा जल्द की जाएगी। 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। मीना में रात गुजारने के बाद जायरीन कल तड़के अराफात के मैदान की तरफ जाएंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। शेष समाचार एक अंतराल की बात।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। पूर्वा और पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के मौसम के दो अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। दक्षिण बिहार जहां एक ओर भीषण गर्मी और लू की चपेट में है तो दूसरी ओर उत्तर बिहार में आंधी बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज दक्षिण बिहार के 6 जिलों बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गया में गर्म दिन और लू चलने की चेतावनी जारी की है
1: तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों और गया जिले में लू चलने की संभावना है।
0: विभाग ने उत्तर बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान और सारण जिले में कुछ हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अररिया, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, किशनगंज और सुपौल जिलों में तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे और हल्की से मध्यम आंधी और बिजली गिरने के साथ बारिश होने की संभावना है।
0: इधर मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 44.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ डेहरी प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। बक्सर का अधिकतम तापमान 43.9, कैमूर का 43.7, औरंगाबाद का 43.1 तथा गया और शेखपुरा का अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटना का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कटिहार के प्राणपुर में सबसे अधिक 75.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भीषण गर्मी को देखते हुए सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक के वर्ग संचालन पर 31 मई तक जबकि भोजपुर जिला प्रशासन ने 27 मई तक रोक लगा दी है। प्रदेश में पिछले 2 सप्ताह से जारी भीषण गर्मी और लू को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया है। लू से प्रभावित मरीजों को यह टीम तत्काल सरकारी अस्पताल पहुंचाएगी और इलाज की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएगी। कोई भी हीट वेव से प्रभावित मरीज हेल्पलाइन नंबर 104 पर स्वास्थ्य सुविधा के लिए मदद ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने के अवसर पर प्रदेश भाजपा की ओर से राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि 5 जून से इस अभियान की शुरुआत होगी। 21 जून तक चलने वाले अभियान के तहत संवाद कार्यक्रम, जनसंपर्क अभियान, पौधारोपण अभियान, प्रगति यात्रा और विकसित भारत संकल्प सम्मेलन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य का साइबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर 1930 जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित होगा। इससे कॉल सेंटर पर साइबर अपराध और ठगी से जुड़ी शिकायतें वर्तमान के मुकाबले काफी कम समय में दर्ज हो सकेंगी। IG साइबर अपराध रंजीत कुमार मिश्रा ने बताया कि नई व्यवस्था में कार्रवाई में लगने वाला समय घटेगा और पीड़ितों को गोल्डन आवर का फायदा होगा। उन्होंने बताया कि AI से सूचना की सटीकता बढ़ेगी और कार्रवाई में तेजी आएगी। पटना जिले के पचमला थाना क्षेत्र के नौरंगा जलालपुर गांव में 2 पक्षों के बीच हुई गोलीबारी के बाद कुख्यात सोनू मोनू के घर छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम की घर वालों की ओर से तलाशी लेने के मामले में 2 थानाध्यक्षों को निलंबित कर दिया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि छापेमारी के दौरान कार्यशैली सही नहीं पाए जाने के चलते पचमला और हाथीदह थानाध्यक्षों को निलंबित किया गया है। इधर भोजपुर के पुलिस अधीक्षक राज ने खवासपुर थानाध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इन सभी पर एक मामले में हिरासत में लिए युवकों को छोड़ने के लिए 50,000 रूपये घूस मांगने का आरोप है। वहीं कटिहार के पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में 16 पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। सुपौल जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र के कमरिया उपशाखा नहर के पास शराब तस्करी की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इसमें एक महिला होमगार्ड और पीटीसी जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावरों ने पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया और महिला होमगार्ड की राइफल भी छीन ली। इस मामले में 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अररिया जिले के कुआरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 115 किलो गांजा बरामद किया है। बेगूसराय पुलिस ने एक मामले में 20 वर्षों से फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कैमूर जिले के बबुरा गांव से पुलिस ने पशु तस्करों से 1 दर्जन पशुओं को मुक्त कराया है। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के त्रिकालपुर गांव में एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, सरकार उद्यमियों को सुरक्षा और भरोसा देगी। दैनिक जागरण लिखता है, पशुपालकों को कॉम्फेड के माध्यम से दी जाएगी उन्नत नस्ल की गाय भैंस और बकरी। प्रभात खबर की सुर्खी है, पाकिस्तान में सैन्य कर्मियों की ट्रेन पर आत्मघाती हमला 24 की मौत। दैनिक भास्कर ने लिखा है, 48 घंटे तक जारी रहेगा भीषण गर्मी का सितम, फिर बदलेगा मौसम। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, बिहार की 3 हस्तियों को आज मिलेगा पद्मश्री अवार्ड। आज अखबार की सुर्खी है, 1.5 लाख बेटियों को मिलेंगे 50,000 रुपए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी। पेट्रोल 2.61 रुपए और डीजल 2.71 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में दूध और मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिकारियों को कार्य योजना बनाने का दिया निर्देश। CBSE ने कक्षा 1 से लेकर माध्यमिक स्तर तक मैथिली भाषा को मातृभाषा विषय के रूप में मान्यता प्रदान की। और मौसम विभाग ने आज बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गया जिले में लू चलने की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन 2:00 PM प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
3: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर पटना कलकत्ता लखनऊ बनारस चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
4: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403। सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन केडिया लेन मेन रोड गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने संतोष फर्नीचर के नीचे कॉलेज रोड गोपालगंज।
9: एडमिशन फ्री
10: कहाँ पर?
9: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
10: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
9: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
10: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
9: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
11: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
12: Now pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजे सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस के कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो,
2: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: नमस्कार मैम, धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से।
2: जी, क्या हाल चाल है धनेश जी?
1: ठीक है जी, आप कैसे हैं?
2: हम भी बढ़िया हैं। क्या हो रही थी?
1: बस अभी बच्चे को लेने जा रहे हैं स्कूल, तो वही छत पे आपके पास कॉल लगा रहे हैं। आज बहुत परेशानी हो गई।
2: तो गाना कौन सा सुनना है आज आपको?
1: आज तो हमें सुनना है आशा भोसले का निधन हो गया है ना, तो उन्हें क्या सुहाने सुनाना
2: जी।
1: सुहाने कोई भी वॉल्यूम सुना देना। अच्छा सर
2: जी, और सुनवाना भी है?
1: माना है वही साले भैया गाड़ी सब है और जितने सुनने वाले सुन लेंगे। और मौसम कैसा है उधर?
2: मौसम तो काफी खतरनाक हुआ है, धूप निकला हुआ है,
1: टेटर भी है, हवा चल रहा है मैम। और एक बात बताइए, पहला कॉल उस दिन का था, आप दो दिन में नहीं बज पाया,
2: आपका गाना नहीं चला है अभी?
1: दो दिन में नहीं चल पाया पहला,
2: हो सकता है। अच्छा, शुक्रवार वाला में?
1: हाँ हाँ,
2: तो तीन कॉल बचे हुए हैं जो कि आज चलेंगे उसमें का।
1: तो वो वाला चलाइएगा कि ये वाला चलाइएगा? आज ये चलाना जरूरी है, आज उनका श्रद्धांजलि हो जाएगी ना
2: कि ये चलाएंगे। अगर आज नहीं चला तो कल ये वाला चल जाएगा, वो वाला तो चलेगा ही आज।
1: तो लास्ट में ये भी चला देना,
2: कोशिश करेंगे,
1: आज श्रद्धांजलि हो जाएगी ना।
2: जी बिल्कुल, हाँ
1: हाँ, तो इससे थोड़ा केयर कीजिएगा, क्योंकि इसीलिए आज ज्यादा करके इसीलिए मिलाया है, क्योंकि हम ओल्ड गाने सुनते हैं लेकिन हिंदी गाने तो सारे सब जगह मिल जाते है, लेकिन रिमझिम पे सुनने के लिए भोजपुरी भी करते हैं। इसलिए मैं तो हिंदी भी सुनता हूँ, गजल, पूर्वी, भजन, निर्गुण सब सुनता हूँ, ऐसी बात नहीं, सब सुनता हूँ, लेकिन वही है रिमझिम पे सुनने के लिए हमें भोजपुरी नहीं सुनना है, लेकिन आज उनके श्रद्धांजलि में सुनना है ये।
2: चलिए ठीक है, कोशिश करेंगे,
1: लास्ट में इसका कोशिश कीजिएगा लेकिन लास्ट तक आज चला देने का।
2: जी जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी सब बढ़िया।
1: चलिए और लिसनर को
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: Okay, you.

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: ठक ठक
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री कमल श्री कमल श्री बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
8: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
7: तो देर मत कीजिए,
8: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
9: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
10: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
9: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
10: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
11: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello.
12: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
13: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो,
12: भागे भागे फिरते हैं।
14: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो,
16: स्वागत है आपका रेडियो 104.4 FM में।
15: नमस्ते
16: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
15: मैम मैं बोल रहा हूँ संजय कुमार
16: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं संजय जी?
15: भीखमपुर लड़ौली पंचायत
16: जी। क्या हालचाल है आपका?
15: मेरा हालचाल बढ़िया है, अपना सुनाइए।
16: हमारा भी बढ़िया है। क्या हो रहा था?
15: अभी तो गांव के कटाई चल रहा है, गांव में कोई काम कर रहे हैं
16: जी।
15: मम्मी पापा को खेत में नहीं जाने देते हैं, खुद पे मेहनत करते हैं। मैम मुझे गाना सुनना है आशा भोसले जी का, सबसे जो फेवरेट गाना है उनका।
16: अच्छा
15: हाँ जी, आप चुन के बजाइएगा। उनका ध्यान तो गया ना
16: जी।
15: हाँ जी,
16: तो गाना सुनाना भी है किसी को?
15: हाँ

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: सलाम मैम।
1: वालेकुम सलाम, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: अशफाक आलम बरारी के।
1: जी कैसे हैं अशफाक जी?
0: ठीक है, आप कैसे हैं?
1: हम भी बढ़िया है। क्या हो रही थी?
0: बैठे हैं मैम, उस दिन फोन किए थे लाइन पर रहिए करते हैं तो नहीं बेहद बहु। जी अपन पसंद का नाम एक गाना सुना दीजिए।
1: जी बिल्कुल सुना देंगे, बता दीजिए कौन सा गाना पसंद है आपको।
0: अपना मन से
1: नहीं, आप बताइए, आप इतना मेहनत करके कॉल किए हैं तो बताइए आपको कौन सा गाना सुनना है।
0: एक मिनट,
2: द पर्सन यू आर स्पीकिंग
0: शाहरुख खान के
1: फिल्म से कोई भी गाना?
0: हाँ।
1: और सुनवाना भी है?
0: हाँ, सब कोई का।
1: जी तो प्ले करे गाना आपकी?
0: जी मैम।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हेलो माय चॉइस में कॉल किए।
0: ठीक है।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
7: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुत डर लगेला। सुनले बानी की आंख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
6: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
8: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
9: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
8: तो देर मत कीजिए,
9: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
8: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
9: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
8: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
9: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी गोपालगंज,
8: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
10: Now pick it up,
11: hello.
10: Now pick your phone up,
11: hello.
10: Pick it up,
11: hello.
10: Now pick your phone up,
11: hello.
12: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो,
13: हेलो,
12: हेलो,
13: हेलो,
12: हेलो, हेलो, भागे भागे फिरते हैं।
14: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सब इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो,
16: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 FM में।
15: जी नमस्ते।
16: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
15: गणेश से।
16: जी कैसे हैं गणेश जी?
15: बढ़िया हूँ, आप बताइए।
16: हम भी बढ़िया हैं। तो क्या हो रहा था अभी?
15: क्या हो रहा है, फोन लगा रहे हैं उस समय से। आप बिजी हो रहे हैं तो फोन कहाँ से लगेगा।
16: अच्छा अच्छा, क्या करें,
15: मेरे भी टाइम नहीं मिल रहा है ना थोड़ा। आपका टाइम नहीं मिल रहा है मेरे को?
16: अभी मिल गया ना टाइम।
15: हाँ तो उस समय से घर आ रहे हैं 10-15 मिनट से, तब तो लगा है।
16: लग गया है ना?
15: लग गया है
16: जी।
15: और सब बताइए?
16: सब बढ़िया है, आप बताइए।
15: मेरा भी बढ़िया है आपके दुआ से।
16: तो गाना कौन सा सुनना है?
15: गाना हिंदी बजा दीजिए, शादी वाला कोई हिंदी गाना।
16: शादी वाला और सुनवाना भी है
15: आपको? सबसे पहले आपको पूरा दीजिए दिन झुमलो को सुनाना है, डीबीएम एम को सुनाना है, स्पेशल में डायरेक्टर सर को सुनाना है।
16: चलिए तो प्ले करेगा ना?
15: जी
16: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कॉल किया।

0: सीताराम
1: जी। सीताराम बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: बिमलेश कुमार शर्मा बिजनेस से बोल रहा हूँ।
1: क्या हाल चाल है बिमलेश जी?
0: ठीक है, अपना बताइए।
1: मेरा भी बढ़िया है जी। तो घर परिवार में सब कैसे हैं आपके?
0: जी सब कुछ अच्छा है।
1: बढ़िया है। गाना कौन सा सुनना आज आपको?
0: बुधवार को रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था क्या?
1: नहीं, बुधवार को नहीं हुआ था तभी तो कॉल नहीं लगा था
0: जी।
1: तो
0: गाना सुनना है।

0: ऐसा सुनना है
1: और सुनवाना भी है
0: जी। सुनवाना है कोरिया से मनोज शर्मा जी को और छटपुर से अनिल जी को और निर्मला जी को, करखा जी को और तटो भैया को और विपिन भैया को और सुन जी को, राजू जी को, शंभू जी को, रात्रि जी को, इन सब लोगों के साथ सुनना है और आपको भी सुनाना है।
1: चलिए तो प्ले करेगा ना,
0: जितने लोग रुमझुन सुनने वाले हैं सब लोग के साथ जी।
1: ओके चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद जी।
0: सीताराम सीताराम।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
3: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
0: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
0: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
2: और 9097160602।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: Now pick it up, pick it up.
7: Hello.
6: Now pick your phone up.
7: Hello.
6: Pick it up, pick it up.
7: Hello.
6: Now pick your phone up.
7: Hello.
8: Jab phone ding ding bajti hai to kehte hain hello.
9: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
8: Bhage bhage phirte hain.
10: Break ke baad aap sabhi ka ek bar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सब इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
12: क्या हाल है मैम? मैं अहमद अली, सरियाबाद नंबर 1 से।
11: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
12: हम तो अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बहुत दिन हो गया आपसे बात करके।
11: दिन तो काफी हो गए।
12: मैसेज के जरिए ही बात हो रही है, गाना बजा था मेरा बॉइस एक दिन। ऐसे कॉल लगाता हूँ, भोजपुरी एक्सप्रेस में परेशान हो गया था मैं, लगा के नहीं लगा।
11: काफी भीड़ चल रही है आजकल सारे शो में।
12: आजकल लड़ाई लगी हुई है ना, इसलिए ट्रेन सब भीड़ जा रही है।
11: लड़ाई भी लगी हुई है और ऐसे भी आजकल,
12: इसीलिए आपका एक्सपीरियंस भी हाउसफुल चल रहा है।
11: उसमें भी शिकायत आ रही है कि
12: मैम छोड़िए शिकायत, शिकायत वाले लोग शिकायत ही करते रहेंगे, ठीक है। ये नहीं सोचते हैं कि कितना लंबा लाइन रहता है उसका गाना। मान लीजिए थोड़ा एक मिनट का करके
11: श्रोता अगर जुड़ गया तो
12: वही ना, ये सब समझते नहीं है, अपना अपना सब देखने, ये नहीं दूसरे के बारे में कोई सोचता नहीं,
11: सबको अपना ही चाहिए बस, मेरा हो जाना चाहिए।
12: अरे मैम मेरा तो बजता है नहीं, बस मैं तो आपसे पूछता भी हूँ कि मैम बजेगा क्या, नहीं तो मेरा कोई वो नहीं, सुनते रहता हूँ तो है अपना गाना बजे या किसी का भी बजे, गाना सुनने को मिलता है।
11: ऐसा भी होता है कि अगर आदमी सोच के रखे कि आज ये गाना सुनना है और कोई और उसी गाने की फरमाइश कर दे,
12: फरमाइश तो हो जाता है ना,
11: हो गया।
12: सही बात है, कभी नाराजी नहीं होते हैं मैम, आज नहीं बजेगा,
11: सबकी अपनी अपनी समस्या है, सबको समझना चाहिए।
12: आज आज जुम्मा था इसलिए सबको जुम्मा मुबारक मेरे तरफ से। नाश्ता पानी हुआ है ना?
11: जी जी नाश्ता पानी हो गया, मेरा खाना हो गया है।
12: खाना हो गया था इसलिए गाड़ी भी तो बहुत देर तक रहेगी ना, 3:30 बजे तक
11: 4 बजे तक
12: 4 बजे तक बताइए मैम, कुछ खाना वाना लेके आती है कि लेके आए हम?
11: नहीं नहीं लंच लेके आते हैं।
12: नहीं तो मेरा दूर नहीं है आपके, ये अपना वो तो एक ही में है, वार्ड नंबर एक ही में है आपका,
11: जो मेन बड़ी वाली बाजार है उधर से ही रास्ता जाता है ना, वही उधर ही है ना एक नंबर?
12: नहीं नहीं ये अपना सरस्वती टैकेज है ना।
11: अच्छा इधर पीछे वाला?
12: हाँ ये आपके आपके स्टेशन के सामने जो चौरा है बगीचा।
11: अच्छा अच्छा ये सारे उधर बाजार के पीछे जो हनुमानगढ़ी पड़ता है?
12: नहीं नहीं वो सब वार्ड नंबर 4 है।
11: अच्छा वार्ड नंबर 4 है।
12: अपना ये सरस्वती टैकेज ये अपना बुलेट एजेंसी है ना, पेट्रोल पंप बुलेट एजेंसी वार्ड नंबर 1।
11: मतलब काफी दूर में सारे फैला हुआ है,
12: पूरा टाउन सारिया ही है।
11: अच्छा पूरा उधर पीछे वाला साइड पूरा सारिया बोलता है, वार्ड नंबर से बटा हुआ है
12: सब, वार्ड नंबर 12, 13, 17, 18 ऐसे। आपका तो हमारे देखने से वार्ड नंबर 1 नहीं भीतभैरवा पड़ता होगा।
11: अब पता नहीं भीतभैरवा तो यही है, भीतभैरवा जो भीतभैरवा में ही है समझ जाइए।
12: आपका जो रोड उस पार है तो भीतभैरवा में ही है, रोड इस तरफ आपके सामने देखिएगा ना, ये जो अपना सर्विसिंग और गैरेज वरेज है, ये डॉक्टर है बच्चे का आराम प्रवेश, ये सब वार्ड नंबर 1 में है।
11: अच्छा ये लोग वार्ड नंबर 1 में है।
12: जी जी मैम।
11: तो ज्यादा दूर नहीं है आप?
12: नहीं मैं तो बोलिए उठ के आ जाएंगे खाना पानी लेके, भूख लगा जिस दिन आप।
11: जी जी जिस दिन खाना लेके नहीं आएंगे उस दिन जरूर बताएंगे आपको, फिलहाल आज लेके आए हैं।
12: इंशाल्लाह इंशाल्लाह कभी भी कोई
11: दिन रात जब भी हो,
12: ये एक बार याद कर लीजिए बंदा हाजिर हो जाए।
11: तो बता दीजिए गाना कौन सा सुनना है आज आपको?
12: गाना हमको सुनवा दीजिए, जब से दिल दिया है तुमको चैन न पाया रे, रब्बा रब्बा रब्बा मेरे चैन न आया रे,
11: ये सुनवाना भी है?
12: जी जी मैम, सबसे पहले तो आपको और अपने वाइफ अस्करी को और कमरान भाई को, राघव जी को, दिलीप भाई को। राघव जी जुड़ रहे हैं कि ना? अभी तक गुस्से में है?
11: अभी तक गुस्से में ही है।
12: अरे मैम तो मना लीजिए, काटे इतना गुस्सा की है?
11: मेरे से ही गुस्सा है, अब मैं कैसे मनाऊं?
12: आपसे गुस्सा है तो आप ही न मनाएंगी, कौन मनाएगा?
11: वो समझ ही नहीं रहे।
12: अच्छा अच्छा रुकिए, कभी जाते हैं उधर जाएंगे, मेरे को काम है।
11: कितना बार देखते हैं कि वो सुन रहे हैं लेकिन जुड़ते नहीं है, सो में नहीं आए,
12: ड्रामा ड्रामा कर रहे हैं। अगर राघव जी आप सुन रहे हैं रेडियो तो मान जाइए प्लीज, ठीक है? ऐसे छोटी छोटी बात के लिए आप लोग नाराज मत होइए,
11: लाइव आइए
12: अगर मेरा आवाज उनके पास जाएगी तो राघव जी मान जाइए प्लीज, है? चलिए कोई बात नहीं है।
11: जी जी
12: आप गाना सुना दीजिए सबको, अक्तरी को, राघव जी को, कमरान रशीद को, दिलीप भाई को, जो भी रेडियो इंजन जहाँ से भी सुन रहे हैं सभी को।
11: चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना। जी जी
12: थैंक यू मैम,
11: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद, हेलो माय चॉइस में कॉल किया।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97070657575।
4: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403, 6200424403।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
9: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
9: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
8: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
11: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
11: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो, नमस्कार।
14: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
13: इसके लिए दिल से धन्यवाद है सोनी जी को। और सब सुनाइए, कैसे हैं?
14: सब बढ़िया है, आप बताइए आप कैसे हैं?
13: जी मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं रामविलास प्रसाद कुशवाहा बोल रहा हूँ, बलराम पूर्वी चंपारण से।
14: जी जी,
13: और सब सुनाइए, मौसम कैसा है उधर?
14: इधर का तो बढ़िया है, आप उधर का बताइए।
13: इधर तो गर्मी का प्रकोप अपना दिखाना शुरू कर दिया है। इधर
14: प्रकोप तो इधर भी है गर्मी का।
13: जी, हवा भी बंद है अभी।
14: जी, तो गाना कौन सा सुनना आज आपको?
13: जी, फिल्म का नाम है अवतार और गाने का बोल है प्यार में जिएंगे प्यार में मरेंगे। गाने का बोल है
14: जी, और गाना सुनवाना भी है
13: जी। सबसे पहले सोनी जी आपको सुनाना चाहता हूँ और दोस्त लोग संजय शाहजी, दीपक कुमार दास जी, रामचंद्र मुखिया जी, मोहम्मद सलाद जी, अंचल कुमार जी, कंसराज यादव जी, पारसनाथ कुशवाहा जी, नीना प्रसाद कुशवाहा जी, धनलाल प्रसाद कुशवाहा जी, राजा बाबू, विकास, अभय कुमार, सुदीश कुमार, अजय कुमार, राजू कुमार, सोनू कुमार और गोपालगंज जिले के संतरा कुशवाहा जी, काजल जी, गुड़िया जी, नेहा जी, मुस्कान जी, उदिता जी, सुनीता जी, सूर्य मोहन जी, नवीन सिंह जी, जितेंद्र जख्मी जी, दिलीप राम जी, राम कुमार पांडे जी और अभी सोनू जी की प्रस्तुति कार्यक्रम सभी श्रोताबंधु को सुनाना चाहता हूँ।
14: जी चलिए, तो प्ले करे गाना आपकी।
13: जी धन्यवाद
14: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो माय चॉइस में कॉल किया।

0: नमस्कार
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: धर्मेंद्र तिवारी बोल रहे हैं सहारनपुर से।
1: जी कैसे हैं धर्मेंद्र जी?
0: बढ़िया है।
1: तो क्या हो रही थी?
0: अभी ड्यूटी कर रहे थे।
1: अच्छा,
0: और अपना सब बताइए?
1: सब बढ़िया है।
0: अब तो गर्मी पूरा चल रहा है, बढ़िया। गर्मी बढ़ गया है।
1: गर्मी तो बढ़ी गया है। तो गाना
0: सुना दी?
1: जी जी बिल्कुल सुनाएंगे, बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
0: गाना जय विक्रांता का सुनवा दीजिए, कोठे ऊपर कोठरी।
1: अच्छा, और सुनवाना भी है?
0: अमन है, कैलाश है, संतोष है, रंजीत है, पांडे है।
1: चलिए तो प्ले करें गाना आपकी।
0: जी
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो माई चॉइस में कॉल के। नमस्कार।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करें 87894 18744।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
4: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
2: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
4: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
2: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
4: जहां हर निवाला कहे वाह।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
6: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
6: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
7: Now pick it up, pick it up.
8: Hello.
7: Now pick your phone up.
8: Hello.
7: Pick it up, pick it up.
8: Hello.
7: Now pick your phone up.
8: Hello.
9: Jab phone ding ding bajti hai to kehte hain hello.
10: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
9: Bhage bhage firte hain.
11: Break ke baad aap sabhi ka ek bar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: अस्सलाम वालेकुम।
11: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
12: यूसुफ सिपाही ढाला से बोल रहा हूँ
11: जी। कैसे हैं मोहम्मद यूसुफ जी?
12: बहुत बढ़िया है, अपना सुनाइए, आप कैसे हैं?
11: मैं भी बढ़िया हूँ। तो क्या हो रहा था?
12: मैं दवाई के दुकान पर है।
11: तो क्या कर रहे थे अभी?
12: अभी क्या कर रहे थे, अभी दवाई वगैरह दे रहे हैं।
11: अच्छा अच्छा, गाना कौन सा सुनना है? जाओ
12: वो सुनना है, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी
11: जी। और सुनवाना भी है?
12: सुनवाना है अपना मेडिकल के सभी स्टाफ और खास करके फौजी जो कन्हैया है, गुमनिया के रिटायर कर चुके हैं, उनको भी सुनवाना है। पिछले साल आपके पिछले बुधवार को आपके रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी?
11: जी जी नहीं हुई थी।
12: हाँ हाँ, तो सुनवा दीजिएगा।
11: जी बिल्कुल सुनवा देंगे।
12: हाँ।
11: बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो माय चॉइस में कॉल किया।

0: रात कभी कभी।
1: हेलो मैम, नमस्ते।
2: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी मैम, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैयर एमपी से।
2: जी कैसे हैं?
1: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे मैम इंतजार में फोन का रिकॉर्डिंग चालू हो जाए तो फिर करवा दें तो फिर कम पे लग जाए मैम, तो अभी तो फ्री बैठे थे। जी मैम
2: जी, तो गाना कौन सा सुनना है आज आपको?
1: जी आज हमको सुनवा दीजिएगा, गाने के बोल है जब जब प्यार में पहरा हुआ।
2: जी सुनाना भी है
1: और सुनवाएंगे कितने रेडियो जिन दोस्त लोग सुनते हैं सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं मैम।
2: ओके चलिए, तो प्ले करें गाना आप ही।
1: जी ओके मैम।
2: ओके बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9520374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
3: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
4: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादा पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
5: Now pick it up, pick it up. Hello? Now pick your phone up.
6: Hello?
5: Pick it up, pick it up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: जी नमस्ते, नमस्कार, प्यार भरा सलाम डियर सोनी सिस्टर, कैसी हैं?
2: चार एफएम में।
1: जी बहुत अच्छा है, आपका सुना है, मैं तो ऑलवेज मस्त बिंदास झकास रहता हूँ।
2: जी जी, इरफान बात कर रहे हैं क्या?
1: अपना बताइए सोनी। जी मैं रेडियो फैन मोहम्मद इरफान फ्रॉम दुबई से।
2: जी जी, क्या हाल चाल है?
1: चलिए हाल चाल ठीक है, पहचानने के लिए दिल से शुक्रिया, प्लस 151 रुपए का पुरस्कार मिलता है आपको।
2: अच्छा अच्छा, तो कब मिलता है पुरस्कार ये?
1: बस जब पेटीएम नंबर दीजिए अभी सेंड कर देंगे।
2: अच्छा अच्छा, नहीं वैसा नहीं चाहिए।
1: अच्छा चलिए कोई बात नहीं, उपहार आपको मिलने वाला है, घबराइए मत।
2: जी जी, इंतजार है मुझे भी।
1: और सब बताइए, ये मौसम कैसा हो रहा है अपने गोपालगंज का?
2: इधर इधर तो धूप का प्रकोप पूरा फैला हुआ है।
1: जी यहाँ भी मौसम ठीक है दुबई में, अभी बारिश शुरू हुआ था ना बीच में तो थोड़ा भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे भीषण गर्मी पड़ती है 8 महीने तक।
2: हाँ, वहाँ तो पड़ते ही है, वहाँ का तो बात ही नहीं।
1: हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता है, कभी कभी थोड़ा सा टर्मिनेशन के लिए मशीनरी काम के लिए थोड़ा जाना पड़ता है आउट साइड में, नहीं तो ऑफिस ही में काम है हम लोग का।
2: तो फिर तो ऑफिस में तो पूरा एसी लगा हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
1: हाँ वो तो मेरा ही काम है सब, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग का पूरा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में ही हूँ, हेड हूँ यहाँ पर।
2: चलिए
1: सब ठीक है ना?
2: जी जी सब बढ़िया है।
1: तो एक लाइन है, जरा गौर फरमाइएगा। तेरी आरजू में हमने बहारों को देखा, तेरी आरजू को हमने बहारों को देखा, तेरे ख्यालों को हमने सितारों में देखा, पसंद था आपका साथ रेडियो रिमझिम पे, वरना इन आंखों ने तो हजारों को देखा।
2: तो गाना कौन सा सुनना है ये भी बता दीजिए।
1: गाना सुनवा दीजिए एक हिंदुस्तानी मूवी से, मोहब्बत को हम छोड़ दें, मोहब्बत हमें छोड़ती नहीं, पता ना क्या हो गया है।
2: जी
1: जी, और सुनवाना चाहता है सगुफ्ता फिरदौस को, रुखसार खातून, सबाना खातून, और आपको और जितने भी प्यारे प्यारे लिसनर है, कमरान भाई, समीर भाई, सबको सुनवा दीजिएगा।
2: जी बिल्कुल, चलिए ठीक है।
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
2: मुझे भी लगा, बहुत बहुत धन्यवाद हेलो माय चॉइस में कॉल किए।
1: ओके मस्ट वेलकम एट दुबई।
2: जी जी, अभी इतना जल्दी तो वेलकम नहीं करिए दुबई में।
1: अच्छा चलिए ठीक है
2: ठीक है,
1: ओके थैंक यू।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
9: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
10: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
9: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
4: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
9: कॉल करें 85070-32042 पे।
11: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
12: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
11: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
13: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
14: Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो,
2: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो केसरी 90.2 एफएम में।
1: नमस्कार मैडम।
2: नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से है।
1: मैं रमेश चौहान बोल रहा हूँ, जाजपुर बरहा से।
2: जी,
1: बुधवार को क्या रिकॉर्डिंग हुआ था? बुधवार रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था?
2: नहीं, बुधवार को रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी।
1: और तभी तो, क्योंकि 11 घंटा में लगाया था कॉल लगाने, तो एक मैं वो गाना सुनना था।
2: जी बिल्कुल, सुनाएंगे, बता दीजिए गाने का नाम।
1: उसके तो फिल्म का नाम याद नहीं है, मगर गाने का नाम याद है। और आदमी को बीबी को गुलाम होना चाहिए।
2: जी, और सुनवाना भी है।
1: और सुनवाना क्या है, सब अपने घर के लोग हैं, मेरी वाइफ है, मेरी बच्ची है, मुस्कान कुमारी, काजल कुमारी और एक हरण कुमार है।
2: जी, तो प्ले करेगा ना आपकी?
1: जी,
2: प्ले करेगा ना आपकी?
1: प्ले करें।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: आज हमारी शादी की सालगिरह थी।
1: थी?
0: तुम्हें घर जल्दी आना था।
1: आना था?
0: हम दोनों को बाहर जाना था।
1: जाना था?
0: किसी बड़े होटल में खाना खाना था।
1: खाना खाना था?
0: अब कौन बनाएगा खाना?
1: खाना मेरी जाना, खाना पकाएगा तुम्हारा दीवाना। नो टेंशन, एक्शन, अटेंशन, राइट टर्न,

0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: सीता नाइट ग्राफ से
1: जी, कैसे हैं सीता जी?
0: अच्छी हूँ, आपने बताइए आप कैसे?
1: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या हो रहा था?
0: कुछ नहीं, कॉल लगा रही थी। एक बार कॉल की थी तो आपकी भी नहीं की।
1: आपका कॉल नहीं आया था, मिस कॉल आया था, इसीलिए
0: अभी कॉल की थी तो आप नहीं उठाए।
1: मिस कॉल आया था किसी का, पता नहीं आपका था कि किसका था, मिस कॉल था इसीलिए नहीं रिसीव किए।
0: खाना पीना हो गया?
1: हाँ जी हो गया है। आपका हो गया है?
0: हाँ हो गया है।
1: तो गाना कौन सा सुनना है आज आपको?
0: प्रमोद प्रेमी का कोई भी भक्ति सॉन्ग सुना दीजिएगा।
1: प्रमोद प्रेमी का कोई भी भक्ति गाना और सुनवाना भी है
0: आपको? और रेडियो रेंज सुना है सभी श्रोताओं को।
1: ओके चलिए, तो प्ले करें गाना।
0: यस मैम।
1: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो माय चॉइस में कॉल की।
0: थैंक यू मैम।

0: तो दोस्तों, आप लोग अभी कार्यक्रम हेलो माय चॉइस को मेरे साथ यानी आरजे सोनी के साथ सुन रहे थे। अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो मुझे दीजिए अब जाने की इजाज़त और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो रिंजन 90.4 FM। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, नमस्कार।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलोगा तो रोडवा पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन।

0: होखे वाला रहनु ओकर का भइल।
1: अरे ए बबू परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत आनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा। आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
5: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है मिश्रा टायर्स अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट व्हील बैलेंसिंग 3D अलाइनमेंट डिजिटल बैलेंसिंग सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
5: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग शिव मंदिर पोखरा के सामने NH 27 बंजारी गोपालगंज।
5: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।

0: अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में,
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।

0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97,714,86,164।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99393965930।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू सू SMS फरमाइश के साथ। समय 9:25 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज करना है। टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश करना है और ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करें तो आप पुराने गाने का फरमाइश करें ताकि आपकी फरमाइश हम सुनाएं। और आप लोग कई श्रोतागण हमारे कई निवेदन करने के बाद भी नए गाने के फरमाइश करते हैं लो। तो अब से हमने सोचा कि जो भी गाने के फरमाइश नए आए, यदि हम उस गाने को प्ले कर भी दें तो उसको बीच में रोका जाएगा और पुराने गाने के फरमाइश को प्ले किया जाएगा। फिलहाल कुछ से मैसेज हमारे पास रिसीव नहीं हुए तो अपने तरफ से गाने को प्ले करते हैं एक प्यारा सा और सुनते हैं, इंजॉय करते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो आप भी टेक्स्ट मैसेज करें और बिल्कुल हम आपकी फरमाइश प्ले करेंगे। फिलहाल पहला गाना इंजॉय करते हैं हम सभी।

94.4 FM सुनने आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का और काफ़ी प्यारा सॉन्ग सुनने थे हम सभी ओल्ड इज गोल्ड। और यहाँ पे आगे कुछ मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करेंगे और फिर गाने मैसेज में फरमाए गए गाने को प्ले करेंगे। और यहाँ पे पहला मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि क्या हाल है भैया जी, मुझे सॉन्ग सुनना है, मुझको दफन कर वो जब वापस जाएंगे। और इस मैसेज को पहुंचाने वाले दीपक एंड जेलर जी हैं और कहते हैं कि आज मेरा बर्थडे है, प्लीज़ माय सॉन्ग। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और ऐसे गाने की फरमाइश नहीं करते हैं। और जन्मदिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे, लेकिन ऐसे गाने की फरमाइश आज नहीं करना चाहिए था। खैर आपकी फरमाइश है तो हम पूरा करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो, हमें भी सॉन्ग सुनना है, सुना सकते हैं क्या? यदि फरमाइश आप सभी का पहुंचता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि नहीं सुनाएंगे। और हाँ, ध्यान रखना है कि आप यदि एक सप्ताह में गाने सुन चुके हैं तो दूसरों को भी मौका दें ताकि दूसरा कोई भी सुन सके अपनी फरमाइश जो एक सप्ताह में नहीं सुने हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो, हमें भी सॉन्ग सुनना है। ओह चलिए, आपकी मैसेज हमने तो रीड कर दिया। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है हेलो, हाय सर जी, नमस्कार सर जी, मैं प्रीति रैदास विलेज लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार से, और आज मेरी भी एक वीक कम्प्लीट हो चुकी है तो आज मुझे सॉन्ग सुनना है। सॉन्ग का नेम है नाना करते प्यार है मैं कर गई, फ्रॉम द मूवी धड़कन से। और मैं पहले मैसेज इसलिए की हूँ ताकि बाद में मैसेज करने को टाइम नहीं मिलेगा, सो प्लीज़ सर मेरी सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा, और क्योंकि मैं जा रही हूँ। चलिए, और हम लोगों को भी चाहिए, मछली बनाने जा रही हैं और कह रही हैं कि भाई लेट से थोड़े मछली लाए हैं, बिल्कुल बनाइए और हम लोग को भी पार्सल करिएगा। आगे मैसेज और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि रात को सब अपनी अपनी मोहब्बत से बात करके सोते हैं, और एक हम हैं जो अपनी मोहब्बत को याद करते करते सो जाते हैं। गुलाम हसन वेस्ट मुंबई से, और कहते हैं कि मुझे गाना सुनना है, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने की फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि प्लीज़ सुना दीजिएगा। और इस मैसेज को पहुंचाने वाले पायल कुमारी बढ़िया से गाना का फरमाइश करती हैं पवन सिंह का, तो कौन से गाने सुनना है गाने का नाम बता देती तो बेहतर रहता ताकि आपके पसंद के गाने हम सुना सकें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है हीरा पाकड़ से, अखिलेश कुमार टुनटुन सॉन्ग, तो टुनटुन जी का सॉन्ग हम नहीं सुना सकते हैं, आप पुराने गाने का फरमाइश करें, बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। फिलहाल हम दीपक एंड जेलर जी के गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं इनकी पसंद के गाने।

रेडियो एमजीएम 94 एफएम सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। और यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं इस कार्यक्रम से तो बिल्कुल आप भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है, मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना कि जब भी गाने के फरमाइश करेंगे आप सभी तो पुराने गाने या 90s के गाने के फरमाइश करेंगे तो बेहतर रहेगा। और अगर कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हैं और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। आगे गाने की फरमाइश करती हैं प्रीति रैदास विलेज लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार से, और गाने का बोल देती हैं नाना करते प्यार है मैं कर गई। और आगे मैसेज कुछ पहुँचे हुए तो मैसेज शामिल कर लेते हैं फिर उनके गाने प्ले करते हैं। आगे मैसेज, हाय हेलो सर, मैं निर्मला कुमारी जादवपुर से और मुझे सॉन्ग सुनना है, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज, हाय सर, समीर आलम जंगलिया से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया कि थैंक्स थैंक्स थैंक्स थैंक्स थैंक्स लव यू भैया। चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो एमसीएम सुनने के लिए और पुनः ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं आपको जन्मदिन के उपलक्ष्य में और आप हमेशा मस्त रहें। अब आगे बढ़ते हैं, आगे गाने के साथ इंजॉय किया जाए नाना करते प्यार है मैं कर गई के साथ।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या

0: की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 7070-7563600 या 7070-7542400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
8: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
1: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
0: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल,
1: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
0: जहां हर निवाला कहे वाह।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम पे। सो चल रहा है एसएमएस फरमाइश का और यहाँ पे आगे कई मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए हैं और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे गुलाम हुसैन की और उनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है और गाने का बोल दिया गया है हमको आवाज़ दे तू कहाँ है सनम। और इस गाने को डेडिकेट करते हैं, सबसे पहला नाम देते हैं मशरूम कौसर जुनेद कमरान भाई अरमान भाई नौसाद भाई जगदीप आयुष प्रिंस लक्की समीर शाकिब रुबीना ब्यूटी हिना गुड़िया साजदा गुलशन शबीना यास्मीन सलेहा आफरीन अरिशा और सोनविया आपको भी। चलिए हम भी सुनेंगे और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, कुछ लिखा गया है कि हेलो सर नमस्कार, मैं शिवांश चौधरी लालगंज मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से और मुझे गाना सुनना है तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हर रात एक नाम याद आता है कभी सुबह तो कभी शाम को याद आता है, सोचते हैं कर लेंगे दूसरी मोहब्बत लेकिन फिर पहली मोहब्बत का अंजाम याद आता है। हेलो हाय सनम भाई जी, कार्यक्रम से हम भी जुड़ गए हैं और मैं रोहित देहरादून से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय हेलो सर जी, प्रणाम सलाम, मेरे तरफ से प्यारे प्यारे लिस्टनर को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और मैं आपके संगीत शो में एंट्री कर चुकी हूँ निशा भारती ओझोलिया से और बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और आप बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि फूल गुलाब को हो या चमेली, फूल गुलाब का हो या चमेली, मन में बसा लो रेडियो रिमझिम, हंसते रहो अकेली। नमस्ते नमस्ते, खुद दर्द कितना भी आए हंसते रहिए, लाख परेशानियां आए हमेशा मुस्कुराते रहिए। गाना की फरमाइश करते हैं, फूल तुमने भेजा था खत में फूल नहीं, सभी श्रोताओं के साथ सुनना चाहते हैं और इस मैसेज को पहुंचाने वाले सावन शर्मा जी और आप बने रहे हमारे साथ, कोशिश से आपकी फरमाइश हम पूरा करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि कैसे हैं सर, सर आफरो मामा मौजम से, तो बिल्कुल बढ़िया आप सभी के बीच उपस्थित हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सोनू बाबू जगह हो तो हमें भी एक सॉन्ग सुना देंगे फिल्म, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, जगह बनता है तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। धर्मवीर मूवी से रफ़ी जी की आवाज़ में गाने के फरमाइश करते हैं महबूबा, बने रहे हमारे साथ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आगे गुलाम हुसैन के गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं इनके गाने के साथ, इंजॉय करते हैं हम सभी।

रेडियो MGM 94 FM सुन रहे हैं आप सभी और प्यारे गाने सुन रहे थे कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज़ में। और इस गाने के फरमाइश करने वाले थे गुलाम हुसैन वेस्ट मुंबई से। और आगे गाने के फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है भिड़िया से पायल कुमारी की, और उन्होंने नए गाने के फरमाइश किए जिसके कारण की फरमाइश को हम रुक रहे हैं और अगली फरमाइश हम पूरी करते हैं। निर्मला कुमारी जादवपुर से गाने के फरमाइश करती है अखियों के झड़ोखे से, तो इनके गाने हम सभी सुनेंगे। और कुछ मैसेज पहुंचे हुए देखा जाए, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय, लेकिन इनके तरफ से लिखा गया है कि माई बेस्ट सॉन्ग मुझको दफना कर वो वापस जाएंगे, फंटास्टिक लाजवाब दर्द भरा सॉन्ग और बिल्कुल आपको अपने जन्मदिन पर आपके मन मर्जी का सॉन्ग सुनना चाहिए, अपने मन का सारा दर्द निकाल कर फेंक देना चाहिए, मन हल्का होगा। और मेरे तरफ से भी हैप्पी बर्थडे टू यू। और मैसेज करती हैं निशा उसका गांव प्रखंड से, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और मैसेज में लिखा गया है कि पवन सिंह का, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। पवन सिंह का ही एक गाने हमारे श्रोतागण फरमाए हुए हैं और उन्हीं के साथ आपको भी डेडिकेट करेंगे हम। फिलहाल गाने को प्ले करते हैं निर्मला जी की और सुनते हैं इनके पसंद के गाने, क्योंकि समय भी देखा जाए तो बहुत कम है।

कभी प्यारे गाने सुनने हम सभी रेडियो एम छम 94 एफएम पे सर चल रहा है इसमें फरमाइश का, और समय जो है काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे आगे गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है और आगे गाने के फरमाइश पवन सिंह की आवाज़ में ही पहुँचा हुआ है। और मैसेज करती हैं निशा घर कोन्हवा से और गाने के फरमाइश करती हैं उमरिया के रोग हर नजरिए से होला। और एक और हमारे श्रोता पायल, इनके तरफ से भी पवन सिंह की आवाज़ में कोई भी गाने सुनने हैं तो चलिए आपको भी डेडिकेट करते हैं। आप दोनों इंजॉय करें इस गाने के साथ रेडियो रिमझिम 94.4 एफएम पे।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
5: सुनिए सुनिए सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779786164।
7: रेडियो MCM 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है, इसमें फरमाइश का पवन सिंह की आवाज़ में गाने अभी हम सभी सुन रहे थे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ, लिखा गया कि थैंक यू सर जी, आपको धन्यवाद है रेडियो रेमसम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है मैसेज में, सर हमारा तो रोग है रेडियो रेमसम सुनो दिल से, बिना सुने नींद ही नहीं आती। शिवांश चौधरी लालगंज मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से, और गाने की भी फरमाइश इनके तरफ से है। और ये गाने का बोल देते हैं, तेरा गम अगर ना होता तो मैं शराब ना पीता। चलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे और आपके साथ भी इंजॉय किया जाए। और देखा जाए तो यहाँ पे समय जो है 10:14 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में, तो कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे क्योंकि कार्यक्रम की समाप्ति का समय हो गया है। और अंतिम गाने आप ही का रहेगा। फिलहाल आज जो भी मैसेज हमारे श्रोतागढ़ किए हुए हैं जिनके फरमाइश हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, सभी से क्षमा चाहेंगे। और फिर हम अगले सप्ताह इसी कार्यक्रम में आप सभी के बीच उपस्थित होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, सुनते रहें रेडियो MCM 94.4 FM, जो हमेशा से कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे.जी. शरण एम.डी. फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे.जी. शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
1: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में?
2: क्यों, क्या हुआ है?
1: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
2: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
1: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासी खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
6: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
6: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
7: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
8: रेडियो रिमझिम,
7: सुनो दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388 9470 या 9198 8669 73।

0: नाउ 9656 या 9656 57902।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
2: All right.

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97097506575।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198869793।
4: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
5: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
6: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
5: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटते क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
9: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
10: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9186664498 पे।
11: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
2: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
2: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92-99-22-567 या 97-714-86-164।
5: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
3: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
3: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
6: उत्तर बिहार का गौरव,
7: सारण प्रमंडल की शान,
6: गोपालगंज की धड़कन
7: और अपने भाषा की पहचान,
6: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
7: सुनो दिल से।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
2: प्रसाद क्लिनिक,
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास गोपालगंज।
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, आप तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
4: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।

0: सीखी। इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देख रेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क 99 393 65 930।

0: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
1: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
0: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
1: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
0: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
1: जहां हर निवाला कहे वाह।
2: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9956-97-644।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
9: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
7: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
9: सुनो दिल से।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
8: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
7: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
8: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
7: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।
2: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
9: जी हाँ कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
7: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
8: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
7: तो देर मत कीजिए,
8: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
8: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
9: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
10: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042-34-03, 62042-34-03।
11: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
12: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
13: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
14: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
13: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
14: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
13: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
14: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
13: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
14: कॉल करें 70705763 या 70705042, या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
13: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
14: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
13: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
14: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
13: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
15: ऑलराइट, दिस इज मी।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत तनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9797146164।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
7: खाना के खाना के खान,
8: धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन ध

0: Click on the bell icon to get regular updates from Venus.
1: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
7: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
6: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
7: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
6: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
6: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
7: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
8: श्रोताओ, आप सुन रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अभी आप कुछ ही देर में सुनेंगे आकाशवाणी के नई दिल्ली केंद्र से दोपहर 4:15।
9: India paper leak cases. Assam Assembly introduces Uniform Civil Code Bill. IMD issues yellow alert in Delhi for next 3 days. Heat wave conditions to also persist over Haryana, Bihar, Madhya Pradesh, Odisha and Telangana. And Norway Chess 2026 tournament to begin in Oslo this evening. With that, we end the midday news.
10: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र, एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
11: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
10: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
12: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
10: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
13: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
10: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू

0: था। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रूपये और डीजल 95.20 रूपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमरीका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। गीनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रहीं और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रहीं। आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।

0: दुश्मन है खुद गर्दी का,
1: खुद गर्दी का।
0: मेरा चना है अपनी मर्जी का,
1: मर्जी का, मर्जी का।
0: ये दुश्मन है।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399।

0: नीचे मत करें।
1: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपने दोस्त की शादी में।
2: क्यों, क्या हुआ है?
1: तुम्हीं ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
2: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
1: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
5: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
3: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
3: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
6: उत्तर बिहार का गौरव,
7: सारण प्रमंडल की शान,
6: गोपालगंज की धड़कन
7: और अपने भाषा की पहचान,
6: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
7: सुनो दिल से।

0: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
1: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
0: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
1: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
0: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
1: जहां हर निवाला कहे वाह।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे।
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
1: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी। अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करे 87894 18744।
5: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
6: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
5: सुनो दिल से।
7: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
0: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग,
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
8: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
10: दिल कहे रे ग।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714 86164।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512111001।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
3: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलता नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
4: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बानी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत तानी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
6: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ, विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97070675।
7: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
8: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
7: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
7: संपर्क 99393965930।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: हेलो।
1: हाँ हेलो,
0: कहाँ बाला?
1: घरे बनी।
0: अरे जल्दी आओ ना।
1: अरे इतना जल्दी कब आ?
0: हमरा इसे कुछ नहीं के सुने के, जल्दी आओ ना।
1: अरे तत इतना घबराई का है बड़ी?
0: हमरा जिंदगी और मौत के सवाल बा, प्लीज जल्दी आ जाना।

0: रखे परिवार चल।
1: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
2: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034 48652 पे।
3: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: अब जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
4: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
5: भरोसे वाले से लेंगे,
4: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
5: और कीमत भी।
4: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
6: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
7: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
3: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
8: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
3: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
9: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
3: कॉल करें 8570-32042 पे। सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
7: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: सुनो दिल से।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाक चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा? आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए। आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
7: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
7: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
8: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
9: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
10: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
11: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
12: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
10: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
9: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
10: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
13: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4। सुनो दिल से,
14: देखिए भैया, जब भरत जी अपने भैया श्री रामचंद्र जी के वनवास के खबर सुनले बाड़े, तो बिलख बिलख के कैसे कहतारे, एक गीत के भाव में सुनी।

0: घुटना एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए,
3: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779146164।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
7: सिर्फ 1-2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
8: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
9: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
10: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
11: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
12: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
9: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
7: कॉल करे 87-894-18-744।
13: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899227567 या 97714861464।
2: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
0: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: उत्तर बिहार का गौरव,
4: सारण प्रमंडल की शान,
3: गोपालगंज की धड़कन
4: और अपने भाषा की पहचान,
3: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
4: सुनो दिल से।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

फिर से आई एगो निर्गुण रुआ सबके बीच में सुनाओ तनी कि ओरिजिनल रूप में जे आई बा ओकरा जाए के बा एगो लड़की का कहतिया सुनी सब से।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
2: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
4: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजे सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस के कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश को।
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: नमस्ते मैडम जी।
1: नमस्ते, क्या हाल चाल है?
2: ठीक है, अपन बताइए।
1: मेरा भी बढ़िया है। नेहा बात कर रही हैं
2: जी। पहचान गए।
1: और सब बताइए, खाना पीना हुआ कि नहीं? अभी
2: खाना नहीं हुआ, नाश्ता हुआ।
1: अभी नाश्ता हुआ है। काम धंधा निपटा लिया? जी, मेरा हो गया है।
2: हाँ, काम निपटा लिया है।
1: चलिए बढ़िया है। तो गाना कौन सा सुनना है अभी आपको?
2: गाना सुनना है हमसे तुमसे प्यार हो गया, यही फिल्म का गाना।
1: हमको तुमसे प्यार हो गया इस मूवी से, कोई भी गाना की गाना का नाम बताइएगा।
2: गाना माहिर है
1: जी,
2: यही गाना।
1: और गाना सुनवाना भी है?
2: गाना आपको जितना रेडियो रिमझिम आरजे है सब दोस्त सुनते हैं सबको।
1: ओके, चलिए तो प्ले करें
2: जी। नमस्ते।
1: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सो में कॉल की।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। वालेकुम सलाम, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: नाम हुसैन भाई से बोल रहे हैं, मुझे गाना सुनना है।
0: जी जी, क्या हाल चाल है?
1: ठीक है, अपना सुनाइए।
0: हमारा भी बढ़िया है, क्या हो रहा था?
1: अभी काम कर रहे हैं हम। मुझे सुनना है, क्या तुम्हें पता है गुलशन ये वाला गाना सुनना है।
0: जी, और गाना सुनवाना भी है
1: जी। सबसे पहले आपको मासूम कौशल जी, अरमान कमरान भाई, जगदीप भाई, आयुष भाई, प्रिंस भाई, रुबीना जी, दीप्ति जी, हिना जी, गुड़िया, अमनम जी, अमिनका जी, सभी को सुनवाना चाहता
0: है। जी, तो प्ले करे गाना आपके?
1: जी
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं चॉइस में कॉल किया।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जेजी शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जेजी शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
7: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
8: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545-67666।
9: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
10: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
9: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
10: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
9: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
10: जहां हर निवाला कहे वाह।
11: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
12: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
13: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
0: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
3: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में।
4: क्यों, क्या हुआ है?
3: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
4: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
3: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
5: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
14: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
15: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
9: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
16: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
16: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष विशेषज्ञों द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
16: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
9: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
16: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने।
17: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
18: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
19: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
20: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
18: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
17: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
18: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
21: कॉल करे 87894-18744।
22: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
18: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
21: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
18: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
21: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
18: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
21: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
23: Now pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: Hello? जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में। नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: जी मैं सुधीर कौर बोल रहा हूँ, करीमगंज जिला देवघर झारखंड से।
1: जी क्या हाल चाल है सुधीर जी?
2: हाल चाल तबीयत कुछ गड़बड़ है, मैं इसलिए सोचे 11 बजे के बाद लगाएंगे तो बहुत बिजी 12 बजे के बाद लगी।
1: जी जी तभी तो कॉल लग गया ना।
2: जी कॉल तो लग गई। जी
1: जी जी तो क्या हो गया आपको अभी?
2: जी आज सुना दीजिए, मैं प्यार के गाना आस्था भोसले और किशोर कुमार की आवाज में के बोल हैं, सारा दिन सताते हो रातों को जगह पे हो तुम याद बहुत आते हैं।
1: जी और गाना डेडिकेट भी करिएगा।
2: जी सबसे पहले मैं आपको आपके रेडियो रिमजिंग को पूरी टीम को और जितने भी रेडियो रिमजिंग के लिसनर हैं सबको सुनाना चाहता हूँ।
1: ओके चलिए तो प्ले कर दिए गाना आपके।
2: थैंक यू मैम,
1: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिल्म चॉइस में कॉल किया।

0: जीएट की दोपहरी में पाँव जले
1: सुनवाना भी है
0: जी आपको जितनी श्रोता अपने दोस्तों को
1: जी तो प्ले करेगा ना ये आज या कल में कभी भी आ जाएगा
0: ठीक है
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप।

0: घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ एक से दो सप्ताह में

0: रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
0: कहाँ पर?
2: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, चवही खास, गोपालगंज,
0: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
2: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
0: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835565965।
3: Now pick it up,
4: hello.
3: Now pick your phone up,
4: hello.
3: Pick it up,
4: hello.
3: Now pick your phone up,
4: hello.
5: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो।
6: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: सलामुअलैकुम।
6: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
7: जी मैं मनान बोल रहा हूँ, कपूरपुरा से।
6: जी कैसे हैं मनान जी?
7: ठीक है।
6: तो क्या हो रहा था अभी?
7: अभी आज हो रहा है, घर का पेंटिंग हो रहा है।
6: अच्छा, फंक्शन है क्या घर में? कैसे?
7: नहीं फंक्शन नहीं है, पर कोई आने वाला है।
6: अच्छा,
7: अपना रिलेटिव मतलब हमारे चाचा का लड़के लोग आसाम से आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी अपना घर।
6: अच्छा अच्छा,
7: आसाम में भी और यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर एक पुराना मेरा घर है।
6: अच्छा।
7: पूरा मतलब हवेली के जैसा बड़ा सा घर है, और उसमें से हट के हम लोग अलग बनाए हैं। ये अलग घर जो हट के बनाए हैं उसमें हम पेंटिंग करा रहे हैं।
6: अच्छा अच्छा।
7: तो आसाम से आने वाले हैं लोग, तो कुछ तो लड़के बच्चे जो है पेंसिल से जो दीवारों पे जो है ना
6: पढ़ लिए हैं।
7: हाँ, वो पढ़ लिए हैं। तो उसे मतलब शर्मिंदगी महसूस हो रहा था, तो कहा कि थोड़ा थोड़ा हो ही जाए ये कोट पेंट।
6: बिल्कुल।
7: तो वही पेंटिंग करा रहे और उसी में लगे हैं जब तक आपका याद आ गया। आपका याद आ गया तो कभी से उंगली करीब 2 मिनट किए हैं, है ना, नींदे जा रहा था तो जब तक से आपका लग ही गया।
6: चलिए बढ़िया है।
7: तो 3 बीट के बाद आज मतलब 3 बार हम कॉल नहीं कर चुके।
6: अच्छा।
7: आज ये चाहिए है क्योंकि 3 बार मैं इधर उधर कोई काम से है ना लग गए थे, तो आज याद आया तो हमने कहा चलो आज फरमाइश करते हैं। तो कोई गाना सुनाइए मैडम आपने ही मन से।
6: हिंदी में?
7: हाँ, तो उर्दू में।
6: उर्दू में भी गाना होता है ना?
7: होता ही है। सुनाई तो सुनाइए ना।
6: अब मतलब सुने नहीं है, मैं तो ऐसे सुनी, अब मुझे नहीं पता है कि उर्दू में गाना है।
7: उर्दू में होता है वो पाकिस्तान वाले लोग बजाते
6: अपने मतलब से। चलिए ठीक है, तो प्ले कर रहे हैं।
7: ओके
6: ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल किया।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
3: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
3: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
3: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
4: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403, 6200042403।
8: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
9: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
8: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
7: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
10: Now pick your phone up.
11: Hello?
10: Pick it up, pick it up.
11: Hello?
10: Now pick your phone up.
11: Hello?
12: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello.
13: Hello, hello, hello, hello, hello.
12: Bhage bhage phirte hain.
14: Break ke baad aap sabhi ka ek bar phir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सब इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो
16: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
15: आज तो हमें परेशान कर दिए महाराज, फोन धराते धराते पूरे परेशान हो गए।
16: सर क्या अब आपकी परेशानी खत्म हो गई होगी?
15: हाँ, आई सो कॉल धरा है। और सब बताइए,
16: सब बढ़िया है? तो उंगली दुख गया होगा आपका?
15: हाँ, उंगली नहीं दुखेगा, कैसे हम लोग उसी से काम है सबसे ज्यादा, उंगली से।
16: तो क्या हो रहा था अभी, ड्यूटी में है कि रूम पे है?
15: छुट्टी, आज भी छुट्टी मारे हैं।
16: आज भी छुट्टी मारे हैं?
15: हाँ, ऐसे गांव से मम्मी आई है ना। हाँ। तो अभी थोड़ा छुट्टी किए हैं।
16: चलिए बढ़िया है, आराम करिए। तो गाना कौन सा सुनना है?
15: बबीता सागर के कोई सा गाना सुनाइएगा।
16: बबीता सागर का?
15: हाँ।
16: अब जीजा साले आप लोग बबीता सागर के एकदम फैन है लगता है।
15: और शुरू में किए तो वो बता रहा था कि रिचार्ज ही नहीं है।
16: रिचार्ज नहीं था, थोड़ा लेट चेक किए तो तुरंत रिचार्ज हो गया। तो गाना डेडिकेट भी करिएगा।
15: हाँ, उन्हीं को, जीजू का सुनाना है, वो अभी बबीता सागर का, हमारा भी बबीता सागर का है।
16: चलिए तो प्ले कर रहे हैं।
15: और बारे जीजू का सुनाना है।
16: अच्छा अच्छा,
15: हाँ
16: चलिए ठीक है, तो गाना प्ले कर रहे हैं आपके।
15: ठीक है
16: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हेलो माय चॉइस में कॉल किया।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टीम जिम में।
0: सलाम में।
1: वालेकुम सलाम। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: अशफाक कलम बरारी हर के।
1: जी, क्या हाल चाल है अशफाक जी?
0: ठीक है मैम, आप कैसे हैं?
1: बिल्कुल बढ़िया।
0: मैम अगला सोमवार को हम बताए थे खेसारी लाल, तो हम नहीं सुन पाए।
1: तो वो तो सोमवार को ही चल गया है और मंगलवार को।
0: अच्छा मैम, जी जी
1: जी। तो आज कॉल किया, आज की आने की फरमाइश बता दीजिए।
0: मैम आपका मन से
1: नहीं, आप इतना मेहनत करके कॉल किए तो आप अपना मन बताइए। बाकी अभी जो गाना सुन रहे हैं आप मेरे ही मन से सुन रहे हैं।
0: अच्छा, मन मारदा के गोली खेलम देवा साथे होली।
1: तभी होली का गाना सुनना है?
0: जी जी।
1: चलिए तो प्ले कर दे गाना।
0: जी मैम। मैम कब तक ऑनलाइन रहती हैं आप?
1: ऑनलाइन अभी तो रिकॉर्डिंग चल रही है, लाइव में 12 बजे से आती हूँ 4 बजे तक।
0: अच्छा, लाइव में मैंने लाइव नहीं समझे,
1: जो अभी बोले ना ऑनलाइन।
0: जी जी
1: जी। तो ऑनलाइन में 12 बजे से आऊंगी।
0: अच्छा, 12 बजे से 4 बजे फोन लगाएंगे लग जाएगा?
1: हाँ हाँ, 12 से 4 के बीच में आप लगाइएगा तो आपका गाना तुरंत आप सुन लीजिएगा।
0: अच्छा, उस मेरा सुन लेंगे तुरंत।
1: जी जी। और अभी ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये शाम को 5 से 7 के बीच में सुनिएगा।
0: अच्छा, ये गाना अभी बताएं तो?
1: हाँ, अभी अभी ये जो भेजे हैं ये 5 से 7 के बीच में चलेगा।
0: 5 से 7 बजे ले?
1: हाँ
0: ठीक है मैम।
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल किया।

0: बा
1: बोली
0: भर होले देवर साथे रह जाले कि ने 11 महीना मरत साथे रह मरत के मत छोड़ा
1: ओके
2: अरे ए चाची जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु ओकर का भइल
3: अरे ए बबुओ परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुत डर लागेला सुनले बानी की आंख में सुई लागेला काफी दर्द होत होइनु
2: अरे बा चाची तू कावना दुनिया में बारू अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा आंख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द माइग्रेन चक्कर आना मिर्गी की दौरे झटके सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर फालिज साइटिका न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पादरी बाजार गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: सुनिए जी पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा
7: तो फिर देर क्यों चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़ और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
6: यहां नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन हर्निया अपेंडिक्स पित्त की थैली बवासीर भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
6: संपर्क 99393965930।
9: राधा तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
10: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
11: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
12: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
11: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9974434468 पे।
13: Now pick it up,
14: hello.
13: Now pick your phone up,
14: hello.
13: Pick it up,
14: hello.
13: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: जी नमस्कार।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमची में।
1: अरे मैडम जी, मन ना रहा फोन करके, लेकिन जनरेटर चलता है जो फैलाई होता है गर्मी के। अब सुनिए कि देखा लास्ट में लेट चालू हो रिकॉर्डिंग, लेट हो ना।
2: हाँ, 5 मिनट लेट शुरू भैया।
1: ना 5 मिनट के बाद, 5-7 तक तो हम लगा रहे फोन।
2: हाँ, रिचार्ज ना रहे ना फोनवा में।
1: हाँ हाँ, बताओ तो इनकमिंग नहीं है सब। मैडम क्या था, रिकॉर्डिंग होता है?
2: हाँ अभी तो रिकॉर्डिंग है, चलो।
1: कल हमारे फरमाइश भोजपुरी में ना बजे नहीं ना, हम तो सुधगिरी मैसेज करते हैं दोपहर में खाना खा के 3 बजे सुधगिरी।
2: प्ले ना कहनी का कले रहे ना
1: बज रहे,
2: ध्यान नहीं के, बहुत सारा मैसेज रहा ध्यान नहीं के।
1: ना ना बज रहे, देखनी ना। अच्छा, पढ़ के बताई नहीं के बाद ही।
2: रउआ मैसेज कहनी की हमारा नींद होता तो मैसेज आने लगल की हमारा नींद
1: होता सुन के गए नहीं तो फिर ये ना। कल तो सोए रहे, एतवार है, संडे रहे,
2: कल भोजपुरिया रहे।
1: इसी में फर्क भेज ले रहे पत्रा वाली में, आप फिर आपकी फोन करके बात करके लिखवाई। चाहत रहे संडे के, जब ईयरबड चॉइस में हर गाना भोजपुरी बजे जाता तो संडे की चाहत रही थी रखल अंताक्षरी, हिंदी गाना खाली हुई सबसे बढ़िया 2 घंटा सब जनता लोगों में जनता लोग
2: चले। ठीक बा, बोलिए के लिखवा दें, वो ज्यादा अच्छा रही।
1: यही नंबर पे ना
2: है,
1: कल सोनू सर पढ़त रहा, सोनू सर मैसेज पढ़त रहा कहाँ से आई बा सर जवाब देते रहे।
2: तो वो व्हाट्सएप वाला नंबर पे कॉल करे
1: 98527-88291।
2: चलिए तो आज के गाने का फरमाइश बता दी।
1: आज के गाने का फरमाइश थे आग और 16 फिल्म का गाना था, आज सुबह जलमय जगह मस्त हवा बहने लगी
2: जी।
1: और सबको जितना भी रेडियो सुनने वाला बात सबको भाई लोग के सुनावल जी, रघु के सुनावल जी, और हम लोग के रोशन टेलर धनाव में काम कर रहे थे, प्रोग्राम चल रहा है दिन भर चालू रहा।
2: तो प्ले करी गाना?
1: हाँ प्ले करी, यार बहुत चालू हो
2: जी। जी बिल्कुल, 2-4 कॉल बाकी बार लेके
1: टाइम देखते 12:30 तक।
2: चले ठीक बा, बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल करूँगी।

0: सुनिए।
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
7: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
8: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
9: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
7: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
7: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
9: कॉल करे 87894 18744।
10: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
11: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
10: तो देर मत कीजिए,
11: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
10: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
9: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
10: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
9: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
10: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
10: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
9: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
12: Now pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
2: क्या हाल है मैम? मैं अहमद अली, शरियाबाद नंबर 1 से।
1: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
2: हम सब अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बहुत दिन हो गया आपसे बात करके।
1: दिन तो काफी हो गए।
2: मैसेज के जरिए ही बात हो रही है। गाना बजा था मेरा बॉइस एक दिन, ऐसे कॉल लगाता हूँ। भोजपुरी एक्सप्रेस में परेशान हो गया था मैं, लगा लगा के नहीं लगा।
1: काफी भीड़ चल रही है आजकल सारे शो में।
2: आजकल लड़ाई लगी हुई है ना, इसलिए ट्रेन सब भीड़ जा रही है।
1: लड़ाई भी लगी हुई है और ऐसे भी आजकल,
2: इसीलिए आपका एक्सपीरियंस भी हाउसफुल चल रहा है।
1: उसमें भी शिकायत आ रही है की
2: मैम छोड़िए, शिकायत वाले लोग शिकायत ही करते रहेंगे, ठीक है? ये नहीं सोचते हैं कि कितना लंबा लाइन रहता है आपका गाना। मान लीजिए थोड़ा एक मिनट का के
1: श्रोता अगर जुड़ गया तो
2: वही ना, ये सब समझते नहीं है, अपना अपना सब देखने, ये नहीं दूसरे के बारे में कोई सोचता नहीं।
1: सबको अपना ही चाहिए, बस मेरा हो जाना चाहिए।
2: अरे मैम मेरा तो बजता है नहीं, बस मैं तो आपसे पूछता भी हूँ कि मैम बजेगा क्या, नहीं तो मेरा कोई वो नहीं, सुनते रहता हूँ तो है। अपना गाना बजे या किसी का भी बजे, गाना सुनने को
1: मिलता है कि अगर आदमी सोच के रखे कि आज ये गाना सुनना है और कोई और उसी गाने की फरमाइश कर दे,
2: फरमाइश तो हो जाता है ना,
1: हो गया।
2: सही बात है, कभी नाराज ही नहीं होते हैं मैम, आज नहीं बजेगा।
1: सबकी अपनी अपनी समस्या है, सबको समझना चाहिए।
2: आज जुम्मा था इसलिए सबको जुम्मा मुबारक मेरे तरफ से। नाश्ता पानी हुआ है ना?
1: जी जी, नाश्ता पानी हो गया, मेरा खाना हो गया है।
2: खाना हो गया था इसलिए गाड़ी भी तो बहुत देर तक रहेगी ना, 3:30 बजे तक
1: 4 बजे तक
2: 4 बजे तक। बताइए मैम, कुछ खाना वाना लेके आती है कि लेके आए हम?
1: नहीं नहीं, लंच लेके आते हैं।
2: नहीं तो मेरा दूर नहीं है आपके, ये अपना वो तो एक ही में है, वार्ड नंबर एक ही में है आपका रेडियो।
1: जो मेन बड़ी वाली बाजार है उधर से ही रास्ता जाता है ना? वही उधर ही है ना एक नंबर?
2: नहीं नहीं, ये अपना सरस्वती टकिल है ना।
1: अच्छा, इधर पीछे वाला?
2: हाँ, ये आपके आपके स्टेशन के सामने जो चौरा है बगीचा।
1: अच्छा अच्छा, ये सारे उधर बाजार के पीछे जो हनुमानगढ़ी पड़ता है?
2: नहीं नहीं, वो सब वार्ड नंबर 4 है।
1: अच्छा, वार्ड नंबर 4 है।
2: अपना ये सरस्वती टकिल, ये अपना बुलेट एजेंसी है ना, पेट्रोल पंप बुलेट एजेंसी के सब वार्ड नंबर 1 है।
1: मतलब काफी दूर में सारे फैला हुआ है,
2: पूरा टाउन सारिया ही है।
1: अच्छा, पूरा उधर पीछे वाला साइड पूरा सारिया बोलता है, वार्ड नंबर से बटा हुआ है।
2: सब वार्ड नंबर 12, 13, 17, 18 आपका तो हमारे देखने से वार्ड नंबर 1 नहीं, भीतभैरवा पड़ता होगा।
1: अब पता नहीं, भीतभैरवा तो यही है, भीतभैरवा जो भीतभैरवा में ही है, समझ जाइए।
2: आपका रोड उस पार है तो भीतभैरवा में ही है। रोड इस तरफ आपके सामने देखिएगा ना, ये जो अपना सर्विसिंग और गैरेज वरेज है, ये डॉक्टर है बच्चे का, राम प्रवेश, ये सब वार्ड नंबर 1 में है।
1: अच्छा, ये लोग वार्ड नंबर 1 में है।
2: जी जी मैम,
1: तो ज्यादा दूर नहीं है आप?
2: नहीं, मैं तो बोलिए उठ के आ जाएंगे खाना पानी लेके, भूख लगा जिस दिन आप।
1: जी जी, जिस दिन खाना लेके नहीं आएंगे उस दिन जरूर बताएंगे आपको, फिलहाल आज लेके आए।
2: इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कभी भी कोई एक बार याद कर लीजिए, बंदा आज हो जाए
1: तो बता दीजिए। गाना कौन सा सुनना है आज आपको?
2: गाना हमको सुनवा दीजिए, जब से दिल दिया है तुमको चैन न पाया रे, रब्बा रब्बा रब्बा मेरे चैन न आया रे।
1: ये और सुनवाना भी है?
2: जी जी मैम, सबसे पहले तो आपको और अपने वाइफ अस्तरी को और कमरान भाई को, राघव जी को, दिलीप भाई को। राघव जी जुड़ रहे हैं कि ना? अभी तक गुस्से में है?
1: अभी तक गुस्से में ही है।
2: अरे मैम तो मना लीजिए, काटे इतना गुस्सा किए हैं?
1: मेरे से ही गुस्सा है, अब मैं कैसे मनाऊं?
2: आपसे गुस्सा है तो आप ही ना मनाएंगी, कौन मनाएगा?
1: वो समझ ही नहीं रहे।
2: अच्छा अच्छा, रुकिए कभी जाते हैं उधर जाएंगे, मेरे को काम है।
1: इतना बार देखते हैं कि वो सुन रहे हैं लेकिन जुड़ते नहीं है, शो में नहीं आए,
2: ड्रामा ड्रामा कर रहे हैं। अगर राघव जी आप सुन रहे हैं रेडियो तो मान जाइए प्लीज। ठीक है, ऐसा छोटी छोटी बात के लिए आप लोग नाराज मत होइए,
1: लाइन आइए
2: क्योंकि मेरा आवाज उनके पास जाएगी तो राघव जी मान जाइए प्लीज है। चलिए कोई बात नहीं है,
1: जी जी
2: गाना सुना दीजिए सबको, अक्सरी को, राघव जी को, सम्राम रशीद को, दिलीप भाई को, जो भी रेडियो इंजन जहाँ से भी सुन रहे हैं सभी को।
1: चलिए तो प्ले कर रहे हैं जी जी,
2: थैंक यू मैम,
1: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद है मैं चॉइस में कॉल किया।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97070065।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
9: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
10: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
9: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
10: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
9: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
11: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
12: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
11: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
12: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम एक डेरवा, तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
11: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5, हनुमानगढ़ी, गोपालगंज में है।
12: जानकारी है तो कॉल करे 62052-62112 पे।
13: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: जी नमस्ते, नमस्कार, प्यार भरा सलाम डियर सोनी सिस्टर, कैसी हैं? जी बहुत अच्छा है, आपका सुना है, मैं तो ऑलवेज मस्त बिंदास झकास रहता हूँ।
15: जी जी, इरफान बात कर रहे हैं क्या?
14: अपना बताइए सोनी। जी मैं रेडियो फैन मोहम्मद इरफान फ्रॉम दुबई से।
15: जी जी, क्या हाल चाल है?
14: चलिए हाल चाल ठीक है, पहचानने के लिए दिल से शुक्रिया। प्लस 151 रुपया का पुरस्कार मिलता है आपको।
15: अच्छा अच्छा, तो कब मिलता है पुरस्कार ये?
14: बस जब पेटीएम नंबर दीजिए अभी सेंड कर देंगे।
15: अच्छा, नहीं वैसे नहीं चाहिए।
14: अच्छा चलिए कोई बात नहीं, उससे उपहार आपको मिलने वाला है, घबराइए मत।
15: जी जी, इंतजार है मुझे भी।
14: और सब बताइए, मौसम कैसा हो रहा है अपने गोपालगंज का?
15: इधर इधर तो धूप का प्रकोप पूरा फैला हुआ है।
14: जी यहाँ भी मौसम ठीक है, दुबई में अभी बारिश शुरू हुआ था ना बीच में, तो थोड़ा भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे भीतर गर्मी पड़ती है 8 महीने तक।
15: हाँ, वहाँ तो पड़ते ही है, वहाँ का तो बात
14: नहीं। हम लोग कोई फर्क, लेकिन हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता है, कभी कभी थोड़ा सा टर्मिनेशन के लिए, मशीनरी काम के लिए थोड़ा जाना पड़ता है आउट साइड में, नहीं तो ऑफिस में काम है हम लोग का।
15: तो फिर तो ऑफिस में तो पूरा AC लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
14: हाँ वो तो हम, मेरा ही काम है सब, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग का पूरा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में ही हूँ, हेड हूँ यहाँ पर।

0: ठीक है,
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: मुझे भी लगा, बहुत बहुत धन्यवाद हेलो माई चॉइस में कॉल किए।
1: ओके, मोस्ट वेलकम इन दुबई।
0: जी, अभी इतना जल्दी तो वेलकम नहीं करिए दुबई में।
1: अच्छा, चलिए ठीक है
0: ठीक है।
1: ओके, थैंक यू।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
8: कब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
9: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
8: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
10: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
11: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
12: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
13: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
12: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
13: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
14: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
15: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
13: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
12: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
13: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
12: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
13: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
12: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
13: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
12: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
16: Now pick it up,
17: hello.
16: Now pick your phone up,
17: hello.
16: Pick it up,
17: hello.
16: Now pick your phone up,
17: hello.
18: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं
19: बात। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।

0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: यूसुफ सिपाही ढाला से बोल रहा हूँ
1: जी। कैसे हैं मोहम्मद यूसुफ जी?
0: बहुत बढ़िया है, अपना सुनाइए, आप कैसे हैं?
1: मैं भी बढ़िया हूँ। तो क्या हो रहा था?
0: भाई दवाई के दुकान पर है।
1: तो क्या कर रहे थे अभी?
0: अभी क्या कर रहे थे, अभी दवाई वगैरह दे रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा, गाना कौन सा सुनना आज आपको?
0: वो सुनना है मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी
1: जी। और सुनवाना भी है?
0: सुनवाना है अपना मेडिकल के सभी स्टाफ और खास करके फौजी जो कन्हैया है, गुमनिया के रिटायर कर चुके हैं, उनको भी सुनवाना है। पिछले साल आपके पिछले बुधवार को आपके रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी?
1: जी जी, नहीं हुई थी।
0: हाँ हाँ, तो सुनवा दीजिएगा।
1: जी बिल्कुल सुनवा देंगे।
0: हाँ,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका लुमाई चॉइस में कॉल किया।

0: मत कभी कभी।
1: हेलो मैम, नमस्ते।
2: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी मैम, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैयर MP से।
2: जी कैसे हैं?
1: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे मैम इंतजार में फोन का, रिकॉर्डिंग चालू हो जाए तो फिर करवा दें तो फिर कम पे लग जाए मैम, तो अभी तो फ्री बैठे थे। जी मैम।
2: जी तो गाना कौन सा सुनना है आज आपको?
1: जी आज हमको सुनवा दीजिएगा, गाने की बोल है जब जब प्यार में पहरा हुआ।
2: जी सुनाना भी है
1: और सुनवाएंगे। कितने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते हैं, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं मैम।
2: ओके चलिए, तो प्ले करें गाना आप ही।
1: जी ओके मैम।
2: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714861 64।
7: प्रसाद क्लिनिक,
8: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
7: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
8: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
9: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
10: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
9: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
10: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
9: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।
11: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
12: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
11: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
13: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
11: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
13: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
11: और 9097160602।
14: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
15: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो। भागे भागे फिरते हैं।
16: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सब इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: हेलो,
18: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो केसरी 90.2 FM में।
17: नमस्कार मैडम।
18: नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
17: मैं रमेश चौहान बोल रहा हूँ, जाजपुर बरहा से।
18: जी,
17: बुधवार को क्या रिकॉर्डिंग हुआ था? बुधवार रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था?
18: नहीं, बुधवार को रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी।
17: और तभी तो, क्योंकि 11 घंटा में लगाया था कॉल लगाने, तो एक मैं वो गाना सुनना था।
18: जी बिल्कुल, सुनाएंगे, बता दीजिए गाने का नाम।
17: उसके तो फिल्म का नाम याद नहीं है, मगर गाने का नाम याद है। और आदमी को बीबी को गुलाम होना चाहिए।
18: जी, और सुनवाना भी है?
17: और सुनवाना क्या है, सब अपने घर के लोग हैं, मेरे वाइफ है, मेरी बच्ची है मुस्कान कुमारी, काजल कुमारी और एक अरुण कुमार।
18: जी, तो प्ले करेगा ना आपकी?
17: जी,
18: प्ले करेगा ना आपकी?
17: प्ले करें।
18: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: जल्दी आना था।
1: आना था?
0: हम दोनों को बाहर जाना था।
1: जाना था?
0: किसी बड़े होटल में खाना खाना था।
1: खाना खाना था?
0: अब कौन बनाएगा खाना?
1: खाना मेरी जाना, खाना पकाएगा तुम्हारा दीवाना। नो टेंशन, एक्शन, अटेंशन, राइट टर्न टू किचन।

अरे बड़ी डोंट वरी, हम भी अकेले हैं। नाउ मेकिंग वेरी वेरी गुड डिलीशियस डिस्को फूड।

0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: सीता नाइट कानपुर से
1: जी। कैसे हैं सीता जी?
0: अच्छी हूँ, आपने बताइए आप कैसे?
1: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या हो रहा था?
0: कुछ नहीं, कॉल लगा रही थी। एक बार कॉल की थी तो आप टीवी नहीं की।
1: आपका कॉल नहीं आया था, मिस कॉल आया था, इसीलिए
0: अभी कॉल की थी तो आप नहीं उठाए।
1: मिस कॉल आया था किसी का, पता नहीं आपका था कि किसका था, मिस कॉल था इसीलिए नहीं रिसीव किया।
0: खाना पीना हो गया?
1: हाँ जी हो गया है। आपका हो गया है?
0: हाँ हो गया है।
1: तो गाना कौन सा सुनना है आज आपको?
0: प्रमोद प्रेमी का कोई भी भक्ति सॉन्ग सुना दीजिएगा।
1: प्रमोद प्रेमी का कोई भी भक्ति गाना? और सुनवाना भी है
0: आपको? और रेडी रेडी सुना सभी श्रोताओं को।
1: ओके चलिए, तो प्ले करें गाना।
0: यस मैम।
1: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो माय चॉइस में कॉल की।
0: थैंक यू मैम।

0: तो दोस्तों, आप लोग अभी कार्यक्रम हेलो माय चॉइस को मेरे साथ यानी आरजे सोनी के साथ सुन रहे थे। अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो मुझे दीजिए अब जाने की इजाजत और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो रेंजन 90.4 FM। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
2: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
1: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
3: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर M.A. अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
4: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
5: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
6: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
5: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने कॉलेज रोड गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
7: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
8: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
7: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
8: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
7: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
9: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
10: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
9: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
10: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
9: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
10: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
9: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

विक्रम के जवाब से संतुष्ट बैताल फिर उड़ा और अपनी डाल पर जाकर लटक गया। जिद्दी विक्रम ने फिर उसका पीछा किया, फिर उससे लड़ा, उसे अपने वश में किया और चल पड़ा। सदा की तरह इस बार भी बैताल ने विक्रम को एक कहानी सुनानी शुरू की। चित्रकूट नगर का राजा रूपदत्त एक बार जंगल में गया तो वहां उसे एक सुंदर कन्या मिली।

0: ए लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? अरे सुनो,
1: क्या हुआ बेटी?
2: एक घुड़सवार मेरा पीछा कर रहा है, पता नहीं वो कौन है।
1: महाराज आप?
3: हाँ हम, आपकी सुंदर लड़की हमें यहां तक खींच लाई।
4: महाराज आपको देख के डर गई है।
3: डरने की कोई बात नहीं, आपकी कन्या हमारे महल की रानी बनेगी, हम उससे विवाह करेंगे। आपको ये रिश्ता पसंद है?
4: हमारे अहोभाग्य महाराज।

राजा रूपदत्त उस सुंदर कन्या से विवाह करने के बाद अपनी राजधानी चित्रकूट लौट रहा था। तभी रास्ते में दोनों को प्यास लगी। पानी की खोज करते हुए वो एक गुफा में आ पहुंचे। तभी

0: तो मेरा भोजन है, मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगा।
1: आप मुझे मत मारिए, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं राजा रूपदत्त हूँ।
0: तू राजा है?
2: राजा है तू?
0: आज मैं राजा को खा जाऊंगा, क्योंकि तो राजा की और मनुष्य के मांस में कोई फर्क नहीं होता है, और उसका स्वाद भी मनुष्य की तरह होता है।
1: आप जो मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे प्राण मत लीजिए।
0: जो मुझे मिलना था मुझे मिल गया, मेरा भोजन मुझे मिल गया, मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगा। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, तुम नहीं तो मैं इसे खा जाऊंगा।
1: इसे छोड़ दीजिए, आप इसे छोड़ दीजिए, मैं आपको भोजन दूंगा।
0: मुझे मनुष्य चाहिए।
1: मैं आपको मनुष्य दूंगा, मैं वचन देता हूँ, मैं मनुष्य भेजूंगा, मैं वचन देता हूँ।
0: जा राजा जा, आज से 7 दिन के अंदर मेरा भोजन मुझे यहाँ मिलना चाहिए, नहीं तो मैं चित्रकूट में आके तुम दोनों को खा जाऊंगा। जा।
1: मैं वचन देता हूँ, मैं 7 दिन में आपको मनुष्य भेजूंगा।

0: मंत्री जी।
1: जी महाराज।
0: केवल 6 दिन रह गए, आज से 6 दिन वो राक्षस आ जाएगा।
2: मुझे तो सोच सोच कर भी डर लग रहा है।
0: घबराने की कोई बात नहीं, कोई ना कोई व्यवस्था तो हो ही जाएगी। मंत्री जी।
1: जी महाराज।
0: क्या सोचा आपने? किसी ना किसी तरह हमें एक व्यक्ति को तैयार करना होगा जो राक्षस का भोजन बन सके।
1: बड़ा कठिन है महाराज, भला कौन स्वयं को मृत्यु के हवाले करना चाहता है? धन का लालच, केवल धन का लालच ही किसी को मृत्यु की तरफ आकर्षित कर सकता है।
0: आप जितना धन चाहे हमारे राजकोष से ले सकते हैं, लेकिन किसी तरह हमारे प्राण बचाइए।

0: वाह मंत्री जी वाह, इतना धन, इतने आभूषण और इतना सारा सोना इस मूर्ति में, ये लालच तो किसी को भी खींच कर ला सकता है। आप ये सब ले जाकर नगर के चौक में रख दो और ये घोषणा करवा दो कि जो भी राक्षस का भोजन बनने के लिए तैयार हो वो ये सारा धन ले जा सकता है।
1: राजा की आज्ञा के अनुसार वो बहुमूल्य पुतला नगर के चौक में खड़ा कर दिया गया और घोषणा कर दी गई।
2: सुनो सुनो सुनो सुनो, महाराजा रूपदत्त ने राक्षस को वचन दिया है कि आज से 5 दिन बाद वे उसे एक मनुष्य की बलि भोजन के लिए देंगे। जो व्यक्ति स्वयं या अपने रिश्ते नाते के किसी व्यक्ति को राक्षस का भोजन बनाने के लिए तैयार हो वो इस रत्न जड़ित सोने के पुतले और सारे धन को ले जा सकता है।
3: इतना धन? इतना धन जिसे मिलेगा वो तो बड़ा धनवान हो जाएगा।
4: अरे हो तो जावेगा मगर जीवित ना रहेगा, फिर ऐसे धन का क्या लाभ।
5: देखो भाइयों, मैं तो धन की लालच में फंसने की सलाह किसी को नहीं दूंगा।
3: अरे भाई, जब जीना नहीं है तो इतने धन का क्या लाभ होगा।

0: अब तक कोई नहीं आया।
1: आज का दिन भी बीत गया है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
2: जान देना पड़ेगा उसके लिए, तो कौन देगा? मैं नहीं।

0: और दो ना।
1: कहाँ से दू? 100 बार तो कह दिए नहीं है खाने को, देख लो। और दो ना, कहाँ से लाओ मैं खाना? जो था वो तो दे दिया।
0: मेरा खाना दे, मेरा खाना दे।
1: अरे मत करो,

0: यही होता है। जितना भी लाकर डालो इनके पेट में कम पड़ता है। अरे मर जाओ, क्या रखा है इस जिंदगी में? रोज भीख मांग के कितना भी लाऊं, ये गरीबी मिटने वाली नहीं है। रोज इसी तरह रोटी के टुकड़ों के लिए लड़ते रहना, लड़ते रहना। अरे मर जाओगे ऐसे ही रोते रोते।
1: अब बस भी करो, जब देखो तब बड़ बड़ बड़ बड़। ये तो चलता ही रहेगा,
0: चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। अरे इनमें से एक चाहे तो सारे घर को सुख दे सकता है। पीढ़ियों के दलिद्र मिट जाएं, रोज रोज रोटी मिले, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिले, सुख से रहे। राजा ने खड़ा किया है चौक पे सोने हीरे का पुतला, इनमें से एक मरने को तैयार हो जाए तो जन्म जन्म का शाप मिट जाए। अरे ऐसे भी जी के क्या कर लोगे? मर जाओगे तो कम से कम दूसरों को सुख तो मिले।

0: एडमिशन फ्री
1: कहाँ पर?
0: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
1: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
0: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
1: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
2: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर गोपालगंज।
6: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
7: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
8: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
11: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
12: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
11: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
9: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
13: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: señor Eddie?
1: Pues usted quitará, usted quitará la pérdida. ¡Cómo decirme la cara! अरे मर जाओगे ऐसे ही लड़ते लड़ते, कहाँ से लाकर दुकाने को, शांति से बैठ के नहीं खा सकते, जो है खा लो।

मैं नहीं मरूंगा, मैं ऐसे नहीं मरूंगा, मैं ऐसे नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं ऐसे नहीं मरूंगा।

भोजन। आज राजा का वादा मुझे याद आया, आज वो मुझे भोजन भेजेगा। राजा ने मुझसे वादा किया था कि 7 दिन के अंदर अंदर वो मुझे भोजन भेजेगा।

0: विभूषणों से अलंकृत किया। बिहार की 3 विभूतियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनके पुत्र रमन कुमार त्रिवेदी ने पुरस्कार ग्रहण किया।
1: डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी मरणोपरांत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, उनके पुत्र श्री रमन कुमार त्रिवेदी।
0: वहीं डोमकच्छ लोक नृत्य परंपरा को मुख्य धारा में लाने वाले पुरोधा विश्व बंधु को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी इंदु देवी ने पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्मश्री श्री विश्व बंधु मरणोपरांत कला लोक नृत्य

0: उनकी पत्नी श्रीमती इंदु देवी।
1: भोजपुरी लोक गायक भरत सिंह भारती को कला और लोक गायन के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
0: श्री भरत सिंह भारती, कला लोक गायन।
1: समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्य और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के पाठ्यक्रम में कक्षा एक से लेकर माध्यमिक स्तर तक मैथिली भाषा को मातृभाषा विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पाठ्यक्रम में मैथिली को सम्मिलित कर लिया गया है। दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने उन्हें इस संबंध में पत्र भेजा है। श्री ठाकुर ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है।
2: CBSE पाठ्यक्रम में मैथिली भाषा को शामिल किया जाना एवं सीटेट CTET में भी मैथिली भाषा को स्थान मिलना संपूर्ण मिथिला वासियों के लिए यह ऐतिहासिक उपलब्धि है और मिथिला की अस्मिता, संस्कृति और मातृभाषा का जो सम्मान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो यह काम किया है ऐतिहासिक, इसके लिए हम मिथिला वासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और बधाई आभार प्रकट करना चाहते हैं।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मैथिली को CBSE के पाठ्यक्रम में मातृभाषा के रूप में मान्यता देने की केंद्र सरकार की पहल का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह गौरव का विषय है, इससे मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मातृभाषा मैथिली को शिक्षा व्यवस्था में सशक्त स्थान मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के इस फैसले से मिथिला की सांस्कृतिक अस्मिता को और भाषाई गौरव बढ़ेगा। इधर विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने भी मैथिली भाषा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए धन्यवाद और बधाई दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कामों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही विभिन्न विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था बेहतर बनाने के मुद्दे पर विचार किया गया। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की है। पेट्रोल 2.61 रुपए और डीजल 2.71 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। पिछले दो सप्ताह में तेल के मूल्य में चौथी बार वृद्धि हुई है। पटना में पेट्रोल 113.35 रुपए और डीजल 99.36 रुपए प्रति लीटर हो गया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी से किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि सभी को पता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट प्रभावित होने से कच्चे तेल की आपूर्ति पर असर पड़ा है, इसका प्रभाव ईंधन की कीमतों पर पड़ा है।
3: जितना बड़ा संकट है, जितना बढ़ना चाहिए उसको भी सरकार की सफलता ही है कि उसको नियंत्रित करके बहुत कम बढ़ा रही है, बहुत कम रुपयों का इजाफा दाम में हो रहा है और पूरी दुनिया झेल रही है। तो अकेले भारत में पेट्रोलियम पदार्थों का दाम थोड़े बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। खाड़ी का संकट, हॉर्मुज संकट सब लोग जान रहे हैं।
1: विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का परिणाम बताया है। डॉक्टर कुमार ने कहा कि सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जल्द ही इस पर नियंत्रण कर लिया जाएगा।
4: वर्तमान वैश्विक ऊर्जा संकट को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर पेट्रोल डीजल के खपत को घटाने तथा सार्वजनिक वाहनों को प्रयोग बढ़ावा देने के आह्वान के मद्देनजर बिहार विधानसभा सचिवालय में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों में आवासीय स्थानों से कार्यालय आगमन हेतु एम्स पटना से बिहार विधानमंडल सचिवालय रूट के लिए एक इलेक्ट्रिकल, एक CNG एवं एक पिंक बस, समुना मोड़ से बिहार विधानमंडल सचिवालय रूट के लिए एक इलेक्ट्रिक बस, धनकी मोड़ से बिहार विधानसभा मंडल निर्वाचन आयोग एवं विकास भवन रूट के लिए एक इलेक्ट्रिक एवं एक CNG एवं एक पिंक बस का परिचालन आज शुरू किया गया है।
1: बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ की ओर से पटना में एक दिवसीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान 3 कंपनियों के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव मौजूद रहे। श्री यादव ने कहा कि विकसित बिहार बनाने के लिए किसानों का सशक्त होना जरूरी है।
5: तिरहुत यूनियन के साथ 3 कंपनियां हैं जिसके साथ एमयू हुआ है। इसमें एचयूडीयू है, नेचर फास्ट है, हरिलाल है, मंडी मित्र और सेजा फूड है। तो ये सब के साथ हमारा एमयू हुआ है। मैं समझता हूं कि इससे काफी फायदा होने वाला है। हम लोग प्रयास करेंगे किसानों को प्रोत्साहित करके, जो इसमें जुड़े हुए लोग हैं, कि सरकार हर तरह का सपोर्ट देने की प्रतिबद्धता रखती है।
1: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा है कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय परीक्षा जांच एजेंसी NTA ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। एक रिपोर्ट।
1: न्यायाधीश PS नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मिना में इकट्ठा हो रहे हैं। पवित्र शहर मक्का से अपनी यात्रा शुरू कर रहे जायरीन मिना के टेंट सिटी में आज रात बिताएंगे और कल तड़के अराफात के मैदान की ओर बढ़ेंगे, जहां वे हज के मुख्य अनुष्ठान में भाग लेंगे। इस वर्ष हज यात्रा में बिहार के 2,552 हज यात्री समेत देश भर के लगभग 1,75,000 यात्री भाग ले रहे हैं। राज्य के दक्षिणी भागों में भीषण गर्मी और उत्तरी भागों में आंधी बारिश की स्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में आंधी के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात हो सकता है।
2: दिनांक 26 मई राज्य के अररिया, किशनगंज एवं सुपौल जिलों में मेज गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य भाग के जिलों कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया एवं सहरसा जिलों में कुछ स्थानों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गया समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। पिछले 24 घंटों के दौरान गया और रोहतास जिले में हॉट डे की स्थिति बनी रही। रोहतास के डेहरी में अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि राज्य के दक्षिणी भागों में गर्मी से राहत के आसार अभी नहीं है। भीषण गर्मी के कारण मुंगेर जिले के संग्रामपुर में +2 बालिका विद्यालय की 7 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। बीमार छात्राओं का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर SS राय ने बताया कि लू लगने के कारण छात्राएं बेहोश हो गई, अब उनकी हालत में सुधार है। पटना के ज्ञान भवन में आज 3 दिवसीय स्वास्थ्य एवं संबद्ध क्षेत्र रोजगार मेला 2026 का शुभारंभ हुआ। युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत आयोजित इस मेले का उद्घाटन विभागीय मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने किया। 27 मई तक चलने वाले इस मेले के पहले दिन 13,000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया, जिनमें 1876 अभ्यर्थियों का विभिन्न कंपनियों के द्वारा चयन किया गया है। गोपालगंज की MP MLA कोर्ट ने अश्लील नृत्य और हथियार लहराने से जुड़े मामले में मोकामा के विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में अग्रिम जमानत का फैसला सुरक्षित रखा है। मामले की अगली सुनवाई 30 मई को होगी। गौरतलब है कि गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सेमराव गांव में 2 और 3 मई को एक कार्यक्रम के दौरान अनंत सिंह की मौजूदगी में समर्थकों के अश्लील गीतों पर हथियारों के साथ डांस करने का वीडियो वायरल हुआ था। निगरानी विभाग की टीम ने बेगूसराय के सहायक नियंत्रण नापतौल कार्यालय में कार्यरत लिपिक पुष्कर कुमार द्विवेदी को ₹5,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। निगरानी विभाग के DSP पवन कुमार ने बताया कि आरोपी नापतौल लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था। उन्होंने बताया कि आगे की पूछताछ की जा रही है। अररिया जिले में बकरीद पर्व को लेकर अनुमंडल और थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही समाज सेवी और बुद्धिजीवी शामिल हुए। वहीं जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आधा दर्जन फरार वारंटी अपराधियों के खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई है। शेखपुरा जिले में डिजिटल इंडिया मूवमेंट के तहत पुलिस कर्मियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। पश्चिम चंपारण के इनरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत भारत नेपाल सीमा के करीब एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में नशीली दवाओं की बड़ी खेप बरामद की गई है। इस संबंध में दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत हसनपुर गांव में नदी में डूबने से एक युवती की मौत हो गई। नवादा के पुलिस केंद्र के पास गया नवादा रोड पर एक तेज रफ्तार ई रिक्शा की टक्कर से सड़क पार कर रहे पुलिस के 112 वाहन के चालक की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 66 विभूतियों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया। बिहार की 3 विभूतियों को मिला पद्मश्री। सीबीएसई पाठ्यक्रम में शामिल होगी मैथिली भाषा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार की पहल को बताया ऐतिहासिक। राज्य सरकार ने कहा मध्य एशिया में जारी संकट के कारण बढ़ रही है पेट्रोल डीजल की कीमत। और मौसम विभाग ने सुपौल अररिया किशनगंज समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में अधिकांश स्थानों पर आंधी के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

Oh, my God.

0: इतनी कहानी सुनाने के बाद बैताल ने विक्रम से एक प्रश्न किया। ये बता विक्रम कि वो लड़का हंसा क्यों और रोया क्यों?
1: जल्दी बता
2: वरना मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
1: हाँ
3: बेताल, लड़का जिस कारण से हंसा उसी कारण से रोया भी। वो सोच रहा था कि जिस राजा को राक्षस से मेरी रक्षा करनी चाहिए थी वो उसी राक्षस को मेरी बलि दे रहा है। जिस माता पिता को मेरा पालन पोषण करना चाहिए था वो मुझे धन के लालच में बेचकर चले गए। सच है, मनुष्य को अपने भाग्य की लड़ाई अकेले लड़नी पड़ती है। इसी बात ने उसे प्रेरणा दी, वो राक्षस से भिड़ गया और विजयी हुआ।
1: बहुत बुद्धि वाला है। अरे तेरा जैसा ना राजा बुद्धि वाला हुआ, ना न्याय वाला हुआ, ना कभी होगा।
2: कहा तो ठीक, मगर कहा क्यों?
1: अरे तू बोला और मैं चला।
2: मैं ये चला।
4: मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
5: विक्रम आजा, मेरा पीछा छोड़ दे, मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूं। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महा झूठ है।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल अम्बेडकर चौक हॉस्पिटल रोड गोपालगंज, अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास बेतिया हाता गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710 3992 या 90765

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
4: यार, कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
5: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
4: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
5: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
4: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
5: जहां हर निवाला कहे वाह।
6: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
7: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
6: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
6: संपर्क 99-393-65-930।
8: क्या चाहते हो, मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
9: क्यों, क्या हुआ है?
8: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
9: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
8: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
10: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।

0: में दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
7: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
8: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
9: सुनिए सुनिए सुनिए,
10: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
9: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
10: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
9: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: जोकर।
1: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
2: अरे तो उसे डांटते क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
3: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
4: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
5: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
5: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
5: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
5: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
6: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: प्राण प्रिय,

0: समझ हैं? हाँ?
1: बढ़िया।
2: एडमिशन फ्री
3: कहाँ पर?
2: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
3: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
2: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
3: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835565965।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-3945-651 या 97-097-06-575।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
2: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
1: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
2: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
4: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
5: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। आइए जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। रामपुर रजा लाइब्रेरी द्वारा सेवा अनुबंध के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पूर्णता भरे हुए आवेदन पत्र, सभी संबंधित स्व प्रमाणित अभिलेखों सहित निदेशक रामपुर रजा लाइब्रेरी, हामिद मंजिल, खिला रामपुर, उत्तर प्रदेश के नाम पर संबोधित करते हुए विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के भीतर स्पीड पोस्ट या फिर पंजीकृत डाक द्वारा अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाने चाहिए। पूर्ण आवेदन पत्र A4 आकार के लिफाफे में भेजा जाए, जिसके ऊपर स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि किस पद हेतु आवेदन पात्र हैं। पद का नाम सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार, पदों की संख्या 1, मानदेय 55,000, अनिवार्य योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमता, डेटा साइंस में स्नातक डिग्री तथा राज्य, केंद्र सरकार, निकायों, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के किसी संस्थान में आईटी क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का कार्यानुभव। नियुक्ति का प्रकार सीधी संविदा, अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं। लेखा सलाहकार, पदों की संख्या 1, मानदेय 55,000, अनिवार्य योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय

0: संस्थान से वाणिज्य अकाउंट में स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री अथवा चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव तथा राज्य, केंद्र सरकार, निकायों, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के किसी संस्थान में लेखा के क्षेत्र में 7 वर्ष का अनुभव। नियुक्ति का प्रकार सीधी संविदा, अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं। प्रशासनिक सलाहकार पदों की संख्या 1, मानदेय 55,000। अनिवार्य योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री तथा राज्य, केंद्र सरकार, निकायों, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के किसी संस्थान में प्रशासन के क्षेत्र में 7 वर्ष का अनुभव। नियुक्ति का प्रकार सीधी संविदा, अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं। क्रम संख्या 4, पद का नाम शोध सहायक हिंदी, पदों की संख्या 1, मानदेय 45,000। अनिवार्य योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में पीएचडी उपाधि तथा शोध, अनुवाद अथवा पांडुलिपि अध्ययन के क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव। नियुक्ति का प्रकार सीधी संविदा, अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं। क्रम संख्या 5, पद का नाम शोध सहायक संस्कृत, पदों की संख्या 2, मानदेय 45,000। अनिवार्य योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत में पीएचडी उपाधि तथा शोध, अनुवाद अथवा पांडुलिपि अध्ययन के क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव। नियुक्ति का प्रकार सीधी संविदा, अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं। क्रम संख्या 6, पद का नाम टाइपिस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर हिंदी, पदों की संख्या 1, मानदेय 30,000। अनिवार्य योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री, कंप्यूटर अनुप्रयोग में 1 वर्षीय प्रमाण पत्र, राज्य, केंद्र सरकार, निकायों, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से किसी संस्थान में संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव और कंप्यूटर पर हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए औसत 5 कुंजी दबाव पर 9000 KDPH के तुल्य। नियुक्ति का प्रकार सीधी संविदा, अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं। क्रम संख्या 7, पद का नाम टाइपिस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर अंग्रेजी, पदों की संख्या 1, मानदेय 30,000। अनिवार्य योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री, कंप्यूटर अनुप्रयोग में 1 वर्षीय प्रमाण पत्र, राज्य, केंद्र सरकार, निकायों, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के किसी संस्थान में संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव और कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए औसत 5 कुंजी दबाव पर 10,500 KDPH के तुल्य। नियुक्ति का प्रकार सीधी संविदा, अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।
2: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
3: प्रसाद क्लिनिक।
4: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
3: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंद स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
5: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
6: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
5: क्यों, क्या हुआ है?
6: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
5: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
6: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
5: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
7: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
8: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
7: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
8: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
7: या अभी कॉल कीजिए 92-99-22-567 या 97-714-86-164।
9: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
10: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
9: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
10: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
9: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
10: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
11: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
9: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और एसडीआरएफ की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेन्द्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेन्द्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण
2: डॉ श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथधानी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
4: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस एंड
5: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
4: फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फॉरेन एक्सचेंज।
0: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
6: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
7: Several key agreements were signed.
8: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
9: Which is again given a boost to our defense partnership with UAE.
0: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
10: अगेंस्ट द असेसमेंट ऑफ
5: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
10: Like metric tons of imports have reached our shores.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गई और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्वभर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमरीका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमानगेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेरजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और एसडीआरएफ की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
9: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
10: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
9: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
10: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
9: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
10: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
9: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
10: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
11: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
12: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
9: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
10: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
10: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
9: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
10: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
13: ठक ठक।
14: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
15: अच्छा मिला ही नहीं।
14: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
15: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
14: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
15: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
16: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
17: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
16: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
17: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
14: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में?
15: क्यों, क्या हुआ है?
14: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
15: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
14: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
15: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
18: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। मंगलपुर पुल में आई दरार को लेकर इंजीनियरों की टीम ने की जांच। बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर फिलहाल लग गया रोक। बकरीद को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, दंडाधिकारियों को किया गया तैनात। फॉर्मर रजिस्ट्री में पूरे बिहार का नंबर वन जिला बना गोपालगंज। और जनजाति के लोगों को सरकारी लाभ देने के लिए चल रहा है अभियान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। मंगलपुर पुल में आई दरार के बाद जिला प्रशासन ने बड़े वाहनों का पुल से आवागमन रोक दिया है। इसको लेकर जिला पदाधिकारी के निवेदन पर बिहार सरकार के बड़े इंजीनियरों की टीम आकर इस पुल का जांच की। बताया जा रहा है कि इंजीनियरों ने जांच के बाद जिला प्रशासन को आश्वस्त किया है कि यह पुल ठीक है, इसमें बहुत बड़ी समस्या नहीं आई है। बड़े वाहनों के आवागमन से बीच में दरार पड़ गया है और उसको जल्द ही रिपेयर कर ठीक कर लिया जाएगा। इसके लिए टेंडर इत्यादि की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। इंजीनियरों की टीम ने जिला प्रशासन को आश्वस्त किया है कि एक महीने में इस पुल को फिर से मरम्मत कर और पूर्ण रूप से ठीक कर दिया जाएगा। जिला पदाधिकारी ने आज प्रेस वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि पुल को लेकर बहुत चिंता की जरूरत नहीं है। बड़े अनुभवी इंजीनियरों ने आकर जांच पड़ताल किया है और उन लोगों ने कहा है कि पुल की स्थिति काफी अच्छी है, लेकिन फिलहाल बड़े वाहनों का आवागमन रोका गया है और जल्द ही इस पुल के निर्माण कार्य को शुरू कर इसे बड़े वाहनों के आने जाने के लिए भी तैयार कर दिया जाएगा। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को अदालत से फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है। अदालत ने अगली सुनवाई को मुकर्रर की है, परंतु तब तक बाहुबली विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। गिरफ्तारी पर अदालत ने रोक लगा दिया है और इस मामले में अब फिर से सुनवाई होगी। बकरीद को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। आज जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने बकरीद की तैयारियों के संदर्भ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा,
19: एक ब्रीफिंग है, हमने जॉइंट ऑर्डर निकाल दिया है 197 जगह पर गोपालगंज सदर के मंडल में और लगभग 103 जगहों पर आपको हथवार मंडल में हम लोगों ने पुलिस बल और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की है और आज हम लोग ब्रीफिंग करेंगे, तो इसकी पूरी तैयारी हम लोग मुकम्मल कर रहे हैं।
18: वहीं पूरे बिहार में फॉर्मर रजिस्ट्री का काम भी जोर शोर से चल रहा है। इस दौरान गोपालगंज जिला पूरे बिहार में नंबर वन स्तर पर है। यहां काफी तीव्र गति से फॉर्मर रजिस्ट्री का कार्य किया जा रहा है। इस उपलब्धि पर आज जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा से पूछा गया तो उन्होंने बताया,
19: 9.53 ऑफ आवर टास्क 99.53 हम लोगों ने कर लिया है। और मैं बताऊं कि इस बीच एक और डेवलपमेंट था कि हम लोग का एग्री फार्मर्स रजिस्ट्रेशन हो रहा था। फार्मर्स रजिस्ट्रेशन के दूसरे दौर जो प्रारंभ हुआ 12 मई से, उसमें हम लोग पूरे राज्य में टॉप कर रहे हैं। इसके लिए आज मुख्य सचिव महोदय ने साधुवाद भी दिया है, परंतु चूंकि 50% 60% उपलब्धता का टारगेट है और हम लोग बॉटम 10 में पहले हुआ करते थे जो अब हम लोग घसक के ऊपर में चले गए हैं, तो इसकी मुख्य वजह यह है कि हमारे यहाँ सीएस खतियान प्रिवेलेंट है। लेकिन हमने स्ट्रेटजी की और आपको भी जानकारी होगी कि हमने 10 तारीख को अम्बेडकर भवन में सभी राजस्व कर्मचारी और किसान सलाहकार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर विकास मित्र ताली मरकज के शिक्षा मित्र सबको बुलाया था, उसे हमने ट्रेनिंग दिया और हमने ये बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि वी हैव टू फोकस ओनली ऑन द जाबंदी क्रिएटेड आफ्टर 2017-18। उसको जैसे ही कैप्चर कीजिएगा, बिकॉज वो जाबंदी हमारी हर तरह से शुद्ध है, उसमें किसी प्रकार के परिभाषण की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब ये कि हम लोग पुरानी जाबंदियों को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो पहले टारगेट अचीव करना है, चूंकि ये हम लोग जब 100% कर लेंगे तो भारत सरकार से हम लोग को 925 करोड़ रुपये प्राप्त हो। एक ऐसा काम है जिसमें राशि प्राप्त होनी है, बाकी काम में राशि खर्च होनी है, तो इसके लिए हम लोग को तहे दिल से लगना होगा, खासकर जबकि हम उनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। ये हमें बताते प्रसन्नता हुई कि हम लोग सेकंड फेज में टॉपर हैं पूरे देश, पूरे राज्य में।
18: बिहार सरकार के निर्देश पर पूरे बिहार में पिछड़ी जाति और जनजाति के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए सरकार ने एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। इसको लेकर गोपालगंज में भी जोर शोर से अभियान चल रहा है। प्रथम चरण के अभियान में कई क्षेत्रों में कैंप लगाकर जनजाति के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने आज प्रेस वार्ता की और इस संदर्भ में बताया,
19: गरिमा उत्सव मनाया गया था, इसके तहत राष्ट्रव्यापी अभियान जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले, यही इसका स्लोगन था, आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ 18/5/26 को 11 बजे समाहरणालय सभा कक्ष में इसके उद्घाटन से किया गया और इसमें 22 विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। यह भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले कार्यक्रम के लिए भारत सरकार द्वारा जिले के उचका गांव प्रखंड का चयन किया गया है। आपको मालूम है उचका गांव हमारा स्पेशल ब्लॉक भी है, जहां दिनांक 20/5/26 से 23/5/26 तक शिविर का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में उचका गांव प्रखंड के 11 पंचायतों के कुल 19 गांवों को जोड़ा गया है। प्रत्येक शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सा कैंप लगाया गया। प्रत्येक चिकित्सा कैंप में सभी विभागों का स्टॉल लगाया गया, जहां जनजाति के लोगों को सरकारी योजनाओं से आच्छादित किया। शिविर में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी 22 योजनाओं के संबंध में जन सुनवाई भी की गई, जिसमें सभी विभाग के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी कर्मी उपस्थित रहकर कुल 400 आवेदनों का प्राप्त किए और जिसमें 376 का निष्पादन किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य योजनाओं के अंतर्गत 125 आवेदन पत्र प्राप्त किए गए, इनमें 101 का निष्पादन किया गया है। मैं डिटेल शेयर कर देता हूं, पंचायत का नाम और गांव का नाम। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमने सुविधाएं जिन मदों में हमारे एप्लीकेशन आए वो किन मद में थे बता दूं। आधार कार्ड बनाने हैं तो 4 आवेदन आए, पीएम उज्ज्वला योजना के 14 आए, आयुष्मान भारत कार्ड के 4 आए और वीडो और इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन को के 22 आवेदन आए, 22 के 22 निष्पादित किए गए। पीएम मातृ वंदना योजना के 2 एप्लीकेशन आए हैं और स्किल सेल टेस्टिंग के 207, कास्ट सर्टिफिकेट के 7/7 डिस्पोजल, स्किल सेल टेस्टिंग के 207 के 207 आवेदन डिस्पोजल और राशन कार्ड के 53 मामले आए, जो कि सभी 53 निष्पादित किए गए। जो मिसाइल सर्टिफिकेट हेतु हमारे पास 8 आवेदन आए, जो 8 के 8 निष्पादित किए गए। इसी प्रकार मनरेगा के 79 एप्लीकेशन आए, जिसे निष्पादित किया गया। अदर कैटेगरीज में इस प्रकार आप देखेगा कि 400 आवेदनों में से 376 का निष्पादन किया गया और अदर कैटेगरीज में भी आप देखें तो बर्थ सर्टिफिकेट के 31 मामले आए, तो सभी निष्पादित कर दिए गए। स्वच्छ भारत मिशन के 26 मामले आए, जो 20 के 20 निष्पादित हुए, 6 पेंडिंग है अभी। स्किल इंडिया मिशन के 2 आवेदन आए जो पेंडिंग है। पीएम आवास योजना के 64 में से 50 मामलों का निष्पादन कर दिया गया है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का 1 मामला है, जिसे मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दे दिया गया है। नल जल कल के तहत 1 योजना आई है। इस प्रकार 125 के अगेंस्ट में हम लोगों ने 101 योजना का उन्होंने निष्पादन कर दिया। इसके अलावा 600 व्यक्तियों की चिकित्सीय जांच भी की। ये चिकित्सीय जांच जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र दही भत्ता में 65 लोगों का चिकित्सीय जांच किया गया और यदि आप बीमारी के बारे में पूछे क्या पाया गया तो वही बता दूं कि एनीमिया के 10 पेशेंट, उसमें 85 हुए, टीबी के 12, बीपी के 35, मधुमेह के 35।
18: इधर ग्रामीण विकास अभिकरण गोपालगंज के द्वारा मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन में लगातार लापरवाही एवं खराब कार्य प्रगति को लेकर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। विजयपुर प्रखंड में कार्यरत कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा जितेंद्र कुमार का अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया। जारी आदेश के अनुसार योजनाओं के विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लगातार असंतोषजनक प्रगति पाई गई थी और विभागीय समीक्षा बैठकों और पत्राचार तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी कई बार निर्देश दिए जाने के बावजूद कार्यों में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ, जिसको लेकर यह कार्रवाई की गई। वहीं बताया जा रहा है कि विद्युत विभाग ने भी ढीले तारों को मानक के अनुरूप दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। शहरी क्षेत्रों में 23 से 24 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 22 से 23 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। अग्निशमन विभाग के द्वारा भी 95 पेट्रोल पंपों एवं 46 गैस एजेंसियों का फायर ऑडिट किया जा चुका है। साथ ही जिले के महत्वपूर्ण स्थलों एवं हॉटस्पॉट क्षेत्रों में अग्निशमन वाहनों की तैनाती भी की गई है। जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में भीषण गर्मी और लू से बचाव को लेकर तथा बाढ़ सुखाड़ के संदर्भ में भी पूर्व तैयारियों को लेकर विस्तृत समीक्षा बैठक की गई। इसमें विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों ने अपने अपने विभागों द्वारा की जा रही तैयारियों एवं अनुपालन की स्थिति से जिला पदाधिकारी को अवगत कराया। बताया गया कि जिले में कुल 28,204 चापाकल हैं, जिनमें से 3,107 योजनाएं संचालित हैं। बंद पड़े चापाकलों की मरम्मति के लिए 14 मरम्मति दलों का गठन किया गया है तथा 3 टैंकर भी क्रियाशील हैं। बेजुबान पशुओं को राहत देने के लिए चापाकलों एवं ट्यूबवेल के पास पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है। जिला पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायतों में क्या करें क्या ना करें क्या व्यापक प्रचार प्रसार कराने का प्रत्येक पंचायत में निर्देश दिया गया है, तो वहीं प्याऊ लगाने का भी निर्देश दिया गया। श्रम विभाग ने पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसियों, सुगर मिलों एवं ईट भट्ठों में पेयजल एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर रहा है। वहीं परिवहन विभाग भी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में पेयजल, ORS एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है। माझा थाना क्षेत्र के सुदा शाह के टोला में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट और चाकू से हमला के मामले में थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में छापेमारी करते हुए बहोरा हत्ता गांव से श्रीराम महतो, परशुराम महतो और कर्णपुरा के जनार्दन महतो को गिरफ्तार किया गया। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही। जिला पदाधिकारी ने भीषण गर्मी को लेकर कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों की छुट्टियों को फिर से 5 दिन और बढ़ाने का निर्णय लिया है। हालांकि इसका अब तक आधिकारिक पत्र जारी नहीं हुआ है, क्योंकि 26 तारीख तक पहले से ही विद्यालय को बंद किया गया है। ऐसे में अब 26 तारीख के बाद 5 दिन और भी स्कूल की छुट्टियों को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि 8वीं कक्षा से ऊपर तक के विद्यालय या संस्थान सुबह 11 बजे तक ही संचालित हो सकेंगे। इधर सिरीपुर थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 2 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक आरोपी वकील राजभर और दूसरा एक महिला है। दोनों को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शिक्षा विभाग नियम विरुद्ध अपने अंदाज में कार्य करने को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में बना रहता है। बताया जा रहा है कि 3 वर्षों से शिक्षा विभाग में लगातार सुधार और अमूल परिवर्तन को लेकर अपर मुख्य सचिव के पाठक, एस सिद्धार्थ और बी विजेंद्र के द्वारा लगातार नित नए फरमान जारी किए गए, परंतु सब ढाक के 3 पात होकर रह गए। शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे अधिकारी गण के विरुद्ध कार्रवाइयां भी हुई, फिर भी अपेक्षाकृत सुधार न हो सका। अभी बताया जा रहा है कि बैकुंठपुर के बीओ पद पर पदासीन आशा कुमारी, जिनके विरुद्ध डीओ गोपालगंज के तत्काल प्रभाव से विभागीय कार्रवाई हेतु गठित प्रपत्र को अपने कार्यालय पत्रांक 643 दिनांक 24/6/25 द्वारा निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना को 1 साल पहले भेजा जा चुका है, परंतु 1 वर्ष से पड़ा फाइल कार्रवाई के जद में धूल फांक रहा है। इस प्रकार गंभीर आरोप की पुष्टि होने के उपरांत भी सुशासन की सरकार में कार्रवाई टाए टाए फीस होकर दिख रही है। हालांकि अब बैकुंठपुर के ही विधायक वर्तमान में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री हैं। ऐसे में अब लोग डीओ पर जारी किए गए विभागीय कार्रवाई के संदर्भ में अब शिक्षा मंत्री से भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कटिया थाना क्षेत्र के खुरहुरिया वार्ड नंबर 11 में पुलिस ने छापेमारी कर आकाश कुमार के घर के दक्षिण दिशा में बने फूस के पलानी के पास आकाश कुमार को पकड़ लिया। इसके पास से तलाशी के दौरान पुलिस को देसी कट्टा मिला है। पूछताछ में आरोपी ने अवैध हथियार के संदर्भ में बताया कि वह उसके बुआ के गाँव के अंकित कुमार राम, जो रूपी बगही थाना कटिया जिला गोपालगंज का निवासी है, उसके साथ मिलकर ये दोनों आरोपी आम जन में दहशत फैलाने के उद्देश्य से इस अवैध हथियार को रखे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर दीपू कुमार और सोनू कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, साथ ही शत्रुघ्न कुशवाहा की भी गिरफ्तारी हुई। ये लोग दर्जी पट्टी थाना कटिया के निवासी हैं। इन अभियुक्तों के द्वारा भी इस अवैध हथियार के संदर्भ में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है। अब इन सभी आरोपियों पर पुलिस आर्म्स एक्ट के तहत विधिक कार्रवाई कर रही है और इनके पुराने आपराधिक इतिहास को लेकर भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में आज बहुत सारे किसान जिला समाहरणालय के परिसर में विरोध प्रदर्शन कर सरकार से अपनी मांग कर रहे थे। इस दौरान अपनी मांग पत्रों को भी जिला पदाधिकारी के माध्यम से सरकार को सौंपा गया, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, बीज बिल वापस करने, किसानों का कर्जा माफ करने, किसान मजदूरों को 60 वर्ष की आयु पर 10,000 मासिक पेंशन देने और सासामुसा चीनी मिल को पेराई सत्र शुरू करने और किसानों मजदूरों के पुराने भुगतान को कराने के लिए मांग किया गया। ऐसे 13 मांगों को लेकर मांग पत्र जिला पदाधिकारी के माध्यम से सरकार को भेजा गया। आज फिर से एक 15 वर्षीय किशोरी मोबाइल टावर पर चढ़ गई और प्रेम प्रसंग में प्रेमी को बुलाने की जिद पर अड़ी हुई थी। इस दौरान भारी संख्या में लोग जुट गए। किसी तरह किशोरी को बहला फुसला कर मोबाइल टावर से उतारा गया और पुलिस अपने साथ ले गई। यह मामला मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के टेक निवास गांव का बताया जा रहा है, जहां गाजी गौरा गांव में 15 वर्षीय किशोरी मोबाइल टावर पर चढ़ गई और प्रेमी को बुलाने की जिद कर रही थी। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मंगलपुर पुल में आई दरार को लेकर इंजीनियरों की टीम ने की जांच। बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर फिलहाल लग गया रोक। बकरीद को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, दंडाधिकारियों को किया गया तैनात। फॉर्मर रजिस्ट्री में पूरे बिहार का नंबर 1 जिला बना गोपालगंज। और जनजाति के लोगों को सरकारी लाभ देने के लिए चल रहा है अभियान। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
20: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
21: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
20: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
21: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
20: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
21: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
20: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
22: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
23: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
24: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
25: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
24: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
26: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
27: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
26: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
21: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखुल रोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456651 या 9797065775।
28: सुनिए सुनिए सुनिए,
29: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
28: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
29: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
28: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
30: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
26: कहाँ पर?
30: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, छवही खास, गोपालगंज,
26: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
30: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
26: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
30: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छ वही खास, NH 27, गोपालगंज, कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835556965।
0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
6: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
5: अरे, ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
6: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
5: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
6: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया, दिल्ली जाके पैसा

0: कोयले से क्या फायदा?
1: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहां सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527888291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527888291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम स्टार्ट होने जा रहा है। एसएमएस फरमाइश, आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। समय हो रहे 9:38, और अभी काफ़ी प्यारे गाने सुन रहे थे हम सभी, और फिर गाने को एंजॉय करते हुए कार्यक्रम को स्टार्ट हम कर रहे हैं। और कुछ मैसेज हमारे पास रिसीव हो चुके हैं, तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे। और कुछ से तकनीकी व्यवधान आ गई थी, जिसके कारण कार्यक्रम में थोड़ी देरी हो गई है, लेकिन कार्यक्रम को स्टार्ट कर दिया गया है। और यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं आप लोग, तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करेंगे लो आप लोग, तो पुराने गाने का फरमाइश करेंगे लो। यहाँ पे कुछ मैसेज, और पहला मैसेज लिखा गया है कि आई एम आराध्या फ्रॉम गोपालगंज से, और सॉन्ग की फरमाइश करती हैं, प्यार होता है दीवाना सनम। तो इनके गाने के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और शुरू करेंगे। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप, मैं सोनी गोपालगंज से, और मुझे सॉन्ग सुनना है। तो बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है कि मुझे भी सॉन्ग सुनना है, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इस मैसेज को करते हैं सिकंदर जी काकड़कुंड से। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, और इस मैसेज को पहुँचाती है निर्मला कुमारी जादवपुर से, और इनके तरफ से गाने का फरमाइश किया गया है, लेकिन गाने समझ नहीं आ रहा है कि कौन से गाने के फरमाइश की हैं। सबसे पहला मैसेज इन्हीं का पहुंचा हुआ था, लेकिन क्या है कि जाए गाने के समझ ना होने पर इनकी फरमाइश को रोका गया है। और आराध्या जी के गाने के साथ इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया जाएगा। तो आप यदि सुन रही हैं, तो बिल्कुल अपने मैसेज को रिप्लेस करें और गाने को सुधारते हुए फिर से सेंड करें। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इस मैसेज को करती हैं निशा कोनवा से, और बन रहे हमारे साथ, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और गाने के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सुनते हैं

रेडियो रेम सी 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना कि जब भी गाने को फरमाइश करना है तो पुराने या 90s के गाने को फरमाइश करना है, ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके, और ऐसा ना हो कि आप मैसेज करें और आप नए गाने को लेकर आपकी फरमाइश हम पूरा ना कर पाए। तो आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे गाने की फरमाइश करती हैं सोनी सरिया वार्ड नंबर 1 गोपालगंज से, और गाने का बोल देती हैं अकेली न बाजारे जाया कर नज़र लग जाएगी। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है इनके तरफ से, लिखती हैं वेरी वेरी नाइस सॉन्ग, सॉन्ग मेरा सुना दीजिए। तो बिल्कुल आपको ये सॉन्ग सुनाएंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सुनो भैया, कैसे हैं आप? मैं भी आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ, और रोहित देहरादून से, अभी मैं हरिद्वार में हूँ। बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और बने रहे हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं, अब गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं अगले फरमाइश। हम सभी इंजॉय करते हैं रेडियो रेमछिम 94.4 FM पे, अकेली ना बाजार जाया करो।

कमल के गाने सुन रहे थे अभी हम सभी रेडियो रेमछेम 90.4 एफएम पे। अकेली बाजार न जाया कर, नज़र लग जाएगी, उदित नारायण जी की आवाज़ में। और यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं, आप अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो अभी टेक्स्ट मैसेज करें हमारे नंबर 72 77 16 65 96 पे। और ध्यान रखेंगे कि 90s के गाने या ओल्डीज़ गोल्ड पुराने गाने की फरमाइश करेंगे, ताकि आपकी फरमाइश हम पूरी कर सकें। आगे बढ़ेंगे और आगे कई अगली गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है, और अगली गाने की फरमाइश हम पूरी करेंगे निर्मला जी की। और इनके तरफ से गाने की फरमाइश किया गया है डगर है मुश्किल, और ये शायद दोहे टाइप के गाने हैं। तो चलिए इनके गाने को हम प्ले करते हैं और सुनते हैं इनके पसंद के गाने और इन्जॉय करते हैं हम सभी। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप भी अभी मैसेज करें हमारे नंबर पर, और हम अभी आपकी फरमाइश को प्ले करेंगे और इन्जॉय कर पाएंगे आप। फ़िलहाल गाने के साथ इन्जॉय किया जाए।

स्टेडियम जिम 94.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का और यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे लिखा गया है कि हेलो हाय नमस्ते भैया, आप कैसे हैं और मेरी तरफ से ऑल लिसनर को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोल लीजिएगा और मुझे भी एक सॉन्ग सुनना है तो बिल्कुल सुनाएंगे। फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और इस मैसेज को करती है रोशनी मानिकपुर से और बने रहे हमारे साथ, आपकी फरमाइश हम पूरी कर पाएंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि रात को सब अपनी अपनी मोहब्बत से बात करके सोते हैं, एक और एक हम हैं जो अपनी मोहब्बत को याद करके सोते हैं। गुलाम हुसैन वेस्ट मुंबई से और मुझे गाना सुनना है कहते हैं और गाने का बोल देते हैं हमको आवाज़ दे तू कहाँ है सनम। मशरूम कौसर जुनेद कमरान भाई अरमान भाई नौसाद भाई जगदीप आयुष प्रिंस लक्की समीर शाकिब रुबीना ब्यूटी हिना गुड़िया साजदा गुलशन शबीना यास्मीन सलेहा आफरीन अरीशा सुनो भैया आपको भी। तो चलिए आपके गाने हम प्ले करेंगे और इंजॉय करेंगे हम सभी आपके गाने के साथ रेडियो 94.4 एफएम पे।

रेडियो रेम छीम 94.4 FM पे इस प्यारे से सॉन्ग को सुन रहे हैं आप सब और इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सुपर ब्यूटीफुल सॉन्ग, थैंक्स सुनो भैया। चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रेम छीम सुनने के लिए। और आगे गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है रोशनी की तरफ से, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश किया गया है छोड़ के ना जाओ पिया और माँ तुझे सलाम मूवी से। और गाने को डेडिकेट करती हैं मेरी सिस्टर प्रियांशी, पूजा, साक्षी, सोनाक्षी एंड ऑल रेडियो फ्रेंड्स को। तो इसलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो एम छम 94.4 FM पे।

94.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है SMS फरमाइश का। और यहाँ पे समय देखे तो समय की समाप्ति का समय हो गया है, तो इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करेंगे और अंतिम गाने प्ले करेंगे। और अंतिम गाने की फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है और मुकेश जी किए हुए हैं और पुरानी चौक से, और गाने की फरमाइश करते हैं, दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके। और डेडिकेट करते हैं ऑल रेडियो फ्रेंड्स को, और कहते हैं कि मैं पहली बार मैसेज किया हूँ, तो चलिए आपकी पहली बार ही गाने की फरमाइश हम पूरी कर पा रहे हैं, ये अच्छी बात है। और आप इंजॉय करें अपने गानों के साथ, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम से हम निकलेंगे। और फिर जो भी सुरतागढ़ छूट जा रहे हैं, नाराज नहीं होना है, समय होते तो बिल्कुल आप सबकी फरमाइश हम पूरी करते हैं। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, सुनते रहे रेडियो 94.4 FM जो हमेशा कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: All right.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचो सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: Fertilizer and foreign exchange.
0: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देशभर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu today conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, two were conferred with Padma Vibhushan, six with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been conferred. Honored with the Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajan were also honored with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were also present on the occasion. In Jammu and Kashmir, all tourists stranded in cabins of the Gulmarg Gondola ropeway were rescued safely after a major technical snag halted operations at the famous tourist resort. Officials today said more than 300 tourists were trapped inside 65 cabins of the cable car, some hanging nearly 500 feet above the ground, triggering panic among tourists, including women and children. Emergency evacuation protocols were activated immediately. A massive seven-hour rescue operations was launched jointly by teams of NDRF, SDRF, Jammu and Kashmir Police, Army's Chinar Corps and local administration. All passengers were brought to safety without any injuries. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha said he monitored the rescue operation continuously and directed senior officials, including the DGP, to oversee rescue efforts on the ground. Chief Minister Umar Abdullah announced a probe into the malfunction and said actions would be taken if any lapses were found. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has launched a set of strategic portals and initiatives aimed at strengthening the MSME ecosystem, enhancing last-mile credit delivery and accelerating the modernization of rural industries. Speaking at an event in Mumbai to mark the 37th anniversary of the Small Industries Development Bank of India, SIDBI today, Mrs. Sitharaman called for increased focus on the three Fs, fuel, fertilizer and forex, amid the ongoing West Asia crisis, while asserting that the Indian economy remains resilient.
1: The West Asia crisis not only is a diplomatic or a geopolitical issue. For businesses and common people, it can mean higher fuel cost, delayed cargo, costlier shipping, shortage of inputs, pressure on working capital and uncertainty in export orders. All of them coming together, it's a big challenge, not just for India, for many other countries. We must also recognize that India's domestic economic situation remains positive and resilient even today.
3: External Affairs Minister Dr. Ajay Shankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi tomorrow. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and Secretary of the State of United States Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on recent development in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. Home Minister Amit Shah will visit India's border region over the next few days and hold security-related meetings. Sources said he will reach Bikaner, Rajasthan tonight and will visit the BSF's Sancho border outpost in the morning tomorrow, where he will interact with the security forces and inaugurate welfare schemes for them. In the afternoon, he will review the security situation in the border region of Bikaner. Officials said the Home Minister and the Rajasthan government, BSF officials along with the district collectors and superintendent of police from five borders district will attend the meeting. At Asian Under-23 Wrestling Championships in Da Nang, Vietnam, Indian wrestlers put up a dominant show, securing two gold medal today. And that's the end of the news bulletin.
4: रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: प्रेजेंटेड बाय आदिशक्ति फिल्म्स।
2: बोलो कौन था

0: दोबारा नहाने गई थी?
1: हाँ बिल्कुल गई थी।
0: कल तेरे साड़ी पे जूस गिरा था और तुम दोबारा नहाने गई थी। कोई खिड़की से किचन में झांक रहा था, बोलो कौन था?
1: अरे

0: बोलो कौन था?
1: पता नहीं।
0: कौन था?
1: नहीं पता।
0: तेरा भाई था?
1: नहीं।
0: तेरा दोस्त था?
1: नहीं।
0: तेरा यार था?
1: नहीं।
0: तेरा प्यार था?
1: या नो।
0: तेरा भाई, तेरा दोस्त, तेरा यार, तेरा प्यार, बोलो कौन था?
1: पागल हो।

0: बोलो कौन था?
1: अरे मेरे बाप।
0: तेरा कजन था?
1: ना।
0: तेरा सजन था?
1: नो नो।
0: तेरा ददन था?
1: ये कौन है?
0: कि तेरा मदन था?
1: ये कौन है?
0: तेरा कजन, तेरा सजन, तेरा मदन, तेरा ददन, बोलो कौन था?
2: गर्दन उठाड़ो,
0: बोल कौन था?
1: चुप, मैं भी चिल्लाऊं क्या? यार प्यार पे भरोसा करो।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: हेलो।
1: हाँ हेलो।
0: हाँ सोना।
1: हाँ कौन?
0: आवन तनी कोना।
1: अरे कौन बोल रहे हो?
0: अरे हम तार पूछू बेबी, नंबर भी डिलीट कर दियो क्या?
1: अरे नहीं नहीं
0: भाई, आवन डीजे बजाता बस तार आवाज सुनाते नहीं के।
1: बस दो मिनट रुक जाना।
0: हाँ हेलो।
1: हाँ हेलो।
0: हेलो।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: ओकरे चक्कर में 20 गो अगुआ फेर देनी रे दादा।
1: बुलाती है मगर जाने का नहीं।
2: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल कहे सुनो दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजे सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस के कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश को।
1: हेलो,
2: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो।
1: नमस्कार, मैम धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से।
2: ठीक, क्या हाल चाल है धनेश जी?
1: ठीक है जी, आप कैसे हैं?
2: हम भी बढ़िया हैं। क्या हो रही थी?
1: बस बच्चे को लेने जाना है स्कूल, तो वही छत पे आपके पास कॉल लगा रहे हैं। आज बहुत परेशानी हो गई।
2: तो गाना कौन सा सुनना है आज आपको?
1: आज तो हमें सुनना है आशा भोसले का निधन हो गया है ना, तो उन्हें क्या सुहाने सुनाना
2: जी।
1: सुहाने कोई भी वॉल्यूम सुना देना। अच्छा सर
2: जी, और सुनवाना भी है?
1: माना है वही साले भैया गाड़ी सब है और जितने सुनने वाले सुन लेंगे। और मौसम कैसा है उधर?
2: मौसम तो काफी खतरनाक हुआ है, धूप निकला हुआ है,
1: इधर भी हवा चल रहा है मैम। और एक बात बताइए, पहला कॉल उस दिन का था, आप दो दिन में नहीं बज पाया,
2: आपका गाना नहीं चला है अभी?
1: दो दिन में नहीं चल पाया पहला,
2: हो सकता है। अच्छा, शुक्रवार वाला में?
1: हाँ हाँ,
2: तो तीन कॉल बचे हुए हैं जो कि आज चलेंगे उसमें का।
1: तो वो वाला चलाइएगा कि ये वाला चलाइएगा? आज ये चलाना जरूरी है, आज उनका श्रद्धांजलि हो जाएगी ना।
2: चलेंगे कि ये चलाएंगे, अगर आज नहीं चला तो कल ये वाला चल जाएगा, वो वाला तो चलेगा ही आज।
1: तो लास्ट में ये भी चला देना,
2: कोशिश करेंगे
1: आज श्रद्धांजलि हो जाएगी ना।
2: बिल्कुल, हाँ हाँ,
1: तो इससे थोड़ा केयर कीजिएगा, क्योंकि इसीलिए आज ज्यादा करके इसीलिए मिलाया है, क्योंकि हम ओल्ड गाने सुनते हैं लेकिन हिंदी गाने तो सारे सब जगह मिल जाते है, लेकिन रिमझिम से सुनने के लिए भोजपुरी भी करते हैं। इसलिए मैं तो हिंदी भी सुनता हूँ, गजल पूर्वी भजन निर्गुण सब सुनता हूँ, ऐसी बात नहीं, सब सुनता हूँ, लेकिन वही है रिमझिम से सुनने के लिए हमें भोजपुरी ही सुनना है, लेकिन आज उनके श्रद्धांजलि में सुनना है ये।
2: चलिए ठीक है, कोशिश करेंगे।
1: लास्ट में इसका कोशिश कीजिएगा कि लास्ट तक आज चला देने का।
2: जी जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी सब बढ़िया।
1: चलिए और लिसनर को
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: Thank you.

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो,
2: स्वागत है आपका रेडियो 94.4 FM में।
1: नमस्ते मैम।
2: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
1: मैम मैं बोल रहा हूँ संजय कुमार
2: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं संजय जी?
1: भीखमपुर लड़ौली पंचायत
2: जी। क्या हालचाल है आपका?
1: मेरा हालचाल बढ़िया है, अपना सुनाइए।
2: हमारा भी बढ़िया है। क्या हो रहा था?
1: अभी तो गांव के कटाई चल रहा है, गांव में कोई काम कर रहे हैं
2: जी।
1: मम्मी पापा को खेत में नहीं जाने देते हैं, खुद से मेहनत करते हैं। मैम मुझे गाना सुनना है आशा भोसले जी का, सबसे जो फेवरेट गाना है उनका।
2: अच्छा,
1: हाँ जी, आप चुन के बजाइएगा। उनका ध्यान हो गया ना
2: जी?
1: हाँ जी।
2: तो गाना सुनाना भी है किसी को?
1: हाँ जी, आपको, हमारे पूरे गोपालगंज जिले के जितने निवासी हैं सबको
2: जी। तो प्ले करे गाना आपके?
1: हाँ जी
2: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो माय चॉइस में कॉल किया।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: सलाम मैम।
1: वालेकुम सलाम, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: अशफाक आलम बरारी। ओके
1: जी, कैसे हैं अशफाक जी?
0: ठीक है, आप कैसे हैं?
1: हम भी बढ़िया हैं। क्या हो रही थी?
0: बैठे हैं मैम, उस दिन फोन किए थे, लाइन पर रहिए करते हैं तो नहीं बेहद बहु। जी, अपन पसंद का नाम एक गाना सुना दीजिए।
1: जी बिल्कुल सुना देंगे, बता दीजिए कौन सा गाना पसंद है आपको।
0: अपन मन से
1: नहीं, आप बताइए, आप इतना मेहनत करके कॉल किए हैं तो बताइए आपको कौन सा गाना सुनना है।
0: एक मिनट,
2: द पर्सन यू आर स्पीकिंग
0: शाहरुख खान के
1: फिल्म से कोई भी गाना?
0: हाँ।
1: और सुनवाना भी है?
0: हाँ, सब कोई का।
1: जी तो प्ले करें गाना आपकी।
0: जी मैम।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हेलो माय चॉइस में कॉल किए।
0: ठीक है।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up.
2: Hello.
1: Pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो,
2: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: जी नमस्ते।
2: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: गणेश।
2: जी कैसे हैं गणेश जी?
1: बढ़िया हूँ, आप बताइए।
2: हम भी बढ़िया हैं। तो क्या हो रहा था अभी?
1: क्या हो रहा है, फोन लगा रहे हैं उस समय से। आप बिजी हो रहे हैं तो फोन कहाँ से लगेगा।
2: अच्छा अच्छा, क्या करें,
1: मेरे भी टाइम नहीं मिल रहा है ना थोड़ा। आजकल टाइम नहीं मिल रहा है मेरे को।
2: अभी मिल गया है ना टाइम?
1: हाँ, तो उस समय से घर आ रहे हैं 10-15 मिनट से, तब तो लगा है।
2: लग गया है ना?
1: लग गया है। और सब बताइए?
2: सब बढ़िया है, आप बताइए।
1: मेरा भी बढ़िया है आपके दिया से।
2: तो गाना कौन सा सुनना है?
1: गाना हिंदी बजा दीजिए, शादी वाला कोई हिंदी गाना।
2: शादी वाला और सुनवाना भी है
1: आपको? सबसे पहले आपको पूरा रेडियो झूम लो को सुनवाना है, डीबीएम को सुनवाना है, स्पेशल में डायरेक्टर सर को सुनवाना है।
2: चलिए तो प्ले करेगा ना?
1: जी
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल किया।

0: सीताराम
1: जी। सीताराम बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम की 90.4 FM में।
0: जी बिमलेश कुमार शर्मा बिमला से बोल रहा हूँ।
1: क्या हाल चाल है बिमलेश जी?
0: ठीक है, अपना बताइए।
1: मेरा भी बढ़िया है जी। तो घर परिवार में सब कैसे हैं आपके?
0: जी सब कोई अच्छा है,
1: बढ़िया है। गाना कौन सा सुनना आज आपको?
0: बुधवार को रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था क्या?
1: नहीं बुधवार को नहीं हुआ था, तभी तो कॉल नहीं लगा था
0: जी।
1: तो
0: गाना सुनना है।

0: कौन कहते हैं? एक साथ सुनना है
1: और सुनवाना भी है
0: जी। सुनवाना है कोरिया से मनोज शर्मा जी को और छोटू सुनील जी को और निर्माला जी को, करखा जी को और सतु भैया को और विपिन भैया को और सुन जी को, राजू जी को, शंभू जी को, रामत्री जी को, इन सब लोगों का साथ सुनना है और आपको भी सुनाना है।
1: चलिए तो प्ले करेगा ना
0: ये लोग रुमझिम सुनने वाले हैं सब लोग के साथ जी।
1: ओके चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: सीताराम सीताराम।

0: प्रिंसिपल। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone.

0: अस्सलाम
1: वालेकुम। सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
0: क्या हाल है मैम? मैं अहमद अली, शरियाबाद नंबर 1 से।
1: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: हम तो अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बहुत दिन हो गया आपसे बात करके।
1: दिन तो काफी हो गए।
0: मैसेज के जरिए ही बात हो रही है, गाना बजा था मेरा बॉइस एक दिन। ऐसे कॉल लगाता हूँ, भोजपुरी एक्सप्रेस में परेशान हो गया था मैं लगा के नहीं लगा।
1: काफी भीड़ चल रही है आजकल सारे शो में।
0: आजकल लड़ाई लगी हुई है ना, इसलिए ट्रेन सब भीड़ जा रही है।
1: लड़ाई भी लगी हुई है और ऐसे भी आजकल,
0: इसीलिए आपका एक्सपीरियंस भी हाउसफुल चल रहा है।
1: उसमें भी शिकायत आ रही है कि
0: मैम छोड़िए, शिकायत वाले लोग शिकायत ही करते रहेंगे, ठीक है? ये नहीं सोचते हैं कि कितना लंबा लाइन रहता है आपका गाना। मान लीजिए थोड़ा एक मिनट का
1: श्रोता अगर जुड़ गया तो
0: वही ना, ये सब समझते नहीं है, अपना अपना सब देखने, ये नहीं दूसरे के बारे में कोई सोचता नहीं।
1: सबको अपना ही चाहिए, बस मेरा हो जाना चाहिए।
0: अरे मैम मेरा तो बजता है, नहीं बजते मैं तो आपसे पूछता भी हूँ कि मैम बजेगा क्या, नहीं तो मेरा कोई वो नहीं, सुनते रहता हूँ तो है। अपना गाना बजे या किसी का भी बजे, गाना सुनने को मिलता
1: है। होता
0: है
1: कि अगर आदमी सोच के रखे कि आज ये गाना सुनना है और कोई और उसी गाने की फरमाइश कर दे,
0: फरमाइश है तो हो जाता है ना,
1: हो गया।
0: सही बात है, कभी नाराज ही नहीं होते हैं मैम, आज नहीं बजेगा।
1: सबकी अपनी अपनी समस्या है, सबको समझना चाहिए।
0: आज जुम्मा था इसलिए सबको जुम्मा मुबारक मेरे तरफ से। नाश्ता पानी हुआ है ना?
1: जी जी, नाश्ता पानी हो गया, मेरा खाना हो गया है।
0: खाना हो गया तो इसलिए गाड़ी भी तो बहुत देर तक रहेगी ना, 3:30 बजे तक
1: 4 बजे तक
0: 4 बजे तक। बताइए मैम कुछ खाना वाना लेके आती हैं कि लेके आए हम?
1: नहीं नहीं, लंच लेके आते हैं।
0: नहीं तो मेरा दूर नहीं है आपके, ये अपना वो तो एक ही में है, वार्ड नंबर 1 ही में है आपका रेडियो।
1: जो मेन बड़ी वाली बाजार है उधर से ही रास्ता जाता है ना? वही उधर ही है ना 1 नंबर?
0: नहीं नहीं, ये अपना सरस्वती टाकिल है ना।
1: अच्छा, इधर पीछे वाला?
0: हाँ, ये आपके आपके स्टेशन के सामने जो चौरा है बगीचा।
1: अच्छा अच्छा, ये सारे उधर बाजार के पीछे जो हनुमानगढ़ी पड़ता है?
0: नहीं नहीं, वो सब वार्ड नंबर 4 है।
1: अच्छा, वार्ड नंबर 4 है।
0: अपना ये सरस्वती टाकिल, ये अपना बुलेट एजेंसी है ना, पेट्रोल पंप बुलेट एजेंसी के पीछे सब वार्ड नंबर 1।
1: मतलब काफी दूर में सारे फैला हुआ है,
0: पूरा टाउन सारिया ही है।
1: अच्छा, पूरा उधर पीछे वाला साइड पूरा सारिया बोलता है, वार्ड नंबर से बटा हुआ है
0: सब वार्ड नंबर 12, 13, 17, 18 रहते हैं। आपका तो हमारे देखने से वार्ड नंबर 1 नहीं, भीतभैरवा पड़ता होगा।
1: अब पता नहीं, भीतभैरवा तो यही है, भीतभैरवा जो भीतभैरवा में ही है, समझ जाइए।
0: आपका जो रोड उस पार है तो भीतभैरवा में ही है। रोड इस तरफ आपके सामने देखिएगा ना, ये जो अपना सर्विसिंग और गैरेज वरेज है, ये डॉक्टर है बच्चे का, राम प्रवेश, ये सब वार्ड नंबर 1 में है।
1: अच्छा, ये लोग वार्ड नंबर 1 में है।
0: जी जी मैम,
1: तो ज्यादा दूर नहीं है आप?
0: नहीं, मैं तो बोलिए उठ के आ जाएंगे खाना पानी लेके, भूख लगा जिस दिन आप।
1: जी जी, जिस दिन खाना लेके नहीं आएंगे उस दिन जरूर बताएंगे आपको, फिलहाल आज लेके आए हैं।
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कभी भी कोई
1: याद करेंगे।
0: ये एक बार याद कर लीजिए, बंदा हाजिर हो जाए
1: तो बता दीजिए। गाना कौन सा सुनना आज आपको?
0: गाना हमको सुनवा दीजिए, जब से दिल दिया है तुमको चैन न पाया रे, रब्बा रब्बा रब्बा मेरे चैन न आया रे।
1: ये और सुनवाना भी है?
0: जी जी मैम, सबसे पहले तो आपको और अपने वाइफ अस्तरी को और कमरान भाई को, राघव जी को, दिलीप भाई को। राघव जी जुड़ रहे हैं कि ना? अभी तक गुस्से में है?
1: अभी तक गुस्से में ही है।
0: अरे मैम तो मना लीजिए, काहे इतना गुस्सा की है?
1: मेरे से ही गुस्सा है, अब मैं कैसे मनाऊं?
0: आपसे गुस्सा है तो आप ही न मनाएंगे, कौन मनाएगा?
1: वो समझ ही नहीं रहे।
0: अच्छा अच्छा, रुकिए कभी जाते हैं उधर जाएंगे, मेरे को काम है।
1: इतना बार देखते हैं कि वो सुन रहे हैं लेकिन जुड़ते नहीं है, शो में नहीं आए,
0: ड्रामा ड्रामा कर रहे हैं। अगर राघव जी आप सुन रहे हैं रेडियो तो मान जाइए प्लीज, ठीक है? ऐसे छोटी छोटी बात के लिए आप लोग नाराज मत होइए,
1: लाइव आइए मत होइए।
0: अगर मेरा आवाज उनके पास जाएगी तो राघव जी मान जाइए प्लीज, है? चलिए कोई बात नहीं है।
1: जी जी,
0: आप गाना सुना दीजिए सबको, अक्तरी को, राघव जी को, कमरान रशीद को, दिलीप भाई को, और जो भी रेडियो इंजन जहाँ से भी सुन रहे हैं सभी को।
1: चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना। जी जी,
0: थैंक यू मैम,
1: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, माय चॉइस में कॉल किया।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
1: Hello, hello, hello, hello, hello.
3: Bhage bhage phirte hain.
4: Break ke baad aap sabhi ka ek bar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. Aap sabhi

0: लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: यूसुफ सिपाही ढाला से बोल रहा हूँ
2: जी। कैसे हैं मोहम्मद यूसुफ जी?
1: बहुत बढ़िया है, अपना सुनाइए, आप कैसे हैं?
2: मैं भी बढ़िया हूँ। तो क्या हो रहा था?
1: मैं दवाई के दुकान पर है।
2: तो क्या कर रहे थे अभी?
1: अभी क्या कर रहे थे, अभी दवाई वगैरह दे रहे हैं।
2: अच्छा अच्छा, गाना कौन सा सुनना आ जाओ?
1: वो सुनना है मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी
2: जी। और सुनवाना भी है?
1: सुनवाना है अपना मेडिकल के सभी स्टाफ और खास करके फौजी जो कन्हैया है, गुमनिया के रिटायर कर चुके हैं, उनको भी सुनवाना है। पिछले साल आपके पिछले बुधवार को आपके रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी?
2: जी जी, नहीं हुई थी।
1: हाँ हाँ, तो सुनवा दीजिएगा।
2: जी बिल्कुल सुनवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो माय चॉइस में कॉल किया।

0: हेलो मैम, नमस्ते।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी मैम, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैहर एमपी से।
1: जी कैसे हैं?
0: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे मैम इंतजार में फोन का रिकॉर्डिंग चालू हो जाए तो फिर करवा दें और फिर काम पे लग जाए मैम, तो अभी तो फ्री बैठे थे। जी मैम।
1: जी तो गाना कौन सा सुनना है आज आपको?
0: जी आज हमको सुनवा दीजिएगा, गाने की बोल है जब जब प्यार में पहरा हुआ।
1: जी और सुनाना भी है
0: और सुनवाएंगे कितने रेडियो जिन दोस्त लोग सुनते हैं सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं मैम।
1: ओके चलिए, तो प्ले करें गाना आप ही।
0: जी ओके मैम।
1: ओके बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: जी नमस्ते, नमस्कार, प्यार भरा सलाम डियर सोनी सिस्टर, कैसी हैं?
3: चार FM में
2: जी, बहुत अच्छा है आपका सुना है। मैं तो ऑलवेज मस्त बिंदास झकास रहता हूँ।
3: जी जी, इरफान बात कर रहे हैं क्या?
2: अपना बताइए सोनी जी। मैं रेडियो फैन मोहम्मद इरफान फ्रॉम दुबई से।
3: जी जी, क्या हाल चाल है?
2: चलिए हाल चाल ठीक है। पहचानने के लिए दिल से शुक्रिया। प्लस 151 रुपया का पुरस्कार मिलता है आपको।
3: अच्छा अच्छा, तो कब मिलता है पुरस्कार ये?
2: बस जब पेटीएम नंबर दीजिए अभी सेंड कर देंगे।
3: अच्छा अच्छा, नहीं वैसे नहीं चाहिए।
2: अच्छा चलिए कोई बात नहीं, उपहार आपको मिलने वाला है, घबराइए मत।
3: जी जी, इंतजार है मुझे भी।
2: और सब बताइए, ये मौसम कैसा हो रहा है अपने यहाँ गोपालगंज का?
3: इधर तो धूप का प्रकोप पूरा फैला हुआ है
2: जी। यहाँ भी मौसम ठीक है दुबई में, अभी बारिश वरुस हुआ था ना बीच में, तो थोड़ा भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे भीषण गर्मी पड़ती है 8 महीने तक।
3: हाँ, वहाँ तो पड़ती ही है, वहाँ का तो बात ही
2: है। हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभी थोड़ा सा टर्मिनेशन के लिए, मशीनरी काम के लिए थोड़ा जाना पड़ता है आउटसाइड में, नहीं तो ऑफिस में काम है हम लोग का।
3: तो फिर तो ऑफिस में तो पूरा एसी लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
2: हाँ वो तो हम, मेरा ही काम है सब, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग का पूरा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में ही हेड हूँ यहाँ पर।
3: चलिए अच्छा,
2: सब ठीक है ना?
3: जी जी, सब बढ़िया है।
2: तो एक लाइन है, जरा गौर फरमाइएगा। तेरी आरजू में हमने बहारों को देखा, तेरी आरजू को हमने बहारों को देखा, तेरे ख्यालों को हमने सितारों में देखा, पसंद था आपका साथ रेडियो रिमझिम पे, वरना इन आंखों ने तो हजारों को देखा।
3: तो गाना कौन सा सुनना है ये भी बता दीजिए।
2: गाना सुनवा दीजिए एक हिंदुस्तानी मूवी से, मोहब्बत को हम छोड़ दें, मोहब्बत हमें छोड़ती नहीं, पता ना क्या हो गया है।
3: जी,
2: और सुनवाना चाहता है सगुफ्ता फिरदौस को, रुखसार खातून, सबाना खातून, और आपको और जितने भी प्यारे प्यारे लिसनर हैं, कमरान भाई, समीर भाई, सबको सुनवा दीजिएगा।
3: जी बिल्कुल, चलिए ठीक है।
2: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
3: मुझे भी लगा, बहुत बहुत धन्यवाद हेलो माय चॉइस में कॉल किए।
2: ओके, मस्ट वेलकम एट दुबई।
3: जी जी, अभी इतना जल्दी तो वेलकम नहीं करिए दुबई में।
2: अच्छा, चलिए ठीक है
3: ठीक है।
2: ओके, थैंक यू।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं hello,
5: hello, hello, hello, hello, hello.
4: भागे भागे फिरते हैं।
6: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सब इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो केसरी 90.2 FM में।
8: नमस्कार मैडम।
7: नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
8: मैं रमेश चौहान बोल रहा हूँ, जाजपुर बरहा से।
7: जी,
8: बुधवार को क्या रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था?
7: बुधवार
8: रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था?
7: नहीं, बुधवार को रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी।
8: तभी तो

0: क्योंकि आधा घंटा में लगाया था कॉल लगाने। तो एक मैं वो गाना सुनना था
1: जी। बिल्कुल सुनाएंगे, बता दीजिए गाने का नाम।
0: वैसे तो फिल्म का नाम याद नहीं है, मगर गाना का नाम याद है। और आदमी को बीबी को गुलाम होना चाहिए
1: जी। और सुनवाना भी है।
0: और सुनवाना क्या है, सब अपने घर के लोग हैं, मेरे वाइफ है, मेरी बच्ची है मुस्कान कुमारी, काजल कुमारी और एक अरुण कुमार हरी लाल
1: जी। तो प्ले करे गाना आपकी, प्ले करे गाना आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर

0: हमारी शादी की सालगिरह थी।
1: थी?
0: तुम्हें घर जल्दी आना था।
1: आना था?
0: हम दोनों को बाहर जाना था।
1: जाना था?
0: किसी बड़े होटल में खाना खाना था।
1: खाना खाना था?
0: अब कौन बनाएगा खाना?
1: खाना मेरी जाना, खाना पकाएगा तुम्हारा दीवाना। नो टेंशन, एक्शन, अटेंशन, राइट टर्न टू

अरे बड़ी डोंट वरी, हम भी अकेले हैं। नाउ मेकिंग वेरी वेरी गुड डिलीशियस डिस्को फूड।

0: नमस्ते मैम। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: सीता नाइट रोनपुर से
0: जी। कैसे हैं सीता जी?
1: अच्छी हूँ, आपने बताइए आप कैसे?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या हो रहा था?
1: कुछ नहीं, कॉल लगा रही थी। एक बार कॉल की थी तो आपकी भी नहीं की।
0: आपका कॉल नहीं आया था, मिस कॉल आया था, इसीलिए
1: अभी कॉल की थी तो आप नहीं उठाई।
0: मिस कॉल आया था किसी का, पता नहीं आपका था कि किसका था, मिस कॉल था इसीलिए नहीं रिसीव किए।
1: खाना पीना हो गया?
0: हाँ जी हो गया है। आपका हो गया है?
1: हाँ हो गया है।
0: तो गाना कौन सा सुनना है आज आपको?
1: प्रमोद प्रेमी का कोई भी भक्ति सॉन्ग सुना दीजिएगा।
0: प्रमोद प्रेमी का कोई भी भक्ति गाना और सुनवाना भी है
1: आपको? और रेडियो रेडियो सुना सभी श्रोताओं को।
0: ओके चलिए, तो प्ले करें गाना।
1: यस मैम।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो माय चॉइस में कॉल की।
1: थैंक यू मैम।

0: तो दोस्तों, आप लोग अभी कार्यक्रम हेलो माय चॉइस को मेरे साथ यानी आरजे सोनी के साथ सुन रहे थे। अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो मुझे दीजिए अब जाने की इजाज़त और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो रिंजन 90.4 FM। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: एह उमर के उमंग में, सनहिया के रंग में, आ तू दूसरा के संग में जाता रह। अतने अफसोस रही कि तू हमार ना भइल।
2: चुप रह, हमके माफ कर दो।

0: जान, अपन ख्याल रखिया।
1: जान, अकेले खुश रहिया।
2: तू जो है। आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो,

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: भाई

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: देवांश जी मथुरा से।
1: महाराज
0: जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री जी की अनन्य कृपा से ब्रज धाम में जन्म मिला। महाराज जी इन 18 सालों में धाम की ऐसी अपार महिमा पता ना होने के कारण किसी भी तरह का साधन नहीं बन पाया। प्रबल माया में फंसकर ये अधम बाहर पढ़ने चला गया, पर श्री जी की कृपा हुई। पिछले 8 महीने से आपका सत्संग सुन रहा हूँ, श्री जी कृपा से नाम जप भी करता हूँ। महाराज जी कृपा करके इस मन पर शासन करें, ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने नहीं देता, उससे नाम जप में पूरा नहीं हो पाता। और
2: आपकी लगन कमजोर है बच्चा, नहीं हमारा मन सोने नहीं देता, आप क्या बताओ क्या तुम्हारा मन उठने नहीं देता और हमारा मन सोने नहीं देता। अभ्यास योग युक्त न चेतसा नान्यगामिना, क्या हुआ? हमने नींद लेने का बहुत अभ्यास किया तो नाक नहीं खुल रही, और नींद पर बचपन से उस पर शासन हुआ तो वो हमसे कहते राधे राधे। अब उससे कोई परेशानी, थोड़ा तो शरीर है ना प्राकृतिक, पर ऐसी परेशानी नहीं होती कि सत्संग छूट गया, भजन छूट गया, अब तो हम विक्षिप्त, ऐसा नहीं होता। तो ऐसे ही आप अभ्यास कीजिए, आजकल तो सुविधा है अलार्म लगा लीजिए तो आपको जगा देगा, आप जग गए। आप दिनचर्या करिए, कुछ दिन बाद बिना अलार्म के जग जाएंगे। अपने लोगों की ऐसी दिनचर्या थी पूर्व में कि मतलब अगर आप घड़ी से देखो तो 5 मिनट का अंतर है, तो हम नहीं कह सकते ऊपर नीचे, ठीक राइट टाइम अपने आप आंख खुलेगी अपने आप। अब बचपन से अभ्यास रहा है ना, ठीक 2 बजे हमारी दिनचर्या, आज की नहीं है ये 20 वर्ष की है। जब मान लो सत्संग नहीं चलता था तो सुबह स्नान करके 2 बजे वृंदावन की परिक्रमा, सूर्योदय होते होते मंगला होकर फिर गुरुजी की सेवा। ऐसा तो हम अभ्यास कमजोर कर रहे हैं, किसी किस में आशीर्वाद की जरूरत क्या? अभ्यास कीजिए आप, शाम के जब रात्रि में सोए ना भगवत चिंतन करते हुए, और आप टाइम अपने माइंड पे स्थापित कीजिए, मुझे 4 बजे जगना ही है, 4 बजे आपकी घंटी बज जाएगी दिमाग की, फिर आप करवट लेके सो जाए वो आपकी बात अलग है। अगर आप सच्चा संकल्प करेंगे तो आप देखना जग जाएंगे, क्योंकि अंदर ही भगवान

0: बैठे हुए
1: चेतना है। अच्छा 4 बजे, और आप 1 साल अभ्यास कर लीजिए 4 बजे, फिर इसके बाद आपको 4 बजे के बाद नींद ही नहीं आएगी, आपको नींद खुल जाएगी। अभ्यास योग युक्ते न, ये नींद है, भोजन है। अब जैसे भोजन है, रोज आप आधा कवल बढ़ाते चले जाइए, धीरे धीरे डाइट बहुत अच्छी बढ़ती चली जाए, और आप घटाते जाइए तो 1 रोटी 2 रोटी में आपका काम चलने लगेगा, 2 रोटी दाल थोड़ा सा। संयम नियम से चलो, बहुत अल्प आहार करने लगोगे, स्वस्थ शरीर रहेगा। और आप आहार बढ़ाते चले तो ऐसे लोग भी देखे हैं कि ज्यादा शरीर में वजन नहीं है पर उतना भोजन उठा जाते हैं। हाँ, रोटी ऐसे इतनी, मतलब गिन के नहीं, बीता से ना, हमने देखा है मतलब वैसे। और कोई ऐसी खास शरीर में बल कि भाई बहुत कुंतलों उठा लेते हैं, ऐसा नहीं। अभ्यास, तो भोजन का अभ्यास, भोग का अभ्यास, नींद का अभ्यास, गलत कर लिया तो गलत, अच्छा कर लिया तो अच्छा। अब जैसे संयम, ब्रह्मचर्य, वर्षों, स्वप्न दोष भी नहीं होगा। आपने आदत बिगाड़ ली तो अब ना करो तो भी आपका ब्रह्मचर्य नहीं रहेगा। अभ्यास, हम गलत अभ्यास कर रहे हैं तो हम परिणाम में दुखी होंगे, परिणाम में हम नीचे गिरेंगे। अच्छी अभ्यास करें, उचित नींद। अब जैसे बालक को 6 घंटा आपको सोना ही है, 24 घंटे में 6 घंटे आपके नींद के लिए पर्याप्त है। साधक के लिए 4 घंटे, बहुत शिथिल तो 5 घंटे, अच्छे साधक के लिए 3 घंटे। 3 घंटे में 24 घंटे की खुराक बिल्कुल फिट हो जाएगी इंद्रियों में। अब जो 12-12 घंटे सोते हैं उनको क्या बताएं। अब कुछ ऐसे कि खाए पिए सोए, अगर दिन भर ना बोलो तो सोते ही रहे। अभ्यास है, आप सोने का अभ्यास कर लो तो उसका अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास है बच्चा, अभ्यास ठीक कर लो तो आपकी दिनचर्या ठीक हो जाएगी। ऐसा
2: मर्जी, इसी विषय और एक तो प्रश्न आते हैं कि जो रात को लेट नौकरी से आते हैं, फिर मर्जी वो सुबह थोड़ा सा लेट उठ सकते हैं महाराज जी?
1: कई बजे तक रात में,
2: जैसे रात को 11-12 बज गए नौकरी से खाने पीने में, फिर सुबह
3: 2 बजे तक ड्यूटी रहती कई बार। अच्छा, मैं 12 बजे से 2 बजे
2: रात को नाइट शिफ्ट हो गई तुम्हारे। हाँ। जी, इनके लिए तो अलग विधान हो गया हमारा। हाँ। जी, ये मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठे।
1: हाँ, अब जैसे रात्रि में ड्यूटी करते हो तो 6 घंटे तो सोना ही पड़ेगा, क्योंकि शरीर जो श्रम युक्त है तो अब उसको फिर दिन में तो छुट्टी होती होगी, मतलब उसको समय तो ऐसा थोड़ी होता हो कि साधारण दिनचर्या वाली ड्यूटी में फिर जाना, ऐसा तो नहीं होता होगा। रात वाली ड्यूटी के लिए मतलब दिन वाला तो फुर्सत होगी, होता होगा ऐसा। अब हम तो कभी की नहीं तो हमें पता ना राइट नाइट और ना दिन की, रात दिन की ड्यूटी एक ही रही है, राधा वल्लभ सिंह हरिवल सिंह वृंदावन सिंह वंचल हमारी। तो 6 घंटे सोने के लिए विधान जैसे है, तो अगर आपको पैसा कमाने की इच्छा हो तो उसके बाद भी ओवर टाइम कर सकते हैं आप, ड्यूटी कर सकते हैं ना। 2 बजे जगने के बाद आप सोचोगे यार 2 घंटे अगर और हम कर लेते हैं तो इतना मिल जाता है, तो अगर ऐसा ओवर टाइम भजन के लिए हो जाए तो लाभ मिल जाए। अब आप 6 घंटे सोने के निकाल लो, अगर आपको ऐसा लगता है 2 बजे आए अपना जो दिनचर्या सो गए, फिर जब जगो तो भजन, वो आपके लिए प्रातःकाल वही हुआ जब उठ के भजन करें, जब ही जागे तभी समझ लो प्रातःकालीन, फिर आप वही दिनचर्या करो जो प्रातःकालीन दिनचर्या चाहिए।
3: जी, अगर 8 से 2 तक ड्यूटी है रात को तो हम आपकी कृपा से नाम जप नाम जप नाम जप 1 भी क्षण उसमें ध्यान नहीं देते।
1: हाँ ठीक,
3: जब सोते हैं स्वप्न में भी हमें सिर्फ कीर्तन ही दिखाई देता है, और जब उठते हैं तो
1: बहुत ऊंची स्थिति है ऐसी स्वप्न में और जागृत में हर समय प्रभु का चिंतन चलने लगे, बहुत ऊंची स्थिति है। पर मनीराम को देखते रहना, बहुत कलाबाज हैं, बहुत कलाकार हैं, कभी कभी हमको सिद्ध अनुभव करा करके वो ऐसी जगह खड़ा कर देते हैं जहां लगता है कि यार तुम बहुत धोखे में डाल दिए हमें, ऐसा लगता है। अपने लोग क्या है ना, किसके साथ बहुत खेल करे हैं युद्ध, तो इसकी हर हरकत को पता है। जिस समय बच्चा ऐसी स्थिति आ जाएगी, या आप जो बोले ना, जैसे जब स्थिति आ जाएगी तो आप बच्चा बोल नहीं पाओगे बात, जैसे 1 करोड़ रुपया तुम्हारी जेब में रखे हो, एक हाथ चुपचाप ऐसे रहेगा और कोई कहेगा क्या बात है, कुछ नहीं खुजला रहा था इसलिए ऐसे कर, आप ये नहीं बता सकते कि 1 करोड़ यहां है। अगर नाम जब चलने लगा, ऐसी स्थिति आने लगी तो इतना आप भयभीत हो जाएंगे बताने में, आप कह नहीं पाएंगे। और आपको ये अनुभव होगा जैसे भजन होना चाहिए हो नहीं रहा, प्रभु मुझ नीच पर कब ऐसी कृपा होगी कि मेरा ऐसा भजन हो जाए। अभी क्या है, कृपा से हो रहा है, वो अहंकार में स्वीकृति हो रही, इसलिए टिकाऊ बात नहीं बच्चा। भजन करने वालों के हृदय में ऐसी भजन की भूख पैदा होती कि रात दिन करने पर भी उन्हें रोना आता कि प्रभु कब मुझसे ऐसा भजन होगा जैसा संतों ने किया, और रात दिन भजन कर रहे हैं। समझ लो ना बच्चा, यहाँ आए हो ना, बहुत कृपा पात्र हो, तो अवास्तविक तुम्हारी स्थिति ऐसी हो जाए कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति सूरत में राधा पदाब्ज छटा, चाहे जग रहे हो या सो रहे हो या स्वप्न में हो, लाडली लाल के साथ आपका मन सावई मना कृष्ण पदार्थ कभी अब कहना नहीं, और अभ्यास बढ़ाते चले जाओ। जो हो रहा है नाम जप वो श्री जी की कृपा से हो रहा है, गुरु जी की कृपा से हो रहा है, कहने से ये बात हट जाती है, अहम पुष्ट होता है चुपचाप अंदर ही अंदर। अब या तो आप जानते नहीं थे या आप करते नहीं हो, नहीं तो डर लग जाएगा। अपनी कोई चेक किसी को दिखाएगा कि पैसा दिखाएगा, इराजा वारा दिखाएगा क्या? तिजोरी में बंद किया जाता है, लॉकर में, एक चाबी वहां और एक चाबी गुरु जी के पास, एक चाबी आपके पास, केवल गुरु जी और आप मिलकर बात कर सकते हो उस लॉकर की चाबी को, मतलब समझ रहे ना, अपने गुरु से केवल पर्सनल, घर गृहस्थी परिवार नहीं, बैंक में एक चाबी आपके पास, लॉकर का होता है ना, दोनों मिला के, मतलब केवल सदगुरु और आप, फिर अपने अनुभव, फिर वो आपको कभी व्यक्त कर देंगे तो फिर वो अंतर ध्यान हो जाएंगे, साधन में बाधा पड़ जाएगी। बहुत कृपा पात्र हो, चल रहे हो, आगे और बढ़ो, पर गुप्त रखो अंदर की बात, और 6 घंटे विश्राम सोने के करके फिर पाठ भजन जो भी जैसी दिनचर्या हो घर गृहस्थी की, वो भी भजन है। जैसे अपने लोग कभी कभी कड़वी बोल देते ना खिलाफत की बात, ये थोड़ा एक आता है सुदर्शन चूर्ण है, बहुत कड़वा होता है पर वो बुखार को जड़ से नष्ट करता है। तो अब सचिव वैद गुरु तीन जो प्री बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बे गई नास। अगर सदगुरु मुझ परी बातें करने लगे तो बिगड़ जाएगा मामला। वैद्य अगर मरीज के अधीन हो गया तो कभी नहीं ठीक होगा। राजा को अगर मंत्री मुंह छुपरे मिल गए सलाह देने वाले तो राज्य नष्ट हो जाता है। इसलिए जैसे अपने लोग हैं ना, तो आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे बच्चे हैं, आप हमारी आत्मा हैं, जैसे भी भाव से, व्यवहारिक भाव से भी, परमार्थिक भाव से, आपको वास्तविक मार्ग मिल जाए, आप वास्तविक सुख में पहुंचे। इसलिए हो सकता है कि कभी आपके प्रतिकूल कठोर वचन, हे नाटक कर रहे, आप सच्चे चल रहे, आप सोचोगे मैं तो जप रहा हूं कि महाराज जी डांट क्यों रहे, नाटक, जो आपका अहम जाल बिछाना चाहता हूं खत्म कर, है कुछ नहीं, मैं बड़ा भजनानंदी, चुप बैठ, खत्म। अब वो सुरक्षित हो गया, जो था माल वो पूरा सुरक्षित हो गया, कोई नहीं लूट सकता। तब अगर आप प्रतिकूल सोच गए, मतलब यार बाबा से हमने प्रार्थना की, बाबा ने हमें दबका दिया, भजन तो करते ही हो कुछ, दूसरे को तो माला पहना देंगे, जो भजन करता तो मुझको दबका दिया, ये तभी कहा दुर्गम हो। संतों का समागम बड़ा दुर्गम है। जब देखा जाता है ना, जैसे मान लो एक आदमी बिल्कुल गंदे आचरण करता है और उसने कहा कि आज से मैं गंदा आचरण छोड़ता हूं, बस ये कि हम 10 मिनट नाम जपेंगे राधा राधा, शाबाश भारे बहादुर, चिंता मत कर, हमारा साथ है 10 मिनट जब। अब आप 6 घंटा जप रहे हैं, अच्छे आचरण कर रहे हैं, अब आपसे हम नजर टेढ़ी करके बात करेंगे, आपको लगेगा यार वो शराब भी पीता था, मांस भी खाता, आज बात करो 10 मिनट की आवाज बोल दी, और 6 घंटे जप करते फिर भी हमारे, क्योंकि अभी 24 घंटे पूरे कराने हैं आपसे, फिर पूरा जीवन आपका भगवत स्वरूप बनाना है। जैसे लड़का कोई नया है ना, और बस स्कूल में ऐसे गोली खींचे, ऐसे डंडा बना दे, तो टीचर क्या कहता है, वाह शाबाश शाबाश बहुत अच्छा, अगर साल भर उतना ही करता रहे तो छड़ी लेकर वही गोली डंडा वही आगे बढ़, का खा गा घा अंगा, अभी तो ज्ञा तक पहुंचला है। ऐसे जब संत समागम में कभी उनका कड़ुआ वचन, उनकी डांट लगे तो अंदर से सोचना चाहिए भगवान हम पर बड़े कृपालु हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो हमें अपना मानते हैं। डांट किसको लगाई जाती है, जिसे प्यार किया जाता है, हमारे ऊपर बड़ी कृपा है कि संतजन हमें अपना बच्चा मानते हैं, अपना मानते हैं, और डांट लगाते ना कभी प्रतिकूल, क्योंकि माता कभी प्रतिकूल कैसे बच्चे के सोच सकती है, ऐसे सदगुरु कैसे प्रतिकूल सोच सकता है।
0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।